सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 मई सन 2026। सुबह के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। आइए श्रोताओं, आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे भगवान बुद्ध के सुविचार। अक्षय निधि कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन, आज आप सुनेंगे 101 सूक्त से वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:20 पर। हमारा नियमित कार्यक्रम सुना जा सकेगा वतन का राग 8:00। ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा वेंगलिल कृष्णन मेनन की जयंती पर। 8:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे मुंशी प्रेमचंद की अग्नि समाधि कहानी। कल्ला कल्लोलिनी, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 9:00। उस्ताद अली अकबर खान पर ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। 9:30 का समय रहेगा हमारे विशेष कार्यक्रम का, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर श्रीराम परिहार का व्याख्यान। विषय होगा नर्मदा आंचल की मूरत और अमृत धरोहर। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां जानेंगे परिक्रमा कार्यक्रम में दिन में 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे टीपू सुल्तान की शहादत पर केंद्रित कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। दिन में 11:00 का समय रहेगा शब्दों के शिल्पकार, इस कार्यक्रम का। आज ये कार्यक्रम सत्यजीत रे की जयंती पर केंद्रित रहेगा। युग प्रवर्तक विवेकानंद, इस कार्यक्रम का 31वां भाग आज आप सुनेंगे दिन में 11:30 से। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। वो व्यक्ति जिसने स्वयं पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो, तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करने के लायक है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ, जिसमें भगवान बुद्ध के सुविचार आपने सुने। आइए सुनते हैं अक्षय निधि कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 101 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: प्रमंदिने पितु मदर्चता वचो यह कृष्ण गर्भा निरहन्रि जिश्वना अवस्यवो वृषणम वज्रदक्षिणम मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। हे ऋत्विगण, श्रेष्ठ इंद्रदेव की हविष्यान्न देकर अर्चना करो। ऋत्विज की सहायता से कृष्णासुर की गर्भिणी स्त्रियों के साथ उसका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले मरुद्गणों की सेना के साथ विद्यमान रहने वाले शक्ति संपन्न उन इंद्रदेव का अपने संरक्षण की कामना करने वाले हम यजमान मित्र भाव से आवाहन करते हैं। यो व्यंसम जाहृषाणेन मन्युना यह शंबरम यो अहन पिप्रु मव्रतम इंद्रो यह शुष्ण मशुसम न्यावृणं मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। जिन इंद्रदेव ने सर्वप्रथम वृत्रासुर के कंधों को काटा, पश्चात धर्म नियमों से विहीन पिप्रु का हनन किया, प्रजा के शोषक शंबर और शुष्ण दोनों दैत्यों का वध किया, इस प्रकार सभी दैत्यों के नाशक वे इंद्रदेव हैं। मित्रता के लिए मरुत के सहयोगी ऐसे इंद्रदेव का हम आवाहन करते हैं। यस्य द्यावा पृथ्वी पौंस्यम महद्यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः यस्येन्द्रियस्य सिंधवः संचति व्रतम मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। जिनकी सामर्थ्य शक्ति से स्वर्गलोक भूलोक वरुण सूर्य और सरिताएं अपने अपने व्रत नियमों में आरूढ़ हैं, मरुतों से युक्त ऐसे इंद्रदेव को मैत्री भाव की दृढ़ता हेतु आवाहित करते हैं। यो अश्वानाम यो गवाम गोपतिर्वशी य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः वीडोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। जो इंद्रदेव गौवों और अश्वों के पालक स्वामी हैं, सभी को अपने नियंत्रण में रखकर प्रत्येक कार्य कर्तव्य निर्वाह में सुस्थिर रहकर प्रशंसित होते हैं। जो इंद्रदेव विधि पूर्वक सोमयुक्त यज्ञीय कर्म से रहित शत्रुओं के नाशक हैं, ऐसे मरुत्युक्त इंद्रदेव को मित्रता के लिए आवाहित करते हैं। यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत इंद्रो यो दस्युं रधराम अवातिरन मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। विश्वाधिपति इंद्रदेव जो संपूर्ण गतिमान प्राणधारियों के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्रह्म परायण ज्ञानवानों को सर्वप्रथम गौएं उपलब्ध कराईं, जिन्होंने अपने नीचे दुष्टों का दलन किया। ऐसे मरुद्युक्त इंद्रदेव की मैत्री की स्थिरता हेतु हम उनका आवाहन करते हैं। यह शूरेभिर हव्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्भिर हूयते यश्च जिग्युभिः इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि संदधुर मरुत्वंतं सख्याय हवामहे। जो इंद्रदेव शूरवीरों और भीरु मानवों दोनों के द्वारा सहयोग हेतु आवाहित किए जाते हैं, जो संग्राम विजेताओं और पलायनकर्ताओं द्वारा भी बुलाए जाते हैं, तथा संपूर्ण लोक जिनकी पराक्रम शक्ति के आश्रित हैं, ऐसे मरुतों से युक्त इंद्रदेव को हम मैत्री के लिए आमंत्रित करते हैं। रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथुज्रयः इन्द्रं मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वंतं सख्याय हवामहे। जो विवेक संपन्न बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रदेव रुद्र पुत्र मरुतों की दिशा का अनुगमन करते हैं, मरुतों और देवी उषा के सामंजस्य से अपने विस्तृत प्रसिद्ध तेज को और अधिक विस्तारित करते हैं, तथा जिन प्रख्यात इंद्रदेव की अर्चना मनुष्यों की मेधा संपन्न प्रखर वाणी करती है, ऐसे मरुतों से संयुक्त इंद्रदेव को मित्रता वृद्धि के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्वा मरुत्वः परमे सधस्थे यद्वा वमे व्रजने मादयासे अत आ याह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्चक्रमा सत्यराधः। हे मरुतों से युक्त इंद्रदेव, आप सर्वश्रेष्ठ दिव्यलोक अथवा अधर स्थित अंतरिक्ष लोक में जहां कहीं भी आनंद युक्त हों, हमारे इस यज्ञ स्थल पर अति शीघ्र पधारे। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपकी कृपा के आकांक्षी हम आपके निमित्त यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हैं। त्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चक्रमा ब्रह्मवाहः अधा नियुत्वः सगुणो मरुद्भिरस्मिन्यज्ञे बरिहिषि मादयस्व। दक्षता संपन्न हे श्रेष्ठ इंद्रदेव, आपके निमित्त ही हम सोम निष्पादित करते हैं। हे स्तोत्रों द्वारा प्राप्त होने योग्य इंद्रदेव, आपके लिए ही हम हवि प्रदान करते हैं। हे अश्वों से युक्त इंद्रदेव, मरुद्गणों सहित इस यज्ञ में आकर विराजमान हो और सोमपान से आनंदित हो। मादयस्व हरिभिर ये त इंद्र वीश्यस्य शिप्रे विसृजस्व धेने आत्वा सुशिप्र हरयो वहन्तूषन् व्यानि प्रतिनो युषस्व। हे इंद्रदेव, अश्वों के साथ प्रसन्नता को प्राप्त करें, अपने जबड़ों को खोलकर सुखद ध्वनि करे। हे श्रेष्ठ शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्रदेव, रथ खींचने वाले घोड़े आपको हमारे समीप ले आए। अभीष्ट पूरक इंद्रदेव, आप हमारी आहुतियों को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। मरुत स्तोत्रस्य व्रजनस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। मरुद्गणों की स्तुतियों से प्रशंसित शत्रु संहारक इंद्रदेव द्वारा संरक्षित हमें उनके सहयोग से अन्न की प्राप्ति हो। अतएव मित्र वरुण आदिति सिंधु पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें सहयोग प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 101 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। सुबह के 7:20 हुए हैं, आप समय मिला सकते हैं। आपके साथ मैं हूं आज आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्त और भगवान का रिश्ता प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण का एक निस्वार्थ बंधन है जो सांसारिक रिश्तों से ऊपर है। ये रिश्ता मांगने का नहीं बल्कि भक्त द्वारा स्वयं को भगवान को सौंप देने का होता है, अर्थात समर्पण का होता है, जहां भगवान भक्त के रक्षक बन जाते हैं। ये रिश्ता सखा, सेवक, वात्सल्य या प्रेमी प्रेमिका जैसे भावों से जुड़ा हो सकता है

भगवान का और भक्त का रिश्ता कभी टूटता नहीं है, ये विश्वास की नींव पटका होता है। इसमें प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती, केवल सेवा और प्रेम भाव होता है।

जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होता है तो भगवान उसका उत्तरदायित्व लेते हैं। भगवान कर्म से अधिक भक्त का भाव देखते हैं, न कि औपचारिक पूजा।

सच्चा भक्त अहंकारी नहीं होता, क्योंकि अहंकार के साथ ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। भक्त को ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं।

भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता विश्वास की वह डोर है जो भक्त को अमरता का एहसास कराती है, जहां भक्त स्वयं अमृत बन जाता है।

भक्त भगवान का बालक है। जिस तरह माँ बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जहाँ भक्ति होती है, भगवान स्वयं वहाँ चलकर भक्तों के द्वार तक जाते हैं।

और श्रोताओं, ये था आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है अगला कार्यक्रम वतन का राग। आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

0: वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व पर जो कूटनीति की तीक्ष्णता, विचारों की निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति की अटल ज्योति का पर्याय थे। वो लंदन की गलियों में भारत की आजादी की मशाल लिए खड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की आवाज बनकर वो गूंजे। उनकी बातों में अद्भुत तेज, तर्क और आत्मविश्वास था जो हर चुनौती को चुनौती दे सकता था। भारत की गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले वो महानायक थे वीके कृष्ण मेनन। वो एक राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा सन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। वीके कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई सन 1896 को केरल के मालाबार तट पर स्थित पनियंकरा कालीकट में हुआ था, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम वेंगालिल कृष्णन कृष्ण मेनन था। उनके पिता का नाम कोमाथु कृष्ण कुरुप था, जो कदाथनाडु के राजा के पुत्र थे। इस तरह वो एक राज परिवार से संबद्ध थे। उनकी माताजी भी त्रावणकोर के पूर्व दीवान रमन मेनन की पौत्री थीं। वीके कृष्ण मेनन के पिता ने वकालत का पेशा अपनाया था। वो एक अत्यंत संपन्न तथा प्रभावशाली वकील थे। इस तरह ये एक राजसी वंश परंपरा से संबद्ध एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार था। वीके कृष्ण मेनन की आरंभिक शिक्षा थालासेरी में हुई तथा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। बचपन से वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और उनका विद्रोही स्वभाव किशोरावस्था से ही मुखर होने लगा था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। वो डॉ. एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सानिध्य में आए। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया। एनी बेसेंट ने उनकी वाक्पटुता और तीक्ष्ण बुद्धि को पहचाना और उन्हें ब्रदर ऑफ सर्विस समूह से जोड़ लिया। यहीं ब्रिटिश राज के प्रति उनके मन में एक आक्रोश ने जन्म लिया। कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी पोशाक के स्थान पर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अस्वीकार्यता और भारत माता के प्रति गहरे प्रेम का स्वर बुलंद किया।

बेसेंट वीके कृष्ण मेनन की प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थीं। यही कारण है कि उन्होंने सन 1924 में वीके कृष्ण मेनन को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजने का प्रबंध किया। वीके कृष्ण मेनन सन 1924 में इंग्लैंड पहुंचे और लगभग 27 वर्षों तक वो वहीं रहे। लंदन में उनके प्रवास ने उन्हें एक छात्र से एक वैश्विक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था। वहां वो हेराल्ड लास्की के प्रिय शिष्य बन गए। लास्की ने उन्हें अपना अब तक का सबसे मेधावी छात्र कहा था। लास्की के विचारों ने वीके कृष्ण मेनन के दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में उनके भीतर स्थायी रूप से रहा। यहां उन्होंने एमएससी और एमए के साथ ही कानून की शिक्षा भी पूर्ण की तथा एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की। वहां रहते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंडिया लीग की स्थापना की। उन्होंने मूल रूप से डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग को ही पुनर्गठित किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में रहते हुए भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए अभियान चलाना था। ये संगठन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीयों को एक मंच पर लाता था। इस तरह ये लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की मांग का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया। इंडिया लीग के माध्यम से वीके कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश जनता को भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, जैसे लाठीचार्ज, बिना मुकदमा चलाए कारावास और संपत्ति की जब्ती के बारे में जागरूक किया। इस तरह इंडिया लीग ने ब्रिटिश लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियनों और बुद्धिजीवियों के बीच भारत की पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। सन 1938 में उन्होंने लंदन में एक विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें अफ्रीका और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने प्रकाशन की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एलन लेन के साथ मिलकर पेंगुइन बुक्स और फिर बाद में पेलिकन बुक्स की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकाशन गृह के माध्यम से उन्होंने आम जनता के लिए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक सामग्री को सस्ते दामों में सुलभ कराया। सन 1934 में लेबर पार्टी के टिकट पर वो सेंट पैनक्रास से बरो काउंसलर नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने पुस्तकालयों के विस्तार और गरीबों के लिए कानूनी सहायता की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। उनके योगदान के लिए सेंट पैनक्रॉस ने उन्हें फ्रीडम ऑफ द बरो से सम्मानित किया। स्थानीय परिषद द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वीके कृष्ण मेनन से पहले ये सम्मान केवल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। सन 1935 में वीके कृष्ण मेनन की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी और भारत की आजादी के बाद भी ये संबंध अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बना रहा, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण जुगलबंदियों में से एक माना जाता है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को पश्चिम में प्रकाशित और लोकप्रिय करने में भी वीके कृष्ण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लेबर पार्टी ने भारत की भागीदारी पर अपना रुख बदला, तब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। भारत उनकी आत्मा में बसता था और राष्ट्र सेवा को वो सर्वोच्च मानते थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी के बाद वीके कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के पहले उच्चायुक्त नियुक्त हुए और भारत माता की सेवा को वो समर्पित हुए।

वी के कृष्ण मेनन एक स्वतंत्र सोच और अपनी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जब वो पदस्थ थे, तब वो उच्चायुक्त निवास में न रहकर उच्चायोग के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। सन 1952 में उच्चायुक्त का पद छोड़ने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभाला। यहां उन्होंने अपनी कूटनीतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता से विश्व को चकित कर दिया। इस समय तक दुनिया उन्हें फॉर्मूला मेनन कहने लगी थी। विश्व समुदाय का मानना था कि किसी भी देश में अगर कोई समस्या है तो मेनन कोई न कोई सार्थक समाधान निकाल सकने में अवश्य सक्षम होंगे। सन 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। ये एक ऐतिहासिक भाषण था। पाकिस्तान के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने लगभग 8 घंटे तक भाषण दिया, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। इस तरह उन्होंने कश्मीर मुद्दे की एक सही तस्वीर दुनिया के समक्ष रखी। इसके बाद उन्हें भारत में कश्मीर का नायक कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने केवल भारतीय हितों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कोरियाई युद्ध हो, जिनेवा सम्मेलन हो, स्वेज संकट हो या हंगरी संकट, सभी जगह उन्होंने समाधान के सार्थक रास्ते सुझाए। सन 1957 में उत्तरी मुंबई से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वीके कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री नियुक्त हुए। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। यही कारण है कि उन्होंने भारत में रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए। उन्होंने DRDO को पुनर्गठित और मजबूत किया ताकि स्वदेशी तकनीक विकसित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण भी किया। सेना के लिए वाहनों और टैंक के स्वदेशी उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैन्य जीवन के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की तथा NCC को पेशेवर रूप दिया। सन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। ये सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। ये वीके कृष्ण मेनन की बड़ी सामरिक और राजनीतिक जीत थी। उन्होंने सेना में पदोन्नति की वरिष्ठता आधारित प्रणाली को बदलकर योग्यता आधारित प्रणाली करने की भी वकालत की थी, जिसका अधिक स्वागत नहीं हुआ था। सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय का सारा दोष वीके कृष्ण मेनन पर मढ़ा गया और उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की पैरवी की। सन 1969 में उन्होंने राजनीति में वापसी की, संसद पहुंचे और सन 1971 में फिर से जीत दर्ज की। संसद में अंतिम वर्षों के दौरान वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, विशेष रूप से 1966 की वियतनाम शांति योजना और 1971 के बांग्लादेश संकट के समय। 6 अक्टूबर सन 1974 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत ने एक ऐसे मौलिक विचारक को खो दिया जिन्होंने भारत को एक दृष्टि दी कि वो स्वयं अपनी नजर से विश्व को देख सके। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह से आज हम ढूंढ कर लाए हैं कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का ये दुर्भाग्य ही था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे नशे का चस्का लग गया, जिसका फल ये हुआ कि मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में अब उसे आनंद नहीं आ रहा था। किसी वट वृक्ष के नीचे धुनी जल रही होती थी। एक जटाधारी महात्मा विराज जाते थे और भक्तजन उन्हें घेरे बैठे थे और तिल तिल चरस के दम लग रहे थे। बीच बीच में भजन भी हो जाते थे। मजूरी धूतरी में वो स्वर्ग सुख कहाँ था। चिलम भरना अब पयाग का काम हो गया था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी और पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलम पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विहल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति छाई रहती थी। वो सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए किसी दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बज जाने पर जब उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता था। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल दिखता। जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है तो वो गुस्से से भर जाता। वो जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिराज थी। 2 रुपए और कुछ आने उसको वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त में था। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना और लकड़ियां चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू तो वो ऐसे पोंछता था कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम नहीं थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो कमतर लोगों पर रोब था। वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। इसलिए जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंता का कारण बनता जा रहा था। इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती थी। पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता था और कभी पुर हाँकता था। जो काम सामने आ जाता जुट जाता था मेहनत से। हंसमुख था, श्रमशील था, विनोदी था, निर्द्वंद आदमी था। और ऐसा

कभी भूखो नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए वो कभी ना करता ही नहीं था। किसी ने कुछ कहा तो अच्छा भैया कहके दौड़ जाता था, इसलिए गांव में उसका बहुत मान सम्मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट नहीं हुआ था, जब महतो को ये रिद्धि न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधती थी। तो प्रयाग किस गिनती में था? हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह नहीं था, परंतु अब ये समस्या दिन बर दिन बढ़ रही थी। उस पर ये विपत्ति थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उतनी पति परायण, उतनी सेवाशील और उतनी तत्पर नहीं थी। उसकी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास हो गया था। प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत भजन करे और साधु सेवा में लगा रहे। एक दिन की बात है, रुक्मिन बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे, दम लगाकर आता हूँ। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने के लिए? ऐसी चाट बची है तुम्हें, तो काम क्यों नहीं कर लेते? क्यों आजकल कोई बाबा नहीं मिल रहा क्या? जाकर चिलम भरो, और क्या काम है तुम्हें? प्रयाग ने भी त्योरी चढ़ा ली, भला चाहती है तो पैसे दे दे, अगर इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, रहना अकेले और रोना। रुक्मिन ने भी अंगूठा दिखा दिया, रोए मेरी बला, जाना है तो जाओ, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो? अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी, रह लूंगी। अच्छा, तो अब यही फैसला है? प्रयाग ने कहा। रुक्मिन ने भी कह दिया, हाँ हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो ऐसे जवाब देती हो? रुक्मिन ने भी तिनक कर कहा, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारा क्या जाता है, तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया। प्रयाग उस दिन घर से निकल गया, रात के 9 बज गए थे। तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए, समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा कि मनाने आएगी, मैं क्यों जाऊं मेरी बला से। जब दूसरे दिन भी प्रयाग नहीं आया तो अब रुक्मिन को चिंता हो गई। गांव भर छानाई उसे, चिड़िया किसी अड्डे पर नहीं मिली। लेकिन उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई, रात को लेटी भी तो बहुत देर तक उसकी आंख नहीं लगी। शंका हो रही थी कि सचमुच प्रयाग विरक्त तो नहीं हो गया। फिर उसने सोचा, प्रातः काल जाकर पत्ता पत्ता छान डालूंगी, होगा किसी साधु संत के साथ, और नहीं मिला तो थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही हुआ था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई, किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि प्रयाग आता हुआ दिखा। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। छीट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा सा घूंघट और शर्मीली चाल। रुक्मिन का कलेजा तो धक से हो गया, वो एक क्षण हतप्रभ होकर खड़ी होकर देखती रह गई। तब बढ़कर उसने अपनी नई सौतन को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने प्रयाग से पूछा, कहां से लाए हो जी इसे? प्रयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई, घर का काम धंधा करेगी और पड़ी रहेगी बस। क्या करते हो, मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है, प्रयाग ने तिरछी चेतावनी देकर कहा। तुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल को लाया हूँ, नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है, रुक्मिन ने कहा। प्रयाग ने जवाब दिया, चल मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वो पुरानी, ला कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ देख तो, 4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर प्रयाग के हाथ में रख दिया, दूसरी बार उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रयाग में चाहे कोई गुण हो या ना हो, ये तो मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 महीने तक तो किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई।
रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, लकड़ियां तोड़ती, चारा काटती, उपले पाथती और बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो वो पयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वो सौत को कोई काम नहीं करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या हुआ, है तो अभी कल की बहुरिया, दो चार महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को ही हूँ। पूरे गांव में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाग पयाग सब कुछ समझता था और वो अपनी नीति की सफलता पर खूब प्रसन्न था। एक दिन नई बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे ना जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो ना। रुक्मिन ने स्नेह से कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाओगी, भीतर का काम किए जाना, बाहर के लिए मैं हूँ। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़ कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़कियों की दशा अब उसके लिए असहनीय हो गई थी। वो दिन भर घर का काम करते करते मरे और कोई पूछता नहीं। रुक्मिन बाहर से चार पैसे लाती तो घर की मालकिन थी, अब सिलिया भी मजूरी करेगी, मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, ये बात उससे अब छिपी नहीं थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की किवाड़ लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, तो किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इस काम को कर सकती है। वो यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर की रात ही चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज भी सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस तो रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा, किसका अनाज पीस रही है तू। सिलिया ने मिनी डर होके कह दिया, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं, मैं पीसती हूँ ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, चक्की की घूमर घूमर भी नहीं सही जाती, लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी, दो महीने हो गए बहुत हो गया। रुक्मिन ने प्यार से कहा, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। सिलिया ने बोला, तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती, आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं, किसके गेहूं हैं, मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली। पैसे क्यों नहीं देंगे, बिगाड़ करती हूँ क्या, तू नहीं मानेगी लगता है। सिलिया ने भी कह दिया, मैं बैठ कर नहीं खाऊंगी। ये तकरार सुनकर पयाग भी आ गया और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने देना, अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी, हो गए दो महीने बहुत है, तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी, रुक्मिन ने बोला। और सिलिया बीच में बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है, चौका बर्तन झाड़ू बुहारी रोटी पानी पीसना कूटना कौन नहीं करता, पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में खट पड़ गई है, मुझसे अब सारा काम नहीं होता। पयाग ने कहा, हाँ तो तू बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती, तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी, क्या कहेगा संसार, संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐप करने जाती हूँ। सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया, सिलिया की अमलदारी हो गई। खूबसूरत औरत थी और यौवन भी भरपूर। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए, गट्ठा उठाए नहीं उठ रहा था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली थी। ये गट्ठा 12 आने में बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ खरीद लिया और 4 आने भी बच गए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी,
तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से बाजार नहीं जाने दूंगी। इससे फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर ये सामान देखकर उसकी आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों बाद उसे स्वादिष्ट वस्तु मिली थी। बहुत प्रसन्न हुआ। पयाग भोजन करके बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। तो पयाग ने कहा, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले? कुछ बचे तो होंगे? देना मुझे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया रे। रुक्मिन तो 2-4 पैसे में ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही अच्छा लगता है। पैसे खाने पीने के लिए होते हैं कि गाड़ने के लिए? सिलिया ने भी हंसकर जवाब दिया। पयाग ने भी आज्ञा दे दी, अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में अब संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़ कर परिश्रम करती। पहर रात ही उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने जाती, जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह। वहां से लौटकर भी वो बिगाड़ नहीं बैठती थी। कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती। पयाग के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया कि वो किसी तरह हिलाए नहीं हिल रही थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगिताओं में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना और तेज धूप। उसने सोचा नहाकर बाजार जाएगी। घास द्वार पर रखकर वो तालाब चली गई। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया जब नहाकर लौटी तो उसे घास कम लगी। उसने रुक्मिन से पूछा तो रुक्मिन ने कह दिया, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देना शुरू कर दी। जिसने मेरी घास छुई उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाए, आंखें फूट जाए। लगातार सिलिया गाली दे रही थी। रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्लाकर उठी और सिलिया को 2-3 तमाचे जड़ दिए। सिलिया भी वहां पर सिर धुनकर रोने लगी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सबको खटकती थी। वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ी क्यों लाती है, सवेरे क्यों उठती है, पैसे क्यों लाती है। पड़ोसियों की सहानुभूति से वो वंचित हो रही थी। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम हो गया, घास ना हुई सोना हो गया। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया था। शाम को जब थका हुआ लौटा तो उसने सिलिया से कहा कि ला कुछ पैसे दे, दम लगाऊंगा, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देखकर रोने लगी। पयाग तो घबरा गया, क्या हो गया, क्यों रोती है, कौन मर गया? अब इस घर में मेरा रहना नहीं होगा, मैं अपने घर जाऊंगी, सिलिया ने जवाब दे दिया। अरे कुछ तो बोल, गांव में किसी ने कुछ कहा? सिलिया ने रो रो कर सारी कहानी सुना दी। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी। वो तो झल्लाया ही था, ये कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी। वो अभी घड़ा रख भी नहीं पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा। मारते मारते उसे बेदम कर दिया। वो मार का जवाब गाली उसे देती। पयाग हर गाली पर उसे और मारता। रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती, वाह रे तेरा दीद, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत नहीं देखी। औरत का है को डायन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। रुक्मिन ने कुछ नहीं सुना, बस बोलती चली गई। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिन की जबान नहीं थकी। वो लगातार रट रही थी। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला रहा था और आ आकर 2-4 लात जमा देता था। पर रुक्मिन तो अब जैसे पत्थर हो गई थी, अब उसे चोट ही नहीं लग रही थी। लेकिन उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ, रुक्मिन उठकर निकल गई। आंखों से आंसू की धार निकल रही थी। सिलिया खाना बना रही थी। उसने जाते देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ नहीं बोला।
जब फसल पकने लगती थी तो डेढ़ दो महीने पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसका किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मुढ़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग जला लेता था और उसी मुढ़ैया पे जाके रहता था। चैत के अंत तक यही नियम था और आजकल वही दिन तो चल रहे थे। फसल पकी हुई थी, दो चार दिन में कटाई हो गई। पयाग ने 10 बजे रात तक रुकमिन की राह देखी, समझा कि पड़ोसिन के घर चली गई होगी रुकमिन। इसलिए खा पी कर उसने लाठी उठाई और सिलिया से बोला कि वाड़ बंद कर ले, रुकमिन आए तो खोल देना, मना जुना कर थोड़ा खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। सिलिया बोली, न जाने वो कब आएगी, मैं अकेली कैसी रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा, सूना घर पाकर कोई लोटा थाली थोड़ी ले जाएगा, डर किस बात का। फिर रुकमिन भी तो अभी आएगी, तू रह, आता हूँ। सिलिया ने अंदर से दरवाजा बंद किया, पयाग खेत में चला गया। अचानक सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जला ली है। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ, कौन है, कौन आग जला रहा है। ऊपर उठती ज्वालाओं ने अपनी जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मुढ़ैया में आग लगी है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मुढ़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी, मढ़ैया के चारों ओर एक हाथ पे हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट केवल एक जरा सी चिंगारी सारे खेत को भस्म कर देगी, गांव तबाह हो जाएगा और इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वो भी जल जाएंगे। अरे ये क्या हो गया, लपटे तो बढ़ रही है। अब विलंब करने का समय नहीं था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया। कंधे पर लोहबंद लाठी रखकर वो बेतहाशा मुढ़ैया की ओर दौड़ा। मेढ़ों में जाने में चक्कर था, इसलिए वो खेत से होकर भागा जा रहा था। ज्वाला प्रचंड होती जा रही थी। वो ऐसे भाग रहा था जैसे तेज घोड़ा उड़ रहा हो। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य था। उसकी आंखें मुढ़ैया पर लगी थी, दाहिने बाहिने कुछ नहीं सूझ रहा था, दम फूल रहा था, ना पांव थक रहे थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मुढ़ैया के पास पहुंच गया। मुढ़ैया के पास कोई नहीं था। किसने ये काम किया, ये सोचने का मौका नहीं था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। पयाग का संदेह रुकमिन पर हुआ। वो क्रोध का समय नहीं था, लेकिन ज्वाला कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, दाहिनी ओर लपकती और कभी बाई। पयाग गांव की ओर भाग गया। ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई अग्नि यज्ञ हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था। एक बार एक मूठ उठाकर अलग करके वो गिर गया, सारा हाथ जल गया उसका। हाथ पांव पल भर भी नहीं रुके, हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका नहीं थी। अगर भय था तो यही कि मढ़ैया का वो केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था वो ना चल जाए, क्योंकि छेद की फैलते ही मुढ़ैया उसके ऊपर आ गिरती, अग्नि समाधि में मग्न कर दी थी उसको। पयाग ये जानता था और हवा की चाल से लड़ने में लगा था। पयाग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग रोक नहीं पा रहा था। अग्नि की क्रूर लीला उसने ऐसी कभी नहीं देखी थी कि अचानक एक स्त्री सामने के वृक्ष से दौड़ती हुई आई और पयाग के पास पहुंच गई। ये रुकमिन थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मढ़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों में ले लिया और उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया। रुकमिन उसके अलाव को लिए एक सेकंड में खेत के डांडे पर पहुंच गई, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया, कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध नहीं थी कि मढ़ैया के बाहर निकल आए, वो मढ़ैया के लिए वहीं गिर गई। उसके बाद कुछ देर तक मढ़ैया हिलती रही, रुकमिन हाथ पांव फेंकती रही और फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुकमिन ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद पयाग को होश आया, सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा,
पैर से आपको हटा दिया। नीचे रुक्मिन की अध जली लाश पड़ी थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांक लिया और खूब रोया। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर वो बचा नहीं। कुछ तो आग ने जला दिया और जो कुछ कसर थी वो शोक अग्नि ने पूरी कर दी और बन गई उनकी अग्नि समाधि।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अग्नि समाधि। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: लश्कर और सीधी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टीक की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घोटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीधियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे, हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे डेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाउ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की, वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीधियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
1: कल्पना कीजिए 2300 साल पहले की एक ऐसी दुनिया की जहां समुद्र तल को शाही खजाने की तरह माना जाता था। मौर्य साम्राज्य के दौरान खन्याधक्ष यानी समुद्री खानों के अधीक्षक गोताखोरों की एक विशिष्ट टुकड़ी को हिंद महासागर की खतरनाक गहराइयों में उतारते थे। केवल पत्थरों के वजन और अटूट साहस के दम पर ये गोताखोर समुद्र की तलहटी से चंद्रमा के आंसू यानी बेशकीमती मोती निकालने के लिए डुबकी लगाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि यह केवल मछली पकड़ना नहीं था बल्कि एक परिष्कृत सरकारी उद्योग था। अधीक्षक विशाल बेड़ों और विशेष रिफाइनरियों का प्रबंधन करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर रत्न को उसकी चमक और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। शार्क से भरी मन्नार की खाड़ी से लेकर दूर दराज की चट्टानों तक इन जोखिम भरे अभियानों ने साम्राज्य की भव्यता को वित्त पोषित किया। यह एक खतरनाक लेकिन अत्यधिक लाभकारी सीमा थी जहां भारत ने पहली बार अथाह गहराइयों से तरल संपत्ति निकालने की कला में महारत हासिल की थी।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लो।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुँचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खंबे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी मेहर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूँ। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से दो सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नर्तकी पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधियां में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द ट्रेड।

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसी में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालीदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी सांस पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा,
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य डॉक्टर श्री राम परिहार जी का।
2: ये नर्मदा के पूरे संभार को, पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है।
1: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में राष्ट्रीय विमर्श के तहत, जिसमें नर्मदा अंचल की मूर्त और अमूर्त धरोहर पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं डॉक्टर श्री राम परिहार जी का वक्तव्य।
3: मैं श्री श्री राम परिहार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। लोक कथाएं, परिक्रमा, अनुष्ठान एवं मौखिक परंपराएं, श्री श्री राम परिहार जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाता है।

0: नर्मदे, सबको नर्मदे हर, नर्मदा नर्मदा हर्ष को देने वाली, संपत्ति को देने वाली, खुशी को देने वाली, समृद्धि को देने वाली, जीवन को देने वाली, जीवन की तरलता को भरने वाली, जीवन की चमक को भरने वाली, जीवन में आर्द्रता पैदा करने वाली, जीवन में निर्मलता देने वाली और जीवन को अविराम गति से बहते रहने की अटूट शक्ति देने वाली नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं। विषय इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना गहरा और इतना फैलाव वाला है कि वर्षों तक हम नर्मदा की इस पावन महिमा का यदि संग्रहण और आलेखन करेंगे तब भी हम उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने देखा है ये केवल जल की बहती हुई धारा नहीं है। यदि पांच तत्व में से एक तत्व जल है और जल यदि सृष्टि की रचना का एक बहुत महत्वपूर्ण उपादान है तो उसी जल की जीवित शक्ति के रूप में नर्मदा धरती के ऊपर बह रही है। स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में यह तो सनातन नदी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि कह रहा है कि ये प्रलय काल में भी भगवान विष्णु के दाएं पांव में रेखा बन करके लिपटी हुई है। तो मुझे लगा कि जब हिमालय नहीं था तब विंध्याचल था और जब माँ गंगा नहीं रही होगी तब नर्मदा रही होगी। एक शाश्वत, एक अनादि नदी है ये, इसके किनारे हमने जन्म लिया, कितने बड़भागी हैं, कितने पुण्यभागी हैं, कितने पुण्यात्मा हैं हम, तो क्या इसके गोद में जन्म लेने का जैसे हम माँ के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार हमको माँ के साथ, नर्मदा के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा अटल विश्वास है हम पुराने लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन जो नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई, इनको कुछ भी बुरा भला कहो, इनको यदि बदल दिया, इनकी मानसिकता यदि बदल दी तो नर्मदा को शाश्वत धारा के रूप में, उसका चाहे हम किसी भी रूप में संग्रहण करें, उसका दस्तावेजीकरण करें, असंख्य संपदा फैली हुई है, कितने आयाम फैले हुए हैं। अभी जब मैं तीसरी बार, पहली बार नर्मदा परिक्रमा पर 2011 में गया था, दूसरी बार 2021 में गया था और तीसरी बार जब 15 मार्च से लेकर मैं अभी जब लौटा तो डिंडोरी और मंडला के बीच का जो परिदृश्य है, जो 15 साल पहले का परिदृश्य था वो अभी का परिदृश्य है, बहुत अंतर आ गया है, इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। ये अंतर प्रकृति में नहीं आया, मनुष्य की मानसिकता में आया है। मानसिकता ये तो बनी कि श्रीराम परिहार परिक्रमा पर जा रहा है, उसके देखा देखी दूसरा भी जा रहा है, लेकिन परिक्रमा तो वह कर रहा है जो नंगे पांव, हाथ में लकोटी और कंधे पर एक गमछा लिए पद यात्रा, माँ की सेवा, माँ की सेवा नहीं जीवन के उद्धार के लिए जो जा रहा है वह परिक्रमा है। वैसे तो परिक्रमा के बहुत अलग अलग संसाधन आ गए हैं, रेग आ गए हैं, लेकिन परिक्रमा से केवल एक बात जरूर जुड़ी है, वह है आस्था। आस्था किसके प्रति? आस्था नदी के प्रति, नदी नहीं, वह नदी के रूप में जो जीवित बह रही है, जल के रूप में जो बह रही है। जल केवल क्या नदी के रूप में बहता है कि जल हमारे भीतर भी बहता है? बिल्कुल सच मानिए, नर्मदा सामने खड़ी होकर के बात करती है, आप बात करने लायक बनिए तो सही, अब बेटा बनिए, माँ तो सब उपस्थित हो जाएगी। और ये सच बात है, सैकड़ों परिक्रमा वासियों के मुँह से मैंने सुना है कि जब जब आप परिक्रमा में अकेले संकट से घिरेंगे, कोई ना कोई किसी बहाने, वृद्धा के रूप में, पशु के रूप में, किसी आवाज़ के रूप में, किसी अनजानी पुकार के रूप में, किसी पक्षी की आवाज़ के रूप में, वह माँ जरूर बताएगी। तीनों परिक्रमा में मैंने ये प्रमाण पाए हैं, तीनों परिक्रमा में संकट के समय। आस्था होनी चाहिए, गहरी आस्था होनी चाहिए। परिक्रमा क्या हम दिखावे के लिए करते हैं? यदि करते हैं तो मत करिए। मेरा दोस्त गया तो हम भी चले जाएं, ये आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक नर्मदा को समझना यानी जल की सतत प्रवाह को समझना। आप सोचिए साथियों, ऐसी भीषण गर्मी में पिछले 3-4 दिन से सारी नदियां सूख रही, महानदी भी बिल्कुल अजस्र नदी है, बड़ी नदी है महानदी भी। महानदी में भी आप राजिम के पास जाएंगे ना तो जरा सी जलधारा मिलेगी इस समय, लेकिन नर्मदा में तो कोई पानी कम नहीं होता, पानी सूखता नहीं, पानी विरल नहीं होता पानी। स्वच्छतम नदी देखना हो तो मेरे ओंकारेश्वर के ऊपर थोड़ा सा जोगा का किला है, जो नाभि कुंड से नाभि स्थल से थोड़ा सा नीचे, वहाँ नर्मदा की पावनता देखिए। सहस्त्रधारा जो मंडला के पास है और सहस्त्रधारा जो महेश्वर के पास है, वहाँ से जब नर्मदा किलोल करती हुई अटकेलिया बहती हुई निकलती है, वहाँ निर्मलता देखिए। तो एक बात तो जरूर है, ये मैंने भी महसूस की है कि माँ कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती। कितने परिक्रमावासी कुछ नहीं ले जाते, 2 जोड़ी कपड़े, 1 कमंडल और 1 लकड़ी, और कभी पाँव में चप्पल, और कोई तो बिना चप्पल के उभानी पाँव जाते हैं, लेकिन वो मांग कर खाते हैं। पेड़ के नीचे सोते, स्कूल में सो जाते हैं, धर्मशाला में सो जाते हैं, किसी ओटले पर सो जाते हैं, किसी मंदिर के चबूतरे पर सो जाते हैं, और नहीं। आज आप सोचिए ये कैसी आस्था है नर्मदा के किनारे की। पूरे निमाड़ में तो मैंने प्रमाण पाया है, और पूरे बुंदेलखंड में, और पूरे डिंडोरी से लेकर मंडला तक तो प्रमाण पाया है। सैकड़ों लोक कथाएं हैं, सैकड़ों आस्थाएं हैं, सैकड़ों मान्यताएं हैं, मन्नते नहीं मान्यता मान है, और सैकड़ों हमारी धारणाएं हैं जो मौखिक रूप से रात में कही जाती है। मेरे को नर्मदा जी मिली। एक बात मैं कहूँ कि हमने सबने पढ़ा है, हमको सबको पढ़ाया है कि नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। डिंडोरी और मंडला के बीच में मैंने देखा नर्मदा पश्चिम से पूरब की ओर भी बहती है। लगभग 10 किलोमीटर की जगह ऐसी है जहाँ पर, वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर बुड़नेर नदी आकर के नर्मदा में मिलती है, और बुड़नेर के संगम पर ही अब ये शोधार्थियों का, ये पुरातत्व विभाग का काम है कि वहीं जमनग्नि ऋषि का आश्रम भी है और वहीं परशुराम की जन्मस्थली है। और हम कहते हैं कि यहाँ इंदौर के पास जाना पाँव जहाँ से चंबल निकलती है, वहाँ भी जमनग्नि ऋषि का आश्रम है और वहाँ भी परशुराम की जन्मस्थली है। वहाँ पर अखंड कीर्तन हो रहा है और बुड़नेर नदी आकर के मिलती है, और नर्मदा जी ऐसी पूरब पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, बिल्कुल पूरब की, और फिर जैसे ही मंडला आता है ऐसे मोड़ लेती है, और नर्मदा यहाँ मंडला सीधे बंजर नदी आकर के मिलती है, यहाँ बुड़नेर नदी आकर के मिलती है। डिंडोरी से लेकर मंडला के बीच में जो वन खंड है, जो वन प्रदेश है, वही नर्मदा को अजस्र रूप से जल की स्रोतस्वनी नदी बनाते हैं। लेकिन जब 15 साल पहले जब गया था तो वहाँ जंगल थे, अब छोटी छोटी खेत हैं, उसमें मसूर हो रही है और उसमें अलसी पैदा हो रही है, इतने छोटे छोटे खेत उसमें पैदा हो, अभी मसूर को उखाड़ा जाता, मसूर काटी नहीं जाती, मसूर को उखाड़ा जाता। तो जल जीवन, समाज, मान्यताएं, आस्थाएं, पुरातत्व, लोक देवता, वृक्ष, अब क्या कैसा कहेंगे कि जैसे ही मंडला जिला समाप्त होता है और पहाड़ियां समाप्त होती है, सागुन के पेड़ समाप्त हो जाते हैं, और जैसे डिंडोरी जिला लगता है और सरई और साजा के पेड़ हरे भरे। इस गर्मी में सरई तो जैसे अवतार ले लिया हो। ये वनस्पति का जो भूमि के आधार पर की, जलवायु के आधार पर की, वातावरण के आधार पर की, हम जमीन के आधार पर की, हम वहां की मिट्टी के आधार पर किस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर इस नदी के इस पार तो सागुन लगा हुआ है और सरई बिल्कुल नहीं है, अब नदी के उस पार जो है सरई शुरू हो जाती है। लेकिन उन सब में जो वनवासी रह रहे हैं, उन सब में जो नर्मदा पुत्र रह रहे हैं, वो नर्मदा के सहारे ही रहते हैं। वो नर्मदा के सहारे इसलिए रहते हैं, उनके जीवन का अभिन्न अंग नर्मदा है, नर्मदा माँ है, वो ठीक कह रहे हैं। एक आश्रम है डिंडोरी से बिल्कुल नीचे, वहां नर्मदा जी
1: बस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हो रही है, एक अखंड साधु जो है पता नहीं कितने साल का, और इतनी ऊंचाई होगी उस साधु महात्मा की, और कोई गाय नहीं, कोई भैंस नहीं, लेकिन जितने लोग जाते हैं सब सबको चाय पिलाता है, नाराज हो गए कि चाय पी जाओ, और कुछ नहीं है तन पर, केवल अधो वस्त्र है छोटा सा, और कब से है बोले हमको नहीं मालूम। ये ऐसे आश्रमों में बड़े हुए सन्यासी जो नर्मदा के किनारे ऐसे मोड़ खा करके आती, इधर भी चट्टान इधर भी चट्टान, मैंने बहुत पैदल उनके किनारे किनारे यात्रा की, जितनी जगह जाओगे नर्मदा का रूप अलग मिलेगा, दूसरा रूप उस तरह का नहीं मिलेगा। जितने घाट पर जाओगे नर्मदा का सौंदर्य यहाँ अलग है तो वहां अलग है, सूलपाणेश्वर में अलग है तो मीठी तलाई में अलग है, सागर संगम में अलग है और कोटेश्वर में अलग है, सब जगह अलग है, धर्मपुरी में अलग है, धर्मपुरी में तो दीप बनाती है और बीच में शिवलिंग है, मेरे ओंकारेश्वर में भी वैडूरमणि पर्वत पर ओम ओम आकार की आकृति में शिव बैठे हुए हैं, और इधर से कावेरी इधर से नर्मदा, कैसा अद्भुत, कितनी संरचना, भू संरचना का सौंदर्य जैसे अवतार ले लिया, भूमि का सौंदर्य तो अपने पास है लेकिन नर्मदा ने भूमि के सौंदर्य में टीकी लगाई है, कुमकुम का टीका लगाया है, अक्षत लगाया है, आरती उतारी है। ये नर्मदा जितनी जगह, यदि अमृतलाल बेगड़ कहते हो तो प्रपातों की नदी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन प्रपात खत्म हो गए हैं नर्मदा सागर बांध में, प्रपात खत्म हो गए सरदार सरोवर में, कम से कम 15 प्रपात समाप्त हुए हैं, लेकिन दूसरी समृद्धि आई है, नर्मदा का पानी बेटा बनकर के खेती में सिंचाई कर रहा है, और नर्मदा के पानी से बिजली बनकर के बेटी बनकर के घर घर में प्रकाश कर रही है, तो एक बेटा सिंचाई कर रहा है, दूसरा उसी जल से पैदा हुई बेटी, तुलसी कहते हैं कि पुत्री पवित्र करे कुल दोउ, तो बिजली पैदा हो रही है नर्मदा के जल से तो प्रकाशित हो रही, घर प्रकाशित होगा तो पीढ़ियां प्रकाशित होगी, घर प्रकाशित होगा तो संस्कार समृद्ध होंगे, घर प्रकाशित होगा तो स्वच्छता होगी, घर प्रकाशित होगा तो गाय को रोटी मिलेगी, घर प्रकाशित होगा तो तुलसी के किनारे शाम को दीपक जलेगा, घर प्रकाशित होगी तो माँ की ममता लहराएगी, घर प्रकाशित होगा तो पिता का आंचल हमारे ऊपर होगा, घर पिता होगी तो माँ के दूध से हम राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रभक्त बनकर के योग्य नागरिक बनेंगे। इतना घर पवित्र यदि हमारी माँ नर्मदा करती है, और ये नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करने का जो आनंद है वो अखंड आनंद है, वो अनिर्वचनीय है, वो शताब्दियों के पुण्य, जब 100 वर्षों के 100 जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के वो बड़भागी हैं जो नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करते हैं। कितनी बूढ़ी माएँ हैं, देखिए कैसे पीढ़ियां जुड़ रही है, एक ने त्याग दिया अगली पीढ़ी, तो मैं कहता हूं कि ये जो सामने पीढ़ी बैठी हुई है इसकी इसको थोड़ा सा सही दिशा देने की जरूरत है, ये परिवर्तन लाएगी, ये नर्मदा के पूरे संभार को, पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम तो पता नहीं नदी किनारे के कैसे सूखे पेड़ है जो एक दिन बहाव में बह जाएंगे, अगले 90 वर्ष का भारत तो ये बनाएंगे, अगले 80 वर्ष का भारत ये बनाएंगे, इनकी आंखों में लाल डोरे बना दीजिए, लाल रेखाएं पतली रेखाएं बना दीजिए उनमें रंग काम के भरने के, तो ये हमारे बच्चे करेंगे। एक क्रम से कितना अपार है, मठ है, मंदिर है, आश्रम है, साधु है, सन्यासी है, आस्था है, जीवन है, जमीन है, पशु पक्षी है, पक्षियों के कितने, पेड़ कितने प्रकार के, फलदार कितने प्रकार के, औषधियां कितने प्रकार की, आप माई की बगिया से लेकर के और कपिल धारा तक जाएंगे तो 10 बेटियां हमारे नर्मदा की औषधि लेकर के बेचती हुई मिलेंगी। हाँ बोले मैं तो यही काम कर रही हूँ, मुझे पिताजी ने बताया था औषधि का ज्ञान पारंपरिक रूप से और वो ठीक हो जाती है, मैं तो 2-3 औषधि लेकर के आया भी, उनको लगाई भी, बोले आप लगा दीजिए गमले पे लगा दीजिए और उसको ऐसा ऐसा कर दीजिए, वैसे शायद हम नहीं कर पाए लेकिन उनको बोध ज्यादा है। वो किनारे पर बैठी हुई औषधियों का ज्ञान, पक्षियों का ज्ञान, बोले ये पक्षी बोल रहा है तो 7वें दिन बारिश होगी ही, ये पेड़ में हरी पत्ती आ गई है तो अब बोनी शुरू होने वाली होगी ही, किसी विज्ञान के पास है क्या ऐसा, अमरकंटक के डिंडोरी में घूमिए आप, ये सब ज्ञान उसके पास है, ये सब ज्ञान हमारे दादाओं के पास भी था, लेकिन इस ज्ञान को संग्रहित करेंगे और ये जो संस्थाएं जुड़ी हुई है ये इस ज्ञान को यदि अभिलेखीकरण करेंगे तो फिर हम उसको पाठ्यक्रम में लाएंगे, कल से नया पाठ पढ़ेंगे, नया पाठ का मतलब नर्मदा के नए स्वरूप से हम परिचित होंगे, बहुत काम है, क्योंकि एक सनातन नदी को जानने के लिए सनातन परंपराओं से गुजरते हुए शाश्वत शब्दों में अभिलेखन करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को जोड़ना है, भारतवर्ष को जोड़ना है, और सच मानिए कि पूरे नर्मदा खंड में अमरकंटक से लेकर के नर्मदा कुंड से लेकर के रत्नाकर सागर में, पुराणों में देखिए, ग्रंथों में देखिए, रत्नाकर सागर में मिलती है जाकर के नर्मदा जी, रत्नाकर सागर में मिलती है। और वो जो जहां मिलती है वहां 70 किलोमीटर का चौड़ाई है, वहां पर नर्मदा जी जहां समुद्र में मिलती है वहां कितनी विराट हो जाती है, 70 किलोमीटर। गंगा तो डेल्टा बनाती है सागर संगम में, वहां पर कपिल ऋषि के आश्रम में, लेकिन नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा समग्र रूप में जाकर के समुद्र में समाहित होती है। और वो जहाज वाला बताता है, नाव वाला बताता है कि बोले भैया ये 70 किलोमीटर की, उसी पर तो हम बैठ करके पार करते हैं ना, परिक्रमा में जाते हैं तो उसी पर बैठ करके पार करते हैं। वही कहते हैं कि भाई यही नर्मदा जी मिलती, तो हाथ जोड़ लेते, मस्तक जोड़ लेते और आंखें तो अश्रु की बूंदे अभिषेक कर देती है नर्मदा को। इससे जुड़िए, ये नदी जीवन देने वाली नदी, ये नदी मध्य प्रदेश का उद्धार करने वाली नदी, ये जीवन, ये नर्मदा भीतर से हमको पवित्र करने वाली नदी। और यदि भीतर से पवित्र हो गया मनुष्य तो पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व पवित्र हो जाएगा। एक नदी पवित्रता का संकल्प लेकर के अपने तटों पे बह रही है, निरंतर आवाज दे रही है, आओ मेरे पुत्रों, मैं तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी रीति, तुम्हारी नीति, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा मान, तुम्हारा बड़प्पन, तुम्हारे जीवन की सार्थकता और तुम्हारी जीवन लेने का धर्म बताने के लिए तो बह रही हूँ, मेरे नदी के मेरे जल में पांव डुबो करके आचमन तो करो, पूरा संसार, पूरा तुम्हारा समग्र जीवन पवित्र हो जाएगा। ऐसी पवित्र नदी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ये मेरी माँ है, ये जगतदात्री है, ये पतित पावनी है, ये मेकल सुता है और ये शिव कन्या है। शिव और नर्मदा का अटूट रिश्ता है, शिव है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो शिव है। ऐसे शिव की पुत्री शांकरी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सब से विदा लेता हूं, मुझे अवसर दिया, वंदे मातरम।
2: ये था आज का खास कार्यक्रम जिसमें आपने वक्तव्य सुना डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

90.8 MHz पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। दिन के 10 बजे हैं और ये समय होता है कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में हर दिन आप सुनते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। तो आइए जानते हैं कल हमारे भोपाल शहर में क्या क्या गतिविधियां हुई। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में चलिए, जहां पर नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डिंडोरी की रोशनी भारवे ने साथियों के साथ गौंड जनजातीय कर्मा सैला नृत्य पेश किया। बड़वाहा के संजय महाजन ने साथी कलाकारों के साथ मिलकर गणगौर नृत्य प्रस्तुत किया। गायन की कड़ी में उज्जैन के लोकेश माल ने मालवी गायन प्रस्तुत किया। वहीं सागर के राजकुमार सिंह ठाकुर ने बुंदेली गायन की प्रस्तुति दी। संजय महाजन की टीम ने गणगौर नृत्य पेश किया। गणगौर नृत्य के बारे में उन्होंने बताया, चैत्र दशमी से चैत्र सुदी तृतीया तक पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस गणगौर उत्सव का ऐसा एक भी काम नहीं है जो बिना गीत के होता हो। गणगौर के रथ सजाए जाते हैं, रथ दौड़ाए जाते हैं, इसी अवसर पर गणगौर नृत्य किया जाता है। झालरिया दिए जाते हैं। महिलाएं और पुरुष रनुवाई और धनियर सूर्यदेव के रथों को सिर पर रखकर नाचते हैं। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा रविंद्र भवन में हुए 2 दिवसीय भारत संस्कृति यात्रा के अंतिम दिन सम्मान कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए हरिओम जटिया को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय अवार्ड 2025-26 से अलंकृत किया गया। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे ने जटिया को सम्मानित किया। वहीं लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित सम्मान समारोह में भोपाल के प्रखर लेखक एवं वक्ता डॉक्टर जवाहर कर्णावत को वातायन शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ब्रिटिश संसद के लॉर्ड उदय नागराजू द्वारा प्रदान किया गया। यूके में पिछले 25 वर्षों से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय संस्था वातायन ने ये आयोजन किया। इधर ऑलियंस फ्रांसिस में आयोजित 2 दिवसीय सिनेकारी 8 के दूसरे दिन की शुरुआत सिनेमेटिक फ्रेम्स विषय पर हुई, जिसमें प्रख्यात सिनेमेटोग्राफर राजेंद्र जांगले ने अपनी 4 दशकों की सिनेमाई यात्रा के अनुभवों को दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से साझा किया। उन्होंने फ्रेम, रोशनी और विजुअल भाषा के जरिए सिनेमा की बारीकियों को समझाया, जिसने उपस्थित दर्शकों और युवा फिल्मकारों को गहराई से प्रभावित किया। वहीं कवि और चिंतक उदयन वाजपेयी ने सिनेमा और अन्य कला माध्यमों के अंतर संबंधों पर विचार रखते हुए फ्रेंच, इटालियन, जापानी, अमेरिकन और हिंदुस्तानी सिनेमा के उदाहरणों के जरिए सिनेमा की वास्तविक पहचान पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विभिन्न कलाओं के संगम से निर्मित एक जीवंत अभिव्यक्ति है। वाजपेयी ने रोवियर, ब्रेसो, एल्फ्रेड हिचकॉक और रामानंद सागर के उदाहरणों के द्वारा सिनेमा में अभिनेता की जरूरत नहीं होने के पक्ष पर विस्तार से बात की। सिनेमा में भारतीय मिनिएचर पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और टाइम को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया पर भी बात की। ब्रिंग योर ऑन फिल्म सत्र में 8 फिल्मकारों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फिल्म पर चर्चा और ओपन टॉक के जरिए प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार साझा किए।

जंगल की हरियाली, पहाड़ों की खामोशी और जनजातीय जीवन की सहजता, इन सबको अपने रंगों में पिरोती भील चित्रकार सुनीता भावोर की कृतियां इन दिनों जनजाति संग्रहालय में सजी हैं। लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में आयोजित 73वीं शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी न केवल कला प्रेमियों को आकर्षित कर रही है, बल्कि जनजाति जीवन की जीवंत झलक को भी प्रस्तुत कर रही है। ये प्रदर्शनी सविक्रय 30 मई तक जारी रहेगी। विहान ड्रामा वर्क्स की चिल्ड्रन थिएटर विंग स्वप्नायन में रविवार का दिन ध्वनि, ताल और वाद्यों की गूंज से भरा रहा। विशेष सत्र रिदम सर्कल के रूप में आयोजित हुआ। तेजस्विता अनंत ने इस सत्र को संचालित किया। उन्होंने मोरी वायसा की अवधारणा साझा की और एक मणिपुरी वाक्य लैला गीतो कोरे पे से बच्चों को परिचित कराया, जिसका अर्थ है प्यार के लिए जियो। इस वाक्य को रिदम के साथ जोड़ते हुए बच्चों ने ताल बनाई और प्रेम जुड़ाव की भावना को अनुभव किया।

तो श्रोताओं, ये थी भोपाल शहर की विगत दिनों की और आगामी दिनों की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की सूचना। और अब चलते चलते बात करते हैं मौसम के हाल पर। प्रदेश में आंधी बादल और बारिश का दौर अभी 2-3 दिन तक और जारी रह सकता है। सोमवार को मालवा निवाड़ के ज्यादातर हिस्सों को छोड़कर भोपाल सहित आधे प्रदेश में तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और रीवा में आंधी के साथ ओले गिरने की आशंका है। इससे पहले रविवार को भोपाल में रात का तापमान 5.6 डिग्री गिरकर 22.4 डिग्री पर आ गया, जबकि दिन का तापमान 40.4 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश की बात करें तो रायसेन में बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 45 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके बावजूद यहां का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया था।

मौसम विभाग ने रविवार देर रात दिल्ली में तेज आंधी और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी में तेज आंधी के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस बीच रात करीब 12 बजे हरियाणा के पानीपत समेत 10 से 12 जिलों में आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक ये भारत का सबसे तेज तूफान है, जिसके दिल्ली, एनसीआर, उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब को भी प्रभावित करने की संभावना है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम की जानकारी और इसी के साथ अब कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अमा गजबी काका, जरा सिरके वाले प्याज तो पकड़ाइए और दो रोटी भी लेते आइए।
1: आया महमूद भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
2: ये लो, ये रही तुम्हारी दो रोटियाँ और ये सिरके वाले प्याज।
0: अमा इतने सारे?
2: ठीक है खा लो, और कुछ लाऊं?
0: नहीं नहीं। हाँ एक काम करिए, अपने टेप रिकॉर्डर पर कोई भड़कता भड़कता गीत लगाओ ना। अमा ये क्या देशभक्ति के गीत लगा रखे, बदल दो इसे।
2: माफ करना भाई, मैं तो सिर्फ यही गाने चलाता हूँ, और गीत मेरे पास हैं ही नहीं।
3: नाया।
2: मुझे और मेरे तोते को सिर्फ आजादी और देश प्रेम के गीत और कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं। ये बात यहाँ आने वाले सभी जानते हैं। जब से मैंने इसे पिंजरे से आजाद किया है, इसे आजादी और प्रेम का सच्चा अर्थ पता चल गया है। इसीलिए मिट्टू, मिट्टू मियाँ मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें देश के दीवाने शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की कहानी सुनाता हूँ। सुनोगे?
3: सुनूंगा, सुनूंगा, सुनूंगा। हाँ।
2: तो मिट्टू कहानी शुरू होती है। शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमी से मैसूर की पुरानी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के बाहर लाल बाग में, यहां फतेह अली टीपू सुल्तान, उनके वालिद सुल्तान हैदर अली और उनकी दादी जान फातिमा बेगम की रूहें कब्रों की सूरत में आज भी मौजूद हैं। वो टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, और अंग्रेजों ने भी टीपू सुल्तान को टाइगर कहा था। गाजी टीपू सुल्तान की शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी कौम उनसे सीधे टक्कर लेने से घबराती थी। टीपू को बहादुरी, हिम्मत और हौसलों की दौलत विरासत में अपने अब्बा सुल्तान हैदर अली से ही नसीब हुई थी। सुल्तान हैदर अली एक मामूली सैनिक का बेटा और मामूली सा ही सिपाही था जो मैसूर की सेना में नौकरी करता था, लेकिन अपनी सूझबूझ और शूरवीरता के कारण वो मैसूर का सुल्तान बन गया। उसे केवल मैसूर का सुल्तान नहीं, एक बहुत बड़ी सल्तनत का शासक बनना था। उसने मैसूर के आसपास के इलाकों पर विजय हासिल कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। सुल्तान हैदर अली को केवल एक ही बात का गम था कि उसके कोई औलाद नहीं थी।
4: हैदर, हैदर अली।
5: अरे अम्मी जान, आप हमारी आरामगाह में? अम्मी हमें बुलवा लिया होता।
6: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
4: खुश रहो बेगम, अल्लाह तुम्हारी झोली में चांद सा बेटा दे।
5: अम्मी क्यों आप हमारी दुखती रग पर हाथ रख रही हैं? इसी गम में तो हमारी बेगम दिन रात खुली जा रही है।
4: फिक्र मत करो बेटी, तुम लोग फकीर टीपू मस्ताना औलिया के पास माथा टेक आओ, सुना है उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। हैरान मत हो मेरे बच्चे, शायद अल्लाह यही चाहता है।
5: जी अम्मी जान, मैसूर का सुल्तान हर फकीर के आगे सर झुकाने को राजी है।
4: अल्लाह तुम्हें मुबारक दिन जल्दी ही नसीब करेगा बेटा।
5: अम्मी जान।
0: तो गजबीये काका, क्या सुल्तान हैदर अली ने अपने बेटे का नाम फकीर टीपू मस्ताना ओलिया के नाम पर फतेह अली टीपू रखा था?
2: हाँ महमूद, उन्हीं दिनों अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा पाकर हैदर अली दिल से और भी मजबूत बन गया था। हैदर अली एक नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे कर चुका था। हैदर अली की बहादुरी और बढ़ती हुई विरासत मराठे निजाम और अंग्रेज सभी की आंखों का कांटा बन रही थी। हैदर ने टीपू को समयानुसार युद्ध और बुद्धि दोनों में गजब का माहिर कर दिया था, और टीपू बहादुरी में अपने वालिद सुल्तान हैदर अली से 21 ही था।
0: अच्छा?
2: हाँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार जंग जीती थी।
7: हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए टीपू के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया।
8: सुल्तान हैदर के बेटे टीपू की सेना इधर ही आ रही है।
9: इधर मद्रास में हकआउट हु से कैसे पता चला कि हम इधर पार्टी कर रहे हैं?
8: Oh,
9: शेख सारा मजा खराब कर दिए। Hey, listen all of you. जल्दी इस शिप पर चढ़ जाओ। सुल्तान हैदर अली का बेटा टीपू सेना के साथ इधर आ रहे हैं। जल्दी
10: कहा गए नामकूल फिरंगी? खाने पीने का सामान बिखरा हुआ है, लगता है अभी अभी भागे हैं कायर।
11: छोटे सुल्तान वो देखिए, उधर देखिए, फिरंगी डर कर समुद्री जहाज में भाग रहे हैं।
10: इसका मतलब किसी ने उन्हें हमारे आने की खबर कर दी थी। कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी है जिस पर सेंट थॉमस ने अपना कब्जा किया हुआ है, वहां चलते हैं, वही अंग्रेजों की छटनी और कटनी करेंगे। चलो
11: चलो चलो
10: चलो
11: चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।

हैदर अली की ताकत अंग्रेजों के लिए जितनी चिंता का विषय थी उतनी ही निजामों और मराठों के लिए भी। इन तीनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन इसका पता चलते ही हैदर अली ने मराठों को लालच देकर उन्हें अपनी ओर कर लिया। निजामों को भी लालच दिया गया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। लेकिन युद्ध के बीच ही अंग्रेजों का विरोध कर उनसे अलग होकर वो हैदर अली से मिल गए। लेकिन ढुल मुल निजाम हैदर अली को भी युद्ध में अकेला छोड़कर भाग गए। मजबूरन हैदर अली को अपनी फौज को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। ये देख अंग्रेजों ने हैदर अली के हारने की अफवाह उड़ा दी। ये सुनकर उनकी वालिदा फातिमा, जो युद्ध के मैदान से 200 मील दूर हैदर नगर में थीं, परेशान हो गईं। और फातिमा बेगम अपने बेटे हैदर अली की हौसला अफजाई के लिए बरसाती भयानक रात में ही 1000 घुड़सवार सेना और बुर्का पहने 200 औरत घुड़सवारों के साथ चल पड़ी। 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वो युद्ध के मैदान में जा पहुंची।

0: सुल्तान का मर्तबा बुलंद हो, वालिदा साहिबा तशरीफ लाई है।
1: अम्मी जान, इतनी सुबह यहाँ जंग के मैदान में?
2: हैदर, हैदर मेरे बच्चे।
1: अम्मी जान आप यहाँ?
2: हमने सुना कि आप जंग से।
1: अम्मी जान,
2: नहीं नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता था। हमारा हैदर सीने पर तलवार खा सकता है, पीठ पर नहीं। हमें यकीन था कि आप हमारे दूध को शर्मिंदा नहीं करेंगे।
1: हमारे पीठ दिखाने की खबर अंग्रेजों की एक चाल थी अम्मी जान।
2: इसीलिए हम चले आए। हम चाहते हैं कि आप फिरंगियों को इस वतन से भगा दें।
1: अम्मी जान,
2: हैदर अली के नाम का जलवा हर तरफ दिखाई दे। हम दुआ करते हैं कि जब तक आपकी सांस में सांस है, आप कभी हार का मुंह ना देखें। आपकी हमेशा फतेह हो।
3: आमीन।
4: उस युद्ध के बाद हैदर अली ने मंगलौर में टीपू को अंग्रेजों का सामना करने के लिए भेजा। बहुत ही भयानक युद्ध था। फिरंगियों के पांव बुरी तरह उखड़ गए। इस फतह के बाद टीपू के नाम से भी अंग्रेज खौफ खाने लगे। इस बात का जश्न मनाया गया और मद्रास के किले पर एक चित्र टांगा गया।
5: अरे वो देखो, किले की दीवार पर तस्वीर। तख्त पर हमारे सुल्तान हैदर अली बैठे हैं।
6: कितनी खूबसूरत तस्वीर है।
5: हाँ, हाँ,
6: हाँ, हाँ, अरे इस तस्वीर में अंग्रेज लोग सिर झुकाए कागज दे रहे हैं हमारे सुल्तान को।
7: जैसे कोई संधि पत्र हो, हमसे समझौता कर लो वरना हम मर जाएंगे।
5: अरे, अरे ये सूंड वाला आदमी कौन है जो अंग्रेजों के साथ खड़ा है?
6: सूंड वाला?
5: हाँ?
8: अरे ये तो अंग्रेज का सेनापति स्मिथ लग रहा है।
5: स्मिथ? अरे उसकी सूंड तो देखो।
6: सूंड से पैसे भी गिरा रहा है हमारे सुल्तान के साथ।
4: वॉरेन हेस्टिंग्स इस लड़ाई में अंग्रेजों की दुर्दशा से बुरी तरह घबरा गया। उसने सर आयरकूट की कमान में सेना और पैसा भेजा, पर वो भी तीन बार टीपू से हार कर वापस लौट आया। इसी दौरान सुल्तान हैदर अली की पीठ में फोड़ा हो गया, जिसके कारण उसे अर्काट के किले में लौटना पड़ा। हैदर अली की तबीयत बिगड़ने लगी।
1: टीपू,
9: अब अजान,
1: हम नहीं जानते कि हम और कितने दिन के मेहमान हैं।
9: ऐसा ना कहें बजा।
1: लिहाजा हम चाहते हैं कि
9: अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आप हजारों साल जिए।
1: टीपू, तो लम्हे आजादी के साथ जीना भी जिंदगी भर का जीना है बेटा।
9: बजा,
1: हम जानते हैं इस वक्त अंग्रेज हमारे सर पर तलवार के मानित लटके हुए हैं।
9: आपको अपने टीपू की बहादुरी पर यकीन नहीं है?
1: इसीलिए तो बेटा, इसीलिए हम अपने शेर टीपू पर फक्र करते हैं। अंग्रेज अब सुल्तान हैदर अली से ज्यादा सुल्तान फतेह अली टीपू से डरते हैं।
9: सुल्तान फतेह अली टीपू? अब आप ये क्या कह रहे हैं?
1: टीपू बेटा, आपको दुख होगा कि सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और निजाम अंग्रेजों के आगे सर झुका चुके हैं।
9: जी,
1: नाना फड़नवीस के सामने भी सुलहनामा पेश हो चुका है। टीपू
9: जी,
1: ऐसे नासुक मोड़ पर हम अकेले आपके सहारे इतनी बड़ी सल्तनत का भार छोड़कर जा रहे हैं, मगर क्या करें, शायद अल्लाह ताला ने हमारा सुख यहीं तक लिखा था।
9: अब्बा जान,
1: हम जानते हैं कि आप हमसे भी ज्यादा बहादुर और नेक दिल हैं। हमें यकीन है टीपू कि आप हमसे बेहतर सुल्तान और जाबाज साबित होंगे। कल ही आपकी ताजपोशी की रस्म अदा की जाएगी। आप जाएं और तैयारी कर लें।
9: जी अब्बा जान, जरूर।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सात सितंबर सन 1782 को वीर सुल्तान हैदर अली संसार से विदा हो गया। अब मैसूर सल्तनत की बागडोर अकेले टीपू सुल्तान को ही संभालनी थी। टीपू बहादुर था पर चालबाज नहीं, इसीलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान को हराने के लिए चालें खेलने लगे। करीब 2 साल बाद ही उन्होंने टीपू सुल्तान को संधि पत्र भेजा कि वे लोग टीपू को हैदर अली का वारिस मानते हैं और मैसूर उनकी सल्तनत है, इसलिए वे मैसूर पर आक्रमण नहीं करेंगे, ताकि टीपू भी अंग्रेजों पर आक्रमण न करे। लेकिन इंग्लैंड से वॉरेन हेस्टिंग्स के स्थान पर कॉर्न वॉलिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जो चालें खेलने में माहिर था।
3: वेल निजाम साहब, आपकी कौम हमसे टीपू सुल्तान के खिलाफ कदम उठाने में मदद चाहती है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अभी अभी गवर्नर जनरल बनकर आए हैं, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त आने पर हम खुद आपकी मदद करेंगे।
4: ओके सर, जैसा आप कहें, हम चलते हैं। खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज। हम भी टीपू सुल्तान को हराना चाहते हैं, लेकिन किसी ऐरे गैरे के साथ मिलकर नहीं। हमें टॉप पर रहना है। जेरी।
5: यस सर।
3: हमने सुना है कि फ्रांसीसी टीपू सुल्तान के अच्छे दोस्त बन गए हैं। अभी अभी अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से फिसल कर आजाद हुए हैं। कहीं फ्रांसीसी हमें कमजोर समझ कर भारत पर अपना कब्जा ना जमा लें। अगर टीपू सुल्तान उनके साथ मिल गया तो जेरी बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे उसे हराने। फ्रांसीसी लोगों और टीपू सुल्तान पर नजर रखो।
5: ओके सर, ओके।
3: मुझे मराठों और निजाम को एक दूसरे के खिलाफ रखना होगा। दोनों को लालच दूंगा कि टीपू सुल्तान से जीती गई जमीन दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। हम तीनों एक साथ ही लड़ाई करेंगे। लॉन्ग लिव आवर क्वीन।
6: टीपू सुल्तान जिंदाबाद।
7: टीपू सुल्तान जिंदाबाद।
8: टीपू सुल्तान
9: जिंदाबाद।
10: टीपू सुल्तान जिंदाबाद।
11: टीपू सुल्तान जिंदाबाद।
12: टीपू सुल्तान जिंदाबाद।
2: मद्रास और बंगाल में लड़ा गया ये युद्ध कॉर्नवालिस की एक बहुत बुरी हार साबित हुआ। लेकिन कॉर्नवालिस ने अपना शैतानी दिमाग लड़ाया और टीपू सुल्तान के बड़े बड़े अमीरों और सरदारों को मोटी मोटी रकमें अदा कर अपनी ओर कर लिया। कुछ खुराफाती लोगों को फौज में भर्ती कर दिया। दूसरी तरफ मराठों और निजामों को भी एक साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार किया। टीपू सुल्तान गैरों के हत्थे तो नहीं चढ़ा, लेकिन अपनों की बेवफाई और नमक हरामी से बुरी तरह घिर गया। सुमरपीठ के बुर्ज की यह हार इतिहास में उसकी बहुत बड़ी हार थी। उसे अपने लोगों की जान बचाने और अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से सुलह करनी पड़ी। उसका आधा राज्य तो मराठों और निजामों के बीच बांट दिया गया था। बाकी के राज्य के बदले उसे एक बहुत ही दर्दनाक फैसला करना पड़ा।
0: सुल्तान, क्या हुआ? क्या फैसला किया अंग्रेजों ने? वो हमारा आधा राज्य छोड़ रहे हैं ना?
8: बेगम, आपको हम पर यकीन है?
0: जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है? हम आपके शरीके हयात हैं, क्या हमसे अपना दुख नहीं बांटिएगा?
8: हमने जो फैसला अपनी आवाम और अपनी कौम को बचाने के लिए किया है, उसमें आप हमारा साथ देंगे ना?
0: जी।
8: हम जानते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर हमें ये शर्तें माननी पड़ी, लेकिन खुदा गवाह है बेगम, हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है।
0: ऐसा क्या फैसला हुआ है? हमें बताइए ना, दर्द को अकेले जज्ब ना कीजिए, बताइए।
8: फिरंगी हमारी सल्तनत के हर जाने की शक्ल में 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ तो हम दे चुके हैं, बाकी के 2 करोड़ के लिए हमने उनसे 2 साल का वक्त मांगा है।
0: तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
8: लेकिन फिरंगी, वक्त के अवज में अपने पास कुछ जमानत रखना चाहते हैं।
0: तो
8: हमें उनकी शर्त माननी पड़ी बेगम, और उस शर्त के मुताबिक हमें अपने दोनों बेटों को उनके पास जमानत के तौर पर रखना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं, वो तो नन्हे नन्हे 8-10 साल के बच्चे हैं।
8: आप हम पर भरोसा रखिए बेगम, हम वक्त से पहले ही अपने बच्चों को उन दरिंदों के कब्जे से छुड़ा लेंगे। हमारे बच्चों को वो हिफाजत से रखेंगे, उन्हें सिर्फ हमारी सल्तनत का लालच है, और वो हमारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। बस
9: अम्मी जान, अब्बास सुल्तान ने जो फैसला किया है उसमें हम उनका पूरा साथ देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें।
13: बिल्कुल,
9: हम बहादुर शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की औलाद हैं।
8: मेरे बच्चे,
0: मेरे बच्चे, हमें माफ करना।
2: समय की ऐसी लाचारी टीपू सुल्तान की जिंदगी में पहली बार आई थी, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। इन 2 सालों में उसने अपनी बिखरी ताकत को जमा किया, नए सैनिक, नए हथियार जमा किए, अपने बचे हुए उजड़े राज्य को फिर से लहलहा दिया, और समय से पहले ही अपने बच्चों को छुड़ा लाया। अंग्रेज हैरान थे, वो तो इस ताक में थे कि टीपू अपना वादा तोड़े तो उसकी बाकी की जमीन वो हड़प जाएं। लेकिन एक बार फिर वो मात खा गए। अंग्रेजों ने मराठों और निजामों को भी आपस में उलझाकर उनकी लड़ाई करवा दी, और इधर टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाया कि वो फ्रांसीसियों से मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और फिर फरवरी सन 1799 में अंग्रेजों के सैनिक टीपू के राज्य की ओर फिर से कूच कर गए। उन्होंने टीपू के बार बार सुलह के पैगाम को नजरअंदाज कर लड़ाई शुरू कर दी। इस बार टीपू सुल्तान मेहताब बाग, जो राजधानी और किले का मुख्य द्वार था, वहां अपने ही विश्वासपात्र मीर सादिक के विश्वासघात का शिकार हो गया।
14: अरे उधर देखो, मीर सादिक रास्ता दिखा रहा है। चलो किले की उस टूटी दीवार के बीच से निकल जाओ, जल्दी जल्दी, क्विक। कैसे? किले के अंदर सैनिकों पर टूट पड़ो, चलो।
8: क्या फिरंगी सेना किले के अंदर? ये कैसे आई?
15: सुल्तान, मैंने मीर सादिक को किले की टूटी दीवार के पास चुपके से जाते देखा था, उसी ने दगाबाजी की है सुल्तान।
8: हैं?
14: मीर सादिक, मारो, मारो, मारो, मारो, हमला।
15: सुल्तान को गोली लगी।
14: टाइगर टीपू इज डेड।
2: और इस तरह शेरे मैसूर, नूरे इस्लामुद्दीन, टीपू सुल्तान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया।
4: गजबिये काका, वो ऊंचे दर्जे का सेनापति, वीर योद्धा, बहादुर, नेक दिल, जनता का प्रिय सुल्तान था। जब तक वो जिया, उसने अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा, है ना?
2: हाँ महमूद, और जब तक टीपू सुल्तान जिया, स्वतंत्र जिया, टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया।
13: जय हिंद,
16: जय हिंद।
17: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा,

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अंग्रेजों ने ब्रिटिश ओक की तुलना में भारतीय सागौन को क्यों चुना? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध जहाज इंग्लैंड में नहीं बल्कि बॉम्बे यानी मुंबई के एक भारतीय

0: इष्ट था। ओक से बने जहाज अक्सर कुछ ही दशकों में सड़ जाते थे, लेकिन वाडिया द्वारा बनाए गए सागौन के जहाज लगभग अटूट थे, जो अक्सर 80 साल या उससे अधिक समय तक समुद्र में चलने लायक रहते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण भारत में बना दरिया दौलत नामक एक बगला जहाज, जो पूरे 87 वर्षों तक समुद्र में तैरता रहा। इंजीनियरिंग की इस उत्कृष्टता ने लंदन में खलबली मचा दी थी, क्योंकि अंग्रेज जहाज निर्माता अपने एकाधिकार के खत्म होने से डर गए थे। महान युद्ध पोतों से लेकर विशाल व्यापारिक जहाजों तक भारत के इन मास्टर कारीगरों ने वैश्विक नौसैनिक इतिहास की वास्तविक नींव रखी थी।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं, प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आप सभी को गौसिया खान का नमस्कार। और स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं
2: संदीप शर्मा। श्रोताओं, शब्दों के शिल्पकार वो व्यक्ति जो शब्दों को कला की तरह गढ़ता है, उन्हें इस तरह सजाता और संवारता है कि वे सीधे दिल और मन पर प्रभाव डालें। जब दुनिया शब्दों में खुद को ढूंढती है, जब कहानी इंसान की आत्मा को छूती है, तब कहीं जन्म लेता है एक ऐसा रचनाकार जो शब्दों को केवल लिखता नहीं, जो शब्दों को जीवंत कर देता है, जो एक युग गढ़ता है, वही सच्चा शब्दों का शिल्पकार होता है।
1: कभी शब्दों से चित्र बनाए जाते हैं, कभी चित्रों में शब्दों की आत्मा बसती है, और जब ये दोनों मिल जाएं तब जन्म होता है एक ऐसे कलाकार का जो समय से परे युगों तक अमर हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां शब्द चित्र बनते हैं और चित्र बोल उठते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महान रचनाकार की जिसने शब्दों और सिनेमा दोनों में अपनी अद्भुत छाप छोड़ी, और वह है सत्यजीत रे। एक नाम, एक युग और एक प्रेरणा।
2: सत्यजीत रे एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका नाम केवल भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े सेट, चमक दमक और मनोरंजन की कल्पना करते हैं, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसने सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समय का दर्पण बना दिया।
1: उन्होंने आम आदमी की जिंदगी, उसके संघर्षों, उसकी भावनाओं और उसके सपनों को इतनी सच्चाई से पर्दे पर उतारा कि पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करने लगी। सत्यजीत रे वास्तव में एक रचनाकार थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्ची कला वही होती है दोस्तों जो दिल को छू जाए, जो सोचने पर मजबूर कर दे और समाज को एक नई दिशा दे।
2: 2 मई 1921 को कलकत्ता की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी कल्पना में भविष्य की कहानियां सांस ले रही थी, जिसके हाथों में शायद कलम और कैमरा पहले से ही लिखे थे, और वो बालक था सत्यजीत रे। ये कोई साधारण परिवार नहीं था,
1: ये वो घर था जहां शब्दों की खुशबू बसती थी। दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी एक लेखक, प्रकाशक और कलाकार, पिता जिनकी कविताएं और हास्य आज भी बच्चों के दिलों में बसते हैं। शायद यही कारण था कि शब्द, चित्र और संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए।
2: लेकिन किस्मत ने जल्द ही उनके पिता सुकुमार रे को उनसे छीन लिया। रे को अपने पिता को जानने का अवसर ही नहीं मिला। छोटे सत्यजीत ने बचपन में ही जीवन की कठोर सच्चाइयों को महसूस किया। सत्यजीत रे को अपने पिता की बहुत कम यादें थी। हालांकि एक घटना जो रे को अपने पिता के बारे में स्पष्ट रूप से याद थी, वो तब की थी जब वे अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए कलकत्ता के उत्तरी उपनगर में स्थित एक छोटे से शहर सोदेपुर गए थे। जिस घर में वे ठहरे थे वो गंगा नदी के किनारे था और उसमें एक छोटा सा आंगन था। एक दिन उनके पिता खिड़की के पास बैठकर चित्र बना रहे थे। सत्यजीत ने उन्हें जोर से कहते सुना, देखो एक जहाज। जब सत्यजीत दौड़कर आंगन में आए तो उन्होंने एक स्टीमर को गुजरते देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने कोई जहाज देखा था।
1: आपको बताते हैं सत्यजीत रे के बचपन से जुड़ा एक रोचक किस्सा। रे का कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन इससे उन्हें संगति की कमी महसूस नहीं हुई। उनके पहले मित्रों में से एक उनकी घरेलू नौकरानी श्यामा का बेटा छेदी था। छेदी उनसे 5 साल बड़ा था और हमेशा उन्हें रे चौधरी कहकर पुकारता था, और वह पतंग उड़ाने में भी माहिर था।
2: श्रोता, विश्वकर्मा पूजा का त्योहार, जब मशीनों की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए पूजा की जाती है, और कलकत्ता में लगभग हर कोई पतंगबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, सत्यजीत के लिए वो विशेष रूप से रोमांचक था। पूजा वाले दिन सुबह सुबह छेदी सत्यजीत को साथ लेकर छत पर चढ़ गया और पतंगबाजी की प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया। सत्यजीत ने रील पकड़ी हुई थी और छेदी की पतंग आसमान में उड़ रही थी। हर बार जब छेदी प्रतिद्वंदी की पतंग काटकर उसे पकड़ लेता तो आस पड़ोस के घरों से खुशी की चीखें गूंज उठती। भोक्ता, तुम्हारी पतंग छूट गई।
1: क्या बात है। उनके बचपन का एक और किस्सा आपको बताते हैं। आपको आइसक्रीम कैसी पसंद है, गर्म या ठंडी? आप सोचेंगे कैसा प्रश्न है। आप शायद तुरंत पूछेंगे आइसक्रीम तो ठंडी होनी चाहिए, लेकिन युवा सत्यजीत रे के अनुसार ऐसा नहीं था दोस्तों। बचपन में सत्यजीत रे को आइसक्रीम का बहुत शौक था। एक दिन बुला काका और उनकी पत्नी उन्हें कलकत्ता बंदरगाह दिखाने ले गए। शिपयार्ड में अलग अलग रंगों और आकारों की नाव और जहाजों को लंगर डाले देखकर बच्चा बहुत उत्साहित हो गया।
2: और लौटते समय वे एक रेस्तरां में रुके। जब आइसक्रीम परोसी गई तो सत्यजीत उसे चखने के लिए बेताब हो गए, लेकिन आइसक्रीम का पहला चम्मच खाते ही उनके दांत में दर्द होने लगा। बच्चा अचानक अपनी सीट से उठा, आइसक्रीम परोसने वाले वेटर के पास दौड़ा और उससे कुछ फुसफुसाया। उसने जो कुछ भी कहा उससे वेटर को हंसी आ गई। फिर वो मेज पर आया और बताया कि बच्चे ने उससे आइसक्रीम गर्म करने का अनुरोध किया था।
1: क्या बात है। आधुनिक भारतीय कला के अग्रणी व्यक्तित्वों में से एक और कला भवन में रे के शिक्षक नंदलाल बोस ने एक बार रे से कहा था, एक पेड़ बनाओ लेकिन पश्चिमी शैली में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर नहीं बढ़ता। रेखाएं आधार से ऊपर की ओर होनी चाहिए। इससे रे को यह एहसास हुआ होगा कि कला भी जीवन की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होनी चाहिए।
2: अपने तीन मित्रों के साथ उन्होंने भारत के कलात्मक स्थलों का दौरा भी किया। इस दौरे ने उनका ध्यान भारतीय कला में प्रतीकात्मकता की ओर आकर्षित किया, उन छोटे छोटे विवरणों की ओर जो गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। एक ऐसा गुण जो उनकी फिल्मों में बखूबी प्रदर्शित हुआ।
1: सत्यजीत रे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी दृष्टि। बचपन से ही उन्हें कला के प्रति गहरी रुचि थी। वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। जहां दूसरों की भीड़ दिखती थी वहीं उन्हें कहानी नजर आती थी।
2: और फिर आया वो समय जब उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, जहां कला, संगीत और साहित्य एक साथ सांस लेते हैं। यहीं से उनके भीतर का कलाकार पूरी तरह जाग उठा और यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो उन्हें ले गया सिनेमा की दुनिया में।
1: ४९४३ में रे ने शांति निकेतन छोड़ दिया और कलकत्ता वापस आ गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश विज्ञापन अभिकरण डीजे केमर में नौकरी शुरू कर दी। इनके पद का नाम लघु दृष्टा जूनियर विजुअलाइजर था और महीने के केवल ₹80 का वेतन मिलता था। हालांकि दृष्टि रचना राय को बहुत पसंद थी और उनके साथ अधिकतर अच्छा ही व्यवहार किया जाता था, लेकिन एजेंसी के ब्रिटिश और भारतीय कर्मियों के बीच कुछ खिंचाव रहता था क्योंकि ब्रिटिश कर्मियों को ज्यादा वेतन मिलता था।
2: 1943 के लगभग ही ये डीके गुप्ता द्वारा स्थापित सिग्नेट प्रेस के साथ भी काम करने लगे। गुप्ता ने रे को प्रेस में छपने वाली नई किताबों के मुखपृष्ठ रचने को कहा और पूरी कलात्मक मुक्ति दी। रे ने बहुत सी किताबों के मुखपृष्ठ बनाए, जिनमें जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, यानी कुमाऊं के नरभक्षी, और जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। इन्होंने बांग्ला के जाने माने उपन्यास पाथेर पांचाली के बाल संस्करण पर भी काम किया, जिसका नाम था आम की गुठली की सीटी। रे इस रचना से बहुत प्रभावित हुए और अपनी पहली फिल्म इसी उपन्यास पर बनाई। मुखपृष्ठ की रचना करने के साथ ही उन्होंने इस किताब के अंदर के चित्र भी बनाए। इनमें से बहुत से चित्र उनकी फिल्म के दृश्यों में दृष्टिगोचर होते हैं।
1: रे ने दो नए फॉन्ट भी बनाए, रे रोमन और रे बिजार। रे रोमन को 1970 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिला। कलकत्ता में रे एक कुशल चित्रकार माने जाते थे। रे अपनी पुस्तकों के चित्र और मुखपृष्ठ खुद ही बनाते थे और फिल्मों के लिए प्रचार सामग्री की रचना भी खुद ही इकट्ठा करते थे। भारत में सत्यजीत रे पर कई वृत्तचित्र फिल्में बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख हैं भगवान दास गर्गा द्वारा निर्देशित क्रिएटिव आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे 1964 और श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित सत्यजीत रे 1982, उत्पलेंदु चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित द म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे 1984 और गौतम घोष द्वारा निर्देशित रे लाइफ एंड वर्क ऑफ सत्यजीत रे 1999, 2016 में फिल्म डबल फेलुदा की शूटिंग के दौरान सत्यजीत के बेटे संदीप ने अपने पिता के पुस्तकालय का वीडियो भी बनाया था।
2: लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का संगम था ये। आर्थिक चुनौतियां सामने थी, उन्होंने विज्ञापन कंपनी में काम किया, डिजाइन बनाए, लेकिन उनका मन कहीं और ही था, उनका मन था सिनेमा में। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों का अध्ययन किया, किताबें पढ़ी और सिनेमा की बारीकियों को समझा। इसी दौरान उन्होंने एक उपन्यास पाथेर पांचाली पढ़ा, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।
1: सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाई। ये फिल्म बनाना आसान नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन सीमित थे और कोई बड़ा स्टार भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी दोस्तों, उनका जुनून और उनका विश्वास। इस फिल्म में साधारण गांव के गरीब परिवार की कहानी असाधारण संवेदनाओं के साथ दिखाई गई है। इस फिल्म में समाज की वास्तविकता को दर्शाया गया है।
2: और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और पूरी दुनिया ने भारतीय सिनेमा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। इस फिल्म की सादगी और यथार्थता ने हर किसी का दिल जीत लिया और ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म केवल फिल्म नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा का पुनर्जन्म थी।
1: इसके बाद आई अपराजितो और अपूर्व पुरुषसंगसार। इन तीनों फिल्मों को मिलाकर अपूर्व त्रयी कहा जाता है, जो आज भी विश्व सिनेमा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। ये त्रयी एक बच्चे के बचपन को लेकर उसके युवा अवस्था तक की कहानी को दर्शाती है। इसमें जीवन के हर पहलू, खुशी, दुख, संघर्ष और सपनों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई और अपनी रचनात्मकता से नई दिशा प्रदान की।
2: श्रोताओं, फिल्मों के अलावा सत्यजीत रे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे, वे शब्दों के जादूगर थे। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए कई लोकप्रिय कहानी भी लिखी। सत्यजीत रे ने फेलुदा नाम के एक जासूस की कहानियों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें बादशाही, अंगति, गोलोक धाम रहस्य जैसी प्रसिद्ध रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शोंकू श्रृंखला में एक वैज्ञानिक प्रोफेसर शोंकू और एलियन जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनकी पुस्तकों का अंग्रेजी, जर्मन, पोलिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
1: फेलुदा नामक जासूसी पात्र और प्रोफेसर शोंकू जैसे वैज्ञानिक चरित्र आज पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके लिखने में रोमांच, ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कहानी हर दिल को छू जाती थी, हर शब्द में एक गहराई और एक कहानी में संदेश छिपा होता था।
2: रे ने कभी भी इस गाथा शैली को नहीं अपनाया। उनकी बाद की फिल्में समय के साथ अधिक केंद्रित होती गईं, जिनमें पारंपरिक कथा के बजाय मनोविज्ञान पर जोर दिया गया। उन्होंने जानबूझकर खुद को दोहराने से भी परहेज किया। परिणाम स्वरूप उनकी फिल्में परिवेश, काल और शैली की एक असाधारण रूप से विस्तृत श्रृंखला को समेटे हुए हैं, जिनमें हास्य, त्रासदी, प्रेम कहानियां, संगीत और जासूसी कहानियां शामिल हैं, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक बंगाली समाज के सभी वर्गों को दर्शाती हैं। हालांकि रे के अधिकांश पात्र औसत दर्जे की क्षमता और प्रतिभा वाले हैं, उनकी वृत्तचित्र फिल्मों के विषयों के विपरीत, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर 1961 और दी रनर आई 1972 शामिल हैं। रे को अंतरात्मा से ग्रस्त व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और भ्रष्टाचार ने आकर्षित किया। उनकी फिल्में मुख्य रूप से क्रिया और कथानक के बजाय विचार और भावना से संबंधित हैं। रे की कुछ बेहतरीन फिल्में उपन्यासों या अन्य रचनाओं पर आधारित थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो निर्देशक पर प्रमुख रचनात्मक प्रभाव थे, उनकी रचनाओं में चारुलता 1964 शामिल है, द लोनली वाइफ जो 1879 में एक धनी पश्चिमी प्रभाव वाले बंगाली परिवार में घटित एक दुखद प्रेम त्रिकोण की कहानी है, शायद रे की सबसे उत्कृष्ट फिल्म है। तीन कन्या महिलाओं के बारे में लघु फिल्मों की एक विविधतापूर्ण त्रयी है, जबकि घरे बाइरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1907-08 में स्थापित बंगाल के पहले क्रांतिकारी आंदोलन का एक गंभीर अध्ययन है।
1: रे की हिंदू रूढ़िवादिता और सामंती मूल्यों पर आधारित प्रमुख फिल्मों में जलसाघर 1958 शामिल है, जो संगीत के प्रति एक व्यक्ति के जुनून का भावपूर्ण चित्रण है। देवी 1960, जिसमें जुनून एक लड़की के दिव्य अवतार के प्रति है। सदगति 1981, जो जाति व्यवस्था पर एक सशक्त प्रहार। और कंचनजंगा 1962, रे की पहली मौलिक पटकथा और पहली रंगीन फिल्म, जो धनी पश्चिमीकृत बंगाली लोगों के बीच निर्धारित विवाह का सूक्ष्म अन्वेषण है। शतरंज के खिलाड़ी 1977, रे की हिंदी भाषा में बनी पहली फिल्म, जो अपेक्षाकृत बड़े बजट से बनाई गई थी, भारत पर पश्चिम के प्रभाव की और भी सूक्ष्म पड़ताल करती है। सन 1856 में भारतीय विद्रोह से ठीक पहले लखनऊ में घटित ये कहानी शासक वाजिद अली के अंग्रेजों के हाथों पतन को उत्कृष्ट व्यंग और करुणा के साथ दर्शाती है।
2: श्रोताओं, रे की बाकी प्रमुख रचनाएं 1943 से 44 के बंगाल अकाल की उनकी मार्मिक कहानी एहसानी संकेत, 1973 दूर की गड़गड़ाहट को छोड़कर मुख्य रूप से कलकत्ता और आधुनिक कलकत्ता वासियों से संबंधित हैं। अरण्येर दिन रात्रि, जो कि 1970 में प्रदर्शित हुई थी, इसमें चार युवकों के शहरी रीति रिवाजों से बचने के प्रयास में ग्रामीण यात्रा पर जाने और असफल होने का वर्णन है। 1963 में आई महानगर और 1970 के दशक में बनी फिल्मों की त्रयी प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जन अरण्य, क्रांतिकारी माओवादी हिंसा, सरकारी दमन और कपटपूर्ण भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि में मध्यम वर्ग के रोजगार के संघर्ष की पड़ताल करती हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद, जिसमें रे ने पी को 1980 में बनाई और फिर हृदय रोग से बीमार पड़ गए, वे समाज में भ्रष्टाचार के विषय पर लौट आए। हेनरिक इब्सन के नाटक का भारतीय रूपांतरण गणशत्रु 1989, शाखा प्रशाखा 1990 और उत्कृष्ट आगंतुक 1991 अपने सशक्त पुरुष केंद्रीय पात्रों के साथ रे के स्वयं के व्यक्तित्व के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके प्रिय बंगाल के बौद्धिक और नैतिक पतन के खिलाफ दृढ़ता से विरोध करते हैं।
1: रे ने 1982 में आत्मकथा लिखी जखन छोटो छिलम, जब मैं छोटा था, उनके बचपन की यादों, अनुभवों और शुरुआती जीवन का एक संस्मरण। ये पुस्तक उनके शुरुआती जीवन, पारिवारिक माहौल और उन घटनाओं का वर्णन करती है जिन्होंने उन्हें एक महान फिल्म निर्माता के रूप में ढाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों के विषय पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं आर फिल्म्स, देयर फिल्म्स। 1976 में प्रकाशित इस पुस्तक में रे की लिखी आलोचनाओं का संकलन है। इसके पहले भाग में भारतीय सिनेमा का विवरण और दूसरा भाग हॉलीवुड पर केंद्रित है।
2: श्रोताओं, सत्यजीत रे ने बांग्ला भाषा में लिखा, जो उनकी मातृभाषा थी। सत्यजीत रे को बांग्ला साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाएं न केवल बांग्ला पाठकों में बल्कि देश विदेश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी शैली सरल, स्पष्ट और आकर्षित थी, जो पाठकों को आसानी से अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी रचनाओं में विज्ञान, रहस्य और रोमांच का अद्भुत मिश्रण था।
1: दोस्तों, सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ वे एक लेखक, संगीतकार और चित्रकार भी थे। फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही किया करते थे, जैसे पटकथा लिखना, अभिनेता ढूंढना, पार्श्व संगीत लिखना, चलचित्रण, कला निर्देशन, संपादन और प्रचार सामग्री की रचना करना। फिल्में बनाने के अतिरिक्त वे कहानीकार, प्रकाशक, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे।
2: उन्होंने अपनी फिल्मों का संगीत भी स्वयं तैयार किया। ये बहुत दुर्लभ बात है कि एक व्यक्ति इतनी सारी विधाओं में निपुण हो। उनकी फिल्मों में आम आदमी के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी भावनाओं को बहुत ही सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे को पहेलियों और बहुवर्थी शब्दों के खेल से बहुत प्रेम था। इसे इनकी कहानियों में भी देखा जा सकता है।
1: सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी। उनकी फिल्मों में शोर नहीं था, लेकिन गहराई थी। उनकी कहानियों में दिखावा नहीं था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी फिल्मों में आम आदमी की जिंदगी को इतनी सादगी और गहराई से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक खुद को उसमें देख पाता है।
2: दोस्तों, सत्यजीत रे ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। उन्होंने ये साबित किया कि सिनेमा मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनकी फिल्मों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया।
1: सत्यजीत रे केवल एक फिल्म निर्देशक नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक युग और एक प्रेरणा थे। उनकी कला आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची रचनात्मकता सीमाओं से परे होती है।
2: श्रोताओं, उनकी पहली ही फिल्म को तकरीबन एक दर्जन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे चार्ली चैपलिन के बाद सिनेमा से जुड़े अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1987 में फ्रांस के लेंजियो द ओनू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने उनकी विरासत को मान्यता देते हुए 2021 में अपने वार्षिक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया।
1: सन 1992 में एकेडमी ऑनररी अवार्ड ऑस्कर भी प्रदान किया गया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। ये सम्मान उनके अद्वितीय योगदान का प्रमाण है। लेकिन असली सम्मान तो वह है दोस्तों, जो लोगों के दिलों में बसता है, और सत्यजीत रे आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं।
2: अपने पूरे करियर में बनाई गई कुल 3 दर्जन फिल्मों के लिए उन्हें 32 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। ये मुख्तसर सा बायोडेटा दुनिया के चलचित्र पर भारतीय फिल्मों को स्थापित करने वाले उस फिल्मकार का है जिन्हें करीब से जानने वाले माणिक दा के नाम से और दुनिया सत्यजीत रे के नाम से पहचानती है।
1: आखिर ऐसा क्या था सत्यजीत रे के काम में जिसे पूरी दुनिया ने जाना और सराहा, जिसके लिए महान जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा यहाँ तक कह बैठे कि रे की फिल्मों को देखे बिना रहना चांद और सूरज को देखे बिना रहने जैसा है।
2: वाह दोस्तों, सत्यजीत रे के जीवन से जुड़ी खास बात यह भी है कि वे सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके काम करते थे। जब वे किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते तो वो अपने साहित्य कार्यों, चित्रकला, पटकथा लेखन और संगीत में व्यस्त रहते थे। वे जानते थे कि खुद को कैसे व्यस्त रखना है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए रचनात्मक कार्यों का एक विशाल भंडार छोड़ा है जिसका वे भरपूर आनंद उठा सकेंगे। शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्देशक हो जिसने इतने विविध विषयों पर इतनी उच्च कोटि की रचनाएं की हों। रे का लेखन समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। रे को समझने के लिए उनकी लेखन क्षमता, उनके संगीत और चित्रकार रे को समझना आवश्यक है।
1: उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं जिन्हें हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक किस्सा हम आपको बताते हैं। ये उनकी मृत्यु से महज 3-4 साल पहले की बात है। एक बार एक इंडोर सेट पर वे 2 मशहूर अभिनेताओं को निर्देशित कर रहे थे। कमरे में मची अफरा तफरी के बीच भी वे पूरी तरह शांत थे, चुपचाप कैमरे वालों को ध्यान से देख रहे थे और सेट में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए कह रहे थे।
2: उनके आसपास के लोग उनसे काफी छोटे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने बीच मौजूद उस महान व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शायद ही कभी बोलते या दखल देते थे, लेकिन जैसे ही शूटिंग का समय नजदीक आता वे कमान संभाल लेते और सटीक निर्देश देते। अचानक पूरा मंच जीवंत हो उठता, सब लोग सजग हो जाते। वे धीरे धीरे अभिनेताओं की गतिविधियों को निर्देशित करते, संवाद बोले जाते, शॉट लिए जाते और बस कोई दोहराव नहीं। अभिनेताओं को रे के निर्देश इतने कोमल, इतने सच्चे थे कि आप दंग रह जाते हैं।
1: उन्हें सेट पर निर्देशन करते देखना रे के बारे में कई निबंधों से कहीं अधिक जानकारी देता है। वे सेट पर किसी भी तरह की लापरवाही के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एक बार उत्तम कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे सबसे शांत और गंभीर अभिनेताओं में से एक थे जो उनकी ही तरह अभिनय से पहले पूरी तरह मौन रहते थे।
2: सत्यजीत रे का जीवन हमें यहाँ सिखाता है कि यदि हमारे अंदर जुनून, मेहनत और सच्चाई है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने काम के माध्यम से यह दिखाया कि सच्ची कला वही है जो दिल को छू जाए और समाज को एक नई दिशा दे। आज भी जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो हमें केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन भी दिखाई देता है। वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी कला हमेशा अमर रहेगी।
1: सिनेमा केवल चित्रों का खेल नहीं है, भावनाओं की भाषा है, और इस भाषा के महान शिल्पकार थे सत्यजीत रे। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे का निधन हो गया, लेकिन उनका काम आज भी जीवित है।
2: सत्यजीत रे का अध्ययन बेहद ज्ञानवर्धक हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन अगले ही पल इस कठोर वास्तविकता का दुखद एहसास हो जाता है।
1: उनकी फिल्में, उनकी कहानी, उनका संगीत आज भी हमें प्रेरित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। सत्यजीत रे का जीवन हमें यह सिखाता है दोस्तों कि सच्ची सफलता वही है जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज में कुछ नया और बेहतर दे सके।
2: उन्होंने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। हमें सत्यजीत रे जैसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में मेहनत, लगन और रचनात्मकता को अपनाना चाहिए। वे केवल लेखक नहीं थे, वे केवल निर्देशक नहीं थे, वो थे शब्दों के शिल्पकार। तो श्रोताओं, आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में बात यहीं तक। अगली बार किसी और शब्द शिल्पी की जिंदगी के डायरी के पन्ने पलटेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन वनीता जैन। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
1: और मैंने यानी खौसिया खान ने।
2: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
3: रेडियो आजाद हिंद सुनिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
4: स्वाधीनता संग्राम और देशभक्ति को पूर्णता समर्पित देश का पहला रेडियो चैनल आजाद
3: हिंद। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रणबांकुरों की वीर गाथा,
4: देशभक्ति के गीत सुनाता
3: रेडियो आजाद हिंद,
4: देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद सुनते रहिए।
5: जब भारत के पास थे पंखों वाले जहाज, क्या प्राचीन भारतीय जहाजों के पास हजारों साल पहले हाईटेक स्टेबलाइजर्स स्थिरक थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में प्लव नामक एक अद्भुत जहाज का वर्णन मिलता है। ये जहाज अपनी असाधारण मजबूती और तूफान झेलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, जिसे विशेष रूप से समुद्र के सबसे भयंकर बवंडर का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये है, ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि प्लव के किनारों पर पंख लगे हुए थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये पंख उड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि वास्तव में आधुनिक शिप स्टेबलाइजर्स का एक प्राचीन रूप थे। ये पंख ऊबड़ खाबड़ और अशांत समुद्र में जहाज को डगमगाने से बचाते थे, जिससे प्राचीन भारतीय व्यापारी पूर्वी और पश्चिमी महासागरों में उस उन्नत इंजीनियरिंग के साथ यात्रा कर पाते थे जो आधुनिक नौसैनिक तकनीक से हजारों साल पुरानी है।

0: स्वामी विवेकानंद मन ही मन विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन दिनों वे हैदराबाद में थे। वहां कई उल्लेखनीय घटनाएं घटी थी जिनकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। एक और अद्भुत घटना का विवरण प्रस्तुत है।
1: हैदराबाद में उन्हें एक योगी का दर्शन हुआ था जो अद्भुत यौगिक शक्ति से संपन्न थे। संसार का त्याग कर गहन योगाभ्यास करने के फलस्वरूप अनेक योगिक ज्ञान से संपन्न हो गए थे। स्वामी जी ने मित्रों के साथ योगी के निकट आकर देखा कि वे प्रबल ज्वर से शय्याग्रस्त थे। सन्यासी को आते देखकर श्रद्धावान योगी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बैठाया तथा सन्यासी के शारीरिक लक्षणों को देखकर योगी समझ गए कि वे उच्च आध्यात्मिक शक्ति के धनी हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि वे उनके मस्तक पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दें जिससे ज्वर उतर जाएगा। स्वामी जी का उस समय का मनोभाव चाहे जो भी रहा हो, किंतु मामला क्या है इसे देखने के लिए कौतूहलवश उन्होंने योगी के माथे पर हाथ फिरा दिया और योगी भी तत्काल उठ बैठे। तब स्वामी जी ने उन्हें कहा, आपको मुझे अपनी सिद्धियां दिखानी होंगी। योगी के सहमत होने पर उन्हीं की इच्छा के अनुसार स्वामी जी और उनके साथियों ने योगी के शरीर से वस्त्र आदि हटा दिए और अपने ही एक कंबल से उन्हें ढक दिया। योगी कमरे के कोने में बैठ गए और 25 जोड़ी आंखें उन पर टिक गई। योगी ने कहा,
2: तुम लोगों को जो भी चाहिए एक कागज पर लिख दो।
1: उस इलाके में उन दिनों जो फल नहीं फलते थे ऐसे सारे फलों के नाम उन लोगों ने कागज पर लिख डाले, यानी अंगूर संतरा आदि। लिखने के बाद कागज के वे टुकड़े योगी को दे दिए गए। तब वे कंबल के भीतर से हरेक की फरमाइश के मुताबिक फल बाहर निकालने लगे। इतने फल इकट्ठे हो गए कि वे योगी के शरीर के वजन से दुगने होंगे। उन फलों को उन्होंने लोगों को खाने को कहा, किंतु मेहमानों को खाने में संकोच करता देख उन्होंने स्वयं खाना शुरू किया। तब दूसरे लोगों ने उन फलों को मुख में डालकर देखा कि वे बड़े स्वादिष्ट और असली फल थे। अंत में उन्होंने गुलाब के फूलों को कंबल से बाहर निकाला। वे निर्मल और ताजे थे तथा उनकी पंखुड़ियों पर ओस के बिंदु पड़े थे। स्वामी जी ने पूछा,
3: ये सब कैसे संभव हुआ योगी जी?
2: सब हाथ की सफाई है।
1: कैलिफोर्निया में मन की शक्तियां विषय पर एक भाषण देते समय स्वामी जी ने इस घटना का वर्णन किया था। इसी भाषण में उन्होंने एक और मन शक्ति संपन्न व्यक्ति की चर्चा की थी जो दूसरों के मन की बात बता दिया करते थे। मन ही मन कोई प्रश्न सोचकर उनके निकट जाने पर वे बिना प्रश्न सुने ही उत्तर दे देते थे। उस व्यक्ति के निकट जाने पर उन्होंने कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर स्वामी जी के हाथों में थमा दिया तथा स्वामी जी से कहा कि वे उस मुड़े हुए कागज पर अपना हस्ताक्षर कर अपनी जेब में रख दें और खोलने को कहने पर यथा समय उसे खोले। वहां उपस्थित अन्य लोगों को भी उसने वैसा ही कागज दिया और उसी प्रकार रख लेने को कहा। अंत में उसने कहा, आप लोग किसी भी भाषा में सोचे। स्वामी जी ने संस्कृत में सोचा। वो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता था। सोचने के बाद उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, जेब से कागज निकाल कर देखिए। स्वामी जी ने देखा, उन्होंने अभी अभी जो बात सोची थी उस व्यक्ति ने उसे पहले से ही जानकर संस्कृत में लिख रखा था। दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ।

0: हैदराबाद पर्व समाप्त कर स्वामी जी मद्रास लौट गए। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, अमेरिका जाने का विचार त्यों त्यों बढ़ने लगा। उनकी आशा और उत्साह ने भक्तों को भी उत्साहित कर दिया एवं वे लोग फिर से धन संग्रह में जुट गए। मार्च और अप्रैल महीने में धन संग्रह करने के लिए भक्तगण ज्यादा परिश्रम करने लगे। यहाँ तक कि इसी उद्देश्य से कई लोग मैसूर, रामानंद और हैदराबाद भी गए।
1: धन संग्रह करने वालों में प्रमुख थे आला सिंगा पेरुमाल। उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगी। वे लोग साधारण जनता से ही पैसे मांग रहे थे, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया था कि
2: यदि माँ की इच्छा होगी कि मुझे जाना होगा तो मेरे लिए आवश्यक धन गरीबों से आवे, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता और दरिद्रों के लिए ही विदेश जा रहा हूँ।
1: किंतु यात्रा के बारे में वे उस समय तक अपने अंतर्द्वंद से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे, पर लोगों का उत्साह देखकर उन्हें लगा शायद यही मां की सम्मति है। इसी मानसिक दुविधा की स्थिति से वे गुजर रहे थे कि एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव समुद्र के ऊपर से पैदल उस पार चले जा रहे हैं और उन्हें इशारा कर उनके पीछे आने का संकेत दे रहे हैं। निद्रा भंग होने पर उनका मन एक निर्मल प्रशांति से भर उठा। उनके कानों में तब भी गूंज रहा था गुरुदेव के शब्द, जाओ। इस अलौकिक अनुभव को उन्होंने ईश्वर निर्देश के रूप में ग्रहण किया। उनके संदेह और अनिश्चितता दूर हो गई और फालतू के डर से भी उन्हें मुक्ति मिल गई।
0: यात्रा के आयोजन पूरे होते जा रहे थे, तभी अचानक खेत्री नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल मद्रास में उपस्थित हुए। उन्होंने संवाद दिया कि जब पिछली बार स्वामी जी खेत्री गए थे, उन्होंने महाराजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप महाराजा को पुत्र प्राप्ति हुई है। उसी आनंद उत्सव में उपस्थित होकर उन्हें शिशु को आशीर्वाद देना है, इसीलिए वे स्वामी जी को लिवाने आए हैं।
2: देखो जगमोहन, एक महीने बाद 31 मई को मुझे अमेरिका जाना है। इस वक्त मैं खेतड़ी कैसे जा सकता हूँ?
3: स्वामी जी, कम से कम एक दिन के लिए भी आपको खेतड़ी तो जरूर चलना होगा, अन्यथा राजा जी निराश और दुखी हो जाएंगे। और फिर अमेरिका जाने के लिए आप चिंता ना करिए, महाराजा स्वयं सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु आपको चलना ही होगा।
0: हार मानकर स्वामी जी ने सहमति दे दी और जगमोहन के साथ रवाना हो गए। वे दोनों रेवाड़ी के रास्ते 21 अप्रैल को खेतड़ी पहुंचे। वे वहां 9 मई तक थे और 10 मई को जगमोहन जी के साथ बंबई चले गए।
1: खेतड़ी में उत्सव का माहौल था। राजकुमार जयसिंह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तालाब के किनारे नाच गाना नौका विहार चल रहा था। राजा ने स्वामी को प्रणाम कर स्वागत किया। राजा के साथ स्वामी जी हाथी पर सवार होकर महल में पहुंचे और भोज में सम्मिलित हुए। बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उन्हें ड्योढ़िया रनिवास में ले जाया गया, जहां उन्होंने राजकुमार को देखकर आशीर्वाद दिया।
0: खेतड़ी में एक मर्मस्पर्शी घटना घटी थी। एक शाम एक नर्तकी गाने गाकर राजा का मनोविनोद कर रही थी। स्वामी जी अपने कमरे में थे। राजा ने उन्हें बुलवाया, पर वे ये कहकर नहीं गए कि सन्यासियों को इस प्रकार की सभा में जाना उचित नहीं। ये सुनकर गायिका अत्यंत दुखी हो गई और अपना दर्द व्यक्त करने के लिए उसने गाना शुरू किया। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अब मोहि पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवई, कंचन करत खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। गाने को स्वामी जी ने अपने कमरे में बैठकर सुना। उन्हें लगा जैसे गायिका गाने के द्वारा उन्हें याद दिला रही है कि संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। सभी वस्तुओं के पीछे एक अभिन्न ब्रह्म सत्ता विराजित है, यहाँ तक कि एक घृणित गणिका में भी वे ही विद्यमान है। स्वामी जी जैसे होश में आए और तुरंत उठकर सभा में जा बैठे। इस घटना का उल्लेख कर उन्होंने स्वयं कहा था,
2: गीत सुनकर मेरे मन में आया कि क्या यही मेरा सन्यास है। मैं सन्यासी हूँ, तथापि मुझ में और इस नारी के बीच मेरा भेद ज्ञान बचा रह गया है। उस घटना से मेरी आंखें खुल गईं। समस्त वस्तुएं उस एक ही सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। ये जानकर मैं फिर किसी की निंदा करने से तो रहा।
1: दस मई को स्वामी जी राजकीय रथ पर सवार होकर खेतड़ी से रवाना हुए। जगमोहन जी साथ थे। दोनों आबू रोड होकर बंबई जा रहे थे। स्वामी जी का मन तब भी उदास था। उनके मन में उस गायिका का गीत गूंज रहा था। आबू रोड में उनकी मुलाकात स्वामी तुरियानंद से हुई। स्वामी जी ने उनको सारी घटना सुनाई। तुरियानंद ने अपने संस्मरण में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है।
4: मैंने स्वामी जी से मिलने आकर देखा कि वे इतने गंभीर होकर बरामदे में एकाकी टहल रहे हैं कि मेरे आगमन का उन्हें भान ही नहीं हुआ। उनके चिंतन में कहीं बाधा न पड़े इस भय से मैं चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन गुनगुनाने लगे। फिर ठहर कर उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रेलिंग का सहारा लेकर झुक गए। फिर विषाद भरे स्वरों में उन्होंने गाया,
2: मेरू

0: इस वेदनापूर्ण गीत से मानो आकाश पाताल कांप रहे थे। उनकी स्वर लहरी मेरे मन में तीर की भांति चुभ गई और मेरी आंखें भी सजल हो उठी थी। स्वामी जी के दुख का कारण नहीं जान पाने से मैं बड़ा व्याकुल हो रहा था, किंतु थोड़ी देर बाद मैं समझ गया कि संसार में दुखियों और पीड़ितों के दुख को महसूस करने के कारण ही उनकी ये तीव्र व्यथा है।
1: आबू रोड स्टेशन से रेल पर सवार होते समय एक अप्रिय घटना घटी। गाड़ी में एक रेल कर्मचारी स्वामी जी से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक अंग्रेज टिकट परीक्षक आए और उन सज्जन को उतर जाने को कहा, पर वे रेल के कर्मचारी थे अतः बहस करने लगे। स्वामी जी ने जब बहस बंद कराने की कोशिश की तो वो अंग्रेज साहब चिढ़ गए और कठोर भाव से स्वामी जी को कहा,
2: ए, तुम क्यों बात करता आए?
1: उन्होंने स्वामी जी को साधारण साधु समझकर उन्हें डांट कर चुप कराना चाहा, परंतु स्वामी जी अंग्रेजी में गरज उठे,
3: तुम कैसे कह रहे हो? उच्च श्रेणी के यात्री से कैसे बोलना चाहिए नहीं जानते? आप नहीं कह सकते?
2: सॉरी, गलती हो गई। मैं इंदे अच्छी तरह नहीं जानता। मैं तो सिर्फ उसका आदमी।
3: तुम सिर्फ हिंदी भाषा नहीं जानते ऐसा नहीं, तुम तो अपनी भाषा भी नहीं जानते। ये आदमी क्या होता है, सज्जन नहीं कह सकते? अपना नाम और नंबर बताओ, मैं शिकायत करूंगा।
1: अंग्रेज साहब माहौल खराब होते देख चुपचाप उतर गए। स्वामी जी बोले,
3: इन यूरोपियनों के साथ व्यवहार करते समय आत्म मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारे सर पर सवार हो जाते हैं, अपमान करते हैं। शिक्षा और सभ्यता में हम किसी भी जाति से हीन नहीं हैं, पर हम अपने को हीन मानते हैं। तभी तो एक साधारण सा विदेशी हमें डंडा और चांटा मारता है और हम उसे चुपचाप सह लेते हैं।
4: आबू रोड से स्वामी जी और मुंशी जगमोहन लाल बंबई पहुंचे। स्टेशन पर आला सिंगा उपस्थित थे। वे स्वामी जी को जहाज पर चढ़ा देने के लिए मद्रास से आए थे। खेतड़ी के राजा ने भी मुंशी जी को स्वामी जी के लिए हर तरह की व्यवस्था कर देने को कह दिया था, ताकि वे राजगुरु की मर्यादा के साथ यात्रा कर सके। अतएव स्वामी जी की आपत्ति के बावजूद मुंशी जी ने स्वामी जी के लिए रेशमी कपड़े की पोशाक, अलखल्ला और पगड़ी बनवा दी, साथ ही कुछ अर्थराशि भी दी तथा पेनिनसुलर एंड ओरिएंट कंपनी की एक प्रथम श्रेणी की टिकट खरीद दी और उस कंपनी के पेनिनसुलर नामक जहाज पर बिठा दिया।
1: वो 1893 ईस्वी की 31 मई का दिन था। स्वामी जी उस समय आशा और भयपूर्ण हृदय से जहाज के डेक पर खड़े होकर मित्रों से विदा ले रहे थे। आशा ये कि इतने दिनों बाद उनका स्वप्न वास्तविकता में बदलने जा रहा है। वे सचमुच भारत के संदेश का प्रचार कर स्वदेश और विदेश का कल्याण साधन करेंगे, और भय ये कि अनजाने देश में अपरिचित परिवेश के बीच पता नहीं उन्हें कितनी आपदाओं विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। एक लंबी अवधि के लिए इतने बंधु बांधवों को छोड़कर जाने में दुख भी कम नहीं होता। मित्रों का हृदय भी उस समय सुख दुख से फूल रहा था। उन लोगों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप आज स्वामी जी सचमुच देश का मुख उज्जवल करने विदेश चले। रेशम का अलखल्ला और पगड़ी धारण किए हुए स्वामी जी किसी राजा या महाराजा की भांति प्रतीत हो रहे थे, तथा लग रहा था कि ऐसे निर्भीक हृदय वीर अवश्य ही विश्व विजयी होंगे। लोग ये भी जानते थे कि स्वामी जी का बाहरी स्वरूप चाहे जैसा भी क्यों न हो, वे एक चिर सन्यासी, चिर वैरागी हैं। पश्चिमी जगत के ऐश्वर्य आदि के बीच भी उनके वचन और जीवन से भारत का आध्यात्मिक संदेश ही ध्वनित और घोषित होगा। तथापि ठीक विदा के क्षण सबकी आंखें नम हो गईं। अब दीर्घ काल तक उनका दर्शन जो न हो सकेगा। भक्तों ने अंत में समुद्र के तट पर साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्हें विदा दी। स्वामी जी भी रेलिंग के किनारे खड़े होकर जब तक देखा जा सकता था तब तक उन लोगों की ओर एकटक देखते रहे। जहाज धीरे धीरे दूर समुद्र में तैरने लगा। मित्रगण धीरे धीरे आंखों से ओझल होने लगे। परिचित लोगों में से साथ में रह गए एकमात्र बैरिस्टर छबिल दास, जिनके घर में स्वामी जी पहले एक बार ठहरे थे। छबिलदास अपने निजी काम से जा रहे थे, वो रास्ते में उतर गए।
4: विदेश यात्रा से पहले स्वामी जी के मन में अपनी माँ की और परिवार की चिंता थी, उनका गुजारा कैसे होगा। अपनी ये चिंता उन्होंने खेतड़ी महाराज को कही भी थी। खेतड़ी नरेश ने उनकी चिंता दूर करने की जिम्मेदारी भी ली थी। वे आजीवन स्वामी जी की माँ को प्रतिमाह 100 रुपये भेजते थे। राजा के देहांत के बाद भी वे रुपये भेजे जाते थे।
1: कुछ लोगों की धारणा है कि उनके अमेरिका जाने का खर्चा खेतड़ी के महाराजा ने दिया था, पर यह बात नहीं थी। उन्होंने केवल खेतड़ी से बंबई जाने का रेल भाड़ा दिया था। अमेरिका जाने का खर्च मद्रास के लोगों ने चंदा करके इकट्ठा किया था, वो लगभग 4000 रुपये था। कुछ लोगों ने अपनी जायदाद बेचकर रुपए दिए थे। रामनाथ के राजा ने भी मदद की थी। खेतड़ी जाने से पहले ही जहाज में उनकी बर्थ रिजर्व हो चुकी थी। धन एकत्र करने के पहले तो स्वामी जी ने यह भी कहा था कि वे अफगानिस्तान के रास्ते पैदल अमेरिका जाने को तैयार हैं।
4: आपको याद होगा कि स्वामी जी का नाम विवेकानंद खेतड़ी के महाराज ने रखा था। इस नाम से उनके सहयोगी रामकृष्णानंद और स्वामी शिवानंद भी परिचित थे। स्वामी जी के मद्रास के मित्रगण भी जानते थे। यहाँ तक कि कलकत्ते में भी श्री शारदा माँ को और उनके गुरु भाइयों को ये नाम पता था। हाँ, बम्बई में कुछ लोग जरूर उन्हें सचिदानंद के नाम से जानते थे।
1: स्वामी जी के विदेश यात्रा के संबंध में उनके एक शिष्य ने उनकी यात्रा की तैयारी के बारे में लिखा है।
5: परिव्राजक के रूप में उन्होंने एक एक कर बौद्ध और जैन धर्म का सार एवं रामानंद और दयानंद के विचारों के गूढ़ अर्थ को समझ लिया था। उन्होंने निश्चल दास और तुलसीदास के ग्रंथों का पूरे मनोयोग से अध्ययन किया था। महाराष्ट्र के महापुरुषों और दक्षिण भारत के अलवारों एवं नायनारों के संबंध में उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। परमहंस, परिव्राजक से लेकर लाल गुरु के शिष्यों तक सबकी आशा, आकांक्षा और आदर्श से तो वे परिचित थे ही, साथ ही उन लोगों के संप्रदायगत इतिहास आदि भी जानते थे। उनकी पारदर्शी दृष्टि में मुगलों की प्रधानता भारत के इतिहास में एक अस्थाई छुटपुट घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विचारों की उदारता, एकता और साहसिकता की दृष्टि से अकबर हिंदू थे। उनकी दृष्टि में ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना शकुंतला काव्य के अतिरिक्त क्या और कुछ था। उनके कंठ से मीराबाई और तानसेन के गीतों के बीच बीच में गुरु नानक के भजन भी गूंजते सुनाई पड़ते थे। चित्तौर, राणा प्रताप, शिव और उमा, राधा और कृष्ण, सीता और राम तथा बुद्ध की कथा का वर्णन करने के साथ साथ पृथ्वीराज और दिल्ली का इतिहास भी उनके भाषणों में मानो स्वतः ही आ जाता था।
4: स्वामी जी की तैयारी के बारे में एक दूसरे शिष्य लिखते हैं कि भारत का नाम सुनते ही जैसे उनका हृदय और आत्मा एक रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति से उछल पड़ती थी। जीवन के गुप्त स्रोत का उन्हें ज्ञान था। उनके हृदय में एक ऐसी आग जलती थी जिसने उनके मौलिक तत्वों की अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वहाँ अपना स्थान बना लिया था। दूसरे लोग जहाँ अलग अलग घटनाओं को देखते, वहाँ भी उनका विराट मन संपर्क का सूत्र ढूंढ ही लेता था। उनकी बुद्धि प्रत्येक वस्तु के अंदर प्रवेश कर घटनाओं को अपने सहज क्रम में सजा देती। उनका मन सार्वभौम था, फिर भी पूरी तरह भारतीय संस्कृति से पूर्ण था, जो हर तरह से वैदिक, वैदांतिक, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, यहाँ तक कि इस्लाम की ओर से भी धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने को उद्यत थे।
1: अंत में भगिनी निवेदिता के कुछ वाक्य उद्धृत कर हम इस प्रसंग की समाप्ति करेंगे।
6: सिर्फ धर्म के दूत के रूप में उनकी पहचान कुछ होती तो स्वामी विवेकानंद जो कुछ थे उससे कम महान सिद्ध हुए होते। गीत के कृष्ण की भांति, बुद्ध की भांति, शंकराचार्य की भांति, भारतीय चिंतन के अन्य महान विचारकों की भांति उनके वाक्य भी वेदों और उपनिषदों के उद्धरणों से परिपूर्ण हैं। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस में स्वामी विवेकानंद को प्राचीन धर्म ग्रंथों का वो प्रमाण प्राप्त हुआ जिसकी मांग उनका हृदय और बुद्धि करती रही थी। उनके मन में वो सत्य उपलब्ध था जिसका टूटा फूटा वर्णन ही धर्म ग्रंथ कर पाते हैं। अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस में विवेकानंद को जीवन की कुंजी मिल गई थी, परंतु इसके बाद भी कन्याकुमारी से हिमालय तक समग्र भारत का भ्रमण करना, साधु संत विद्वानों और जनसाधारण से समभाव से मिलना, सबसे शिक्षा ग्रहण करना और सबको शिक्षा देना और भारत के अतीत एवं वर्तमान का यथार्थ परिचय प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक था। इस प्रकार विवेकानंद की रचनाओं का संगीत, शास्त्र, गुरु और मातृभूमि इन तीन स्वर लहरियों से निर्मित हुआ है। उनके पास देने योग्य यही निधि है। इन्हीं से उनको वे तत्व मिले जिनसे उन्होंने विश्व के विकार को दूर करने वाले अध्यात्म की विश्लेषणी

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, दिन के 12 बजने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को आप यूं ही सुन सकते हैं रात्रि के 10 बजे तक निरंतर मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी दोपहर कालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम तराने आजादी।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं लोक गायिका मालिनी अवस्थी की गायी कुछ रचनाएं।
1: आज कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो छटा है दिखा सकें, तो कुछ मौसम की चीजें होंगी जो आप सुनना भी चाहते हैं। और कार्यक्रम का प्रारंभ राग मिश्र तिलक कामोद में एक ठुमरी से कर रही हूं।

उत्तर प्रदेश महोत्सव हम सब मना रहे हैं। सच जानिए मैं बड़े पशुपेश में थी, क्या सुनाऊं, क्योंकि ये लग रहा था क्या छोड़ूं, जो गाती हूँ सारा उत्तर प्रदेश का है और ऐसा ऐसी धरोहर है, ऐसा ऐसा खजाना है। आप लोग सब विद्वान और एक से एक अच्छे लोगों को सुना आपने, इसलिए जहां पर जिस मंच पे मेरी गुरु गा चुकी हूँ वहां पे ठुमरी और दादरा के बारे में बताने की मेरी ना हैसियत है ना मेरी औकात। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ये गुइया जो है ये खास उत्तर प्रदेशी है। गुइया यानी सहेली। आपको याद हो हम लोग के बचपन में कहावत भी चलती थी, झगड़ा हो जाए दो सहेलियों में तो कहते थे गुइया खुट्टी। अभी भी कभी कभी उसकी मिसाल दी जाती है कि अच्छा गुइया खुट्टी हो गई क्या। गुइया यानी सहेली, नायिका,

छांव में कौन खड़ा रहता है? कन्हैया कृष्ण खड़े हुए हैं। अब जब खड़े रहे होंगे फिर ऋतुएं भी आई होंगी, मौसम

हम सब जानते हैं कि भाषा का, संस्कृति का, साहित्य का, संगीत का, सबका मूल लोक में है। हमारी दादरा को भी लें तो बंदिशें लोक भाषा में हैं, कभी ब्रज में है, कभी बनारस पूर्वी में है। ऐसे ही आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज सुना रही हूँ, पुरानी बंदिश बनारस के बड़े विद्वान श्रद्धेय रामू जी की बंदिश है और अप्पा जी ने उनसे सुनी, मुझे सिखाई। आप लोगों की नजर कर रही क्योंकि उस बंदिश कैसी है वो आप जब शुरू होगी तो आप समझ जाएंगे।

ये साहित्य रतियों में बिंदिया लगाने मिटाने में कई सावन बरस गए साजना। विरह पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी हकीकत रही जो आज भी सच्चाई है। कमाई के लिए परदेश जाना आज से 500 साल पहले भी सच्चाई थी तो आज भी है, और उस विरह ने ऐसे ऐसे अनमोल साहित्य को जन्म दिया है। एक से एक रचनाएं और लोकगीतों में, दादरा में, ठुमरी में आपको एक कजरी सुना रही हूँ, बनारसी कजरी। कौन

संकोच संबंधों में कैसा था, अपने पति के बारे में कैसे अदब से पूछ रही है।

कितना सुंदर प्रयोग है। पत्नी है, अब पति पत्नी के संबंध में इशारे में आप देखें उसी रंग की उपमा से कैसी गंभीर बात है।

चला गया भैया, सारा चला गया। देखिए ये जनता की आवाज होती है, असली आवाज आई, आर्टिफिशियल साउंड गई।

0: देखिए कैसे कैसे हम लोगों के यहाँ पर भाव भीने शिशु के प्रसव में गानों में कैसे कैसे जोड़ा गया रिश्तों को, कैसे कैसे सीखे भी दी बुजुर्गों ने।
1: मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ रही

मचल रही आज महलन में। दाई राम का जन्म हुआ लेकिन अयोध्या में दाई रूठ गई, आज मचल गई है। और रानियां पीछे पीछे दौड़ रही मनाने को। कौशल्या आई,

राजा दशरथ कोई खबर मिली? महल में अंतःपुर में राम का जन्म होने वाला है और तीन तीन रानियां मिलकर के एक दाई को मना नहीं पा रही। ये दाई कैसी दाई, इतनी मंगल बेला में रूठ गई। धीरे धीरे दशरथ समझ जाते हैं बात। दशरथ ये जान जाते हैं, हो ना हो यह दाई धन बल से मानने वाली नहीं, धन की लोभी नहीं। और दशरथ जाते हैं, सोचिए दशरथ जाते हैं अयोध्या नरेश एक साधारण सी दाई के पास जाते हैं और कहते हैं,

सोचिए ये गीत हम लोगों के पूर्वजों ने हमें क्यों सिखाए। जिस जमाने में न लेखनी न वर्तनी न रेडियो न टेप रिकॉर्डर, कुछ ही गाने नई पीढ़ी को क्यों सौंपे सिखाने के लिए। पुत्र का जन्म हो पुत्री का जन्म हो, उत्सव मनाओ, लेकिन याद रखना कैसे मनाना है। वो राजा थे अपना मान छोड़ के दाई को मनाने आए हैं, क्योंकि आज दाई का दिन है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये है लोकगीतों की परंपरा, समवेशी, सभी का सम्मान। लेकिन लोकगीत वो लोकगीत ही नहीं, एज दे से इन इंग्लिश द किंग कैन नेवर हैव द लास्ट वर्ड। लोकगीतों में प्रजा का अंतिम वाक्य होता है। दाई को कुछ लेने थोड़ी आई थी,

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बूढ़ी काकी।

बुढ़ापा बौधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती, तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे, अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी ही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं, यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती। परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो उस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, ये उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो ना सकी। आह, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहां कि भरपूर पूड़ियां मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक सी उठने लगी,
परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंधि रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी तो नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं, आज उनका भी पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकालकर थाल से रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। अरे जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा, बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवाकर दम लेगी, अरे इतना ठूंसती है ना जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे।

नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जीवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सब के सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो चार मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुगंध बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जीवनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गईं, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, अवश्य लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हूं कि आप ही आएगी, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा ये विचार। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, फिर चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो कुणू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता, कोई दही खाकर जीव चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। कितने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची, कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे बुढ़िया कौन है, ये कहां से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशारूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले और अन्य लोग भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी, अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भूली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ईंट कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे, रूपा
आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा, लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं, तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हा, मेरी किसी ने सुधी ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं कि कुछ और? मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी तो अब क्या देंगे? ये विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, है मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गईं। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का धीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलूं जहां मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन शुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूं। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुलीं। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी
दूसरों की जूठी पत्तल टटोले इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी ये दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन खाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वो परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, आज मुझसे बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।

0: तो सुनो कहानी में अभी आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बूढ़ी काकी। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में आपको फिर ऐसी ही कोई कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए अपने किस्सा गो संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
2: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
4: बिल्कुल,
2: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
4: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
4: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
2: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
4: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
2: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
4: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
2: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेहनी, जित खींचे तित जाऊं। दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
4: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
2: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
4: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
2: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
4: बिल्कुल।
2: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
4: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
2: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद। देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
2: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था राम बोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
4: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ राम बोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
2: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
4: बिल्कुल।
2: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
4: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
2: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
4: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
2: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
4: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
2: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
2: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
4: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
2: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
4: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
2: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
4: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
4: बिल्कुल,
2: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
4: श्रोताओं, आप

0: ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
1: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने, अवधी व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधी का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
0: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
1: बिल्कुल,
0: जबकि अवधी में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
1: कौन सी कविता?
0: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
1: वाह,
0: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
1: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
0: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
1: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदू का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
0: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
1: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव, हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
0: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं, उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
1: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है, लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे। सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
0: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
1: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
0: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
1: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
0: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
1: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
0: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
1: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढकर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
0: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
0: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
0: बिल्कुल ठीक
1: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
1: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
0: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
0: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
1: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
0: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
1: जी।
0: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
1: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
0: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप गायन और वादन का आनंद लेते हैं।

आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपन सामंता का गायन, जिसमें वो पेश कर रही हैं ठुमरी, चैती, झूला। बिना देर किए सुनते हैं गायन रूपन सामंता का।

चैती गाने जा रही हूँ। चैती चैत्र महीने में ज़्यादातर गाया जाता है। चैती के जो भाव हैं वो विरह होती है, नायिका नायक के विरह में या उसको याद करके जो गाते हैं चैती। चैती में ज़रूर रामा शब्द होता ही है, क्योंकि चैत्र महीने में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए चैती गायन में जरूर रामा शब्द होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज चैती। तो चैती मैं गाती हूँ।

गुरु माँ की कंपोजिशन है, मिश्र चारों किशी में है। तड़प जिया जाए, जब कृष्ण जी वृंदावन चढ़ के मथुरा चले गए थे तो वो सीन इसमें दर्शाया गया है, कैसे उनकी रथ धीरे धीरे आंखों से उजाल हो जाती है राधा जी की, वो थोड़ी सी कल्पना इसमें है।

0: कार्यक्रम भारत भारती में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद संगीत का यह सफर जारी रहेगा।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बोली गारियों आंखी न भरत गुलाल रसिया नामा।

एक कजरी मिश्र किले में झिरी झिरी बरस से सावन रस बूंदिया अब आई गए लेना। शब्द इसके कजरी रेनी सीजन में गाया जाता है, झूला भी रेनी सीजन में गाया जाता है। झूला में कृष्ण जी की हिंडोरा की वर्णना होती है, इसमें सिर्फ सावन की वर्णना होती है जो कजरी के रूप में हम लोग

0: कार्यक्रम भारत भारती में आप सुन रहे थे रूपन सामंता का गायन। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे और आपको लिए चलेंगे संगीत की दुनिया में। नमस्कार,
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 101 से वाचन। ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: प्रमंदिने पितुमदर्चता वचो यह कृष्ण गर्भा निरहन्रि जिश्वना अवस्यवो वृषणम वज्रदक्षिणम मरुत्वंतम सख्याय हवामहे। हे ऋत्विगण, श्रेष्ठ इंद्रदेव की हविष्यान्न देकर अर्चना करो। ऋत्विज की सहायता से कृष्णासुर की गर्भिणी स्त्रियों के साथ उसका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले मरुद्गणों की सेना के साथ विद्यमान रहने वाले शक्ति संपन्न उन इंद्रदेव का अपने संरक्षण की कामना करने वाले हम यजमान मित्र भाव से आवाहन करते हैं। यो व्यंसम जाहृषाणेन मन्युना यह शंबरम यो अहन पिप्रु मव्रतम इंद्रो यह शुष्ण मशुसम न्यावृणं मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। जिन इंद्रदेव ने सर्वप्रथम वृत्रासुर के कंधों को काटा, पश्चात धर्म नियमों से विहीन पिप्रु का हनन किया, प्रजा के शोषक शंबर और शुष्ण दोनों दैत्यों का वध किया, इस प्रकार सभी दैत्यों के नाशक वे इंद्रदेव हैं। मित्रता के लिए मरुत के सहयोगी ऐसे इंद्रदेव का हम आवाहन करते हैं। यस्य द्यावा पृथ्वी पौंस्यम महद्यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः यस्येन्द्रियस्य सिंधवः संचति व्रतम मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। जिनकी सामर्थ्य शक्ति से स्वर्गलोक भूलोक वरुण सूर्य और सरिताएं अपने अपने व्रत नियमों में आरूढ़ हैं, मरुतों से युक्त ऐसे इंद्रदेव को मैत्री भाव की दृढ़ता हेतु आवाहित करते हैं। यो अश्वानाम यो गवाम गोपतिर्वशी य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः वीडोश्चिदिंद्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। जो इंद्रदेव गौवों और अश्वों के पालक स्वामी हैं, सभी को अपने नियंत्रण में रखकर प्रत्येक कार्य कर्तव्य निर्वाह में सुस्थिर रहकर प्रशंसित होते हैं। जो इंद्रदेव विधि पूर्वक सोमयुक्त यज्ञीय कर्म से रहित शत्रुओं के नाशक हैं, ऐसे मरुत्युक्त इंद्रदेव को मित्रता के लिए आवाहित करते हैं। यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत इंद्रो यो दस्यून रधराम अवातिरन मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। विश्वाधिपति इंद्रदेव जो संपूर्ण गतिमान प्राणधारियों के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्रह्म परायण ज्ञानवानों को सर्वप्रथम गौएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने अपने नीचे दुष्टों का दलन किया, ऐसे मरुद्युक्त इंद्रदेव की मैत्री की स्थिरता हेतु हम उनका आवाहन करते हैं। यह शूरेभिर हव्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्भिर हूयते यश्च जिग्युभिः इंद्रम यम विश्वा भुवनाभि संदधुर मरुत्वंतम सख्याय हवामहे। जो इंद्रदेव शूरवीरों और भीरु मानवों दोनों के द्वारा सहयोग हेतु आवाहित किए जाते हैं, जो संग्राम विजेताओं और पलायनकर्ताओं द्वारा भी बुलाए जाते हैं, तथा संपूर्ण लोक जिनकी पराक्रम शक्ति के आश्रित हैं, ऐसे मरुतों से युक्त इंद्रदेव को हम मैत्री के लिए आमंत्रित करते हैं। रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथुज्रयः इंद्रम मनीषा अभ्यर्चति श्रुतम मरुत्वंतम सख्याय हवा महे। जो विवेक संपन्न बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रदेव रुद्र पुत्र मरुतों की दिशा का अनुगमन करते हैं, मरुतों और देवी उषा के सामंजस्य से अपने विस्तृत प्रसिद्ध तेज को और अधिक विस्तारित करते हैं, तथा जिन प्रख्यात इंद्रदेव की अर्चना मनुष्यों की मेधा संपन्न प्रखर वाणी करती है, ऐसे मरुतों से संयुक्त इंद्रदेव को मित्रता वृद्धि के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्वा मरुत्वः परमे सधस्थे यद्वा वमे व्रजने मादयासे अत आ याह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्चक्रमा सत्यराधः। हे मरुतों से युक्त इंद्रदेव, आप सर्वश्रेष्ठ दिव्यलोक अथवा अधर स्थित अंतरिक्ष लोक में जहां कहीं भी आनंद युक्त हों, हमारे इस यज्ञ स्थल पर अति शीघ्र पधारें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपकी कृपा के आकांक्षी हम आपके निमित्त यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हैं। त्वायेन्द्र सोमम सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चक्रमा ब्रह्मवाहः अधा नियुत्वः सगुणो मरुद्भिरस्मिन्यज्ञे बरिहिषि मादयस्व। दक्षता संपन्न हे श्रेष्ठ इंद्रदेव, आपके निमित्त ही हम सोम निष्पादित करते हैं। हे स्तोत्रों द्वारा प्राप्त होने योग्य इंद्रदेव, आपके लिए ही हम हवि प्रदान करते हैं। हे अश्वों से युक्त इंद्रदेव, मरुद्गणों सहित इस यज्ञ में आकर विराजमान हो और सोमपान से आनंदित हो। मादयस्व हरिभिर ये त इंद्र वीश्यस्य शिप्रे विसृजस्व धेने आत्वा सुशिप्र हरयो वहन्तूषन व्यानि प्रतिनो युषस्व। हे इंद्रदेव, अश्वों के साथ प्रसन्नता को प्राप्त करें, अपने जबड़ों को खोलकर सुखद ध्वनि करें। हे श्रेष्ठ शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्रदेव, रथ खींचने वाले घोड़े आपको हमारे समीप ले आएं। अभीष्ट पूरक इंद्रदेव, आप हमारी आहुतियों को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। मरुत स्तोत्रस्य व्रजनस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। मरुद्गणों की स्तुतियों से प्रशंसित शत्रु संहारक इंद्रदेव द्वारा संरक्षित हमें उनके सहयोग से अन्न की प्राप्ति हो। अतएव मित्र वरुण आदिति सिंधु पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें सहयोग प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 101 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व पर जो कूटनीति की तीक्ष्णता, विचारों की निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति की अटल ज्योति का पर्याय थे। वो लंदन की गलियों में भारत की आजादी की मशाल लिए खड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की आवाज बनकर वो गूंजे। उनकी बातों में अद्भुत तेज, तर्क और आत्मविश्वास था जो हर चुनौती को चुनौती दे सकता था। भारत की गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले वो महानायक थे वीके कृष्ण मेनन। वो एक राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा सन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। वीके कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई सन 1896 को केरल के मालाबार तट पर स्थित पनियंकरा कालीकट में हुआ था, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम वेंगालिल कृष्णन कृष्ण मेनन था। उनके पिता का नाम कोमाथु कृष्ण कुरुप था, जो कदाथनाडु के राजा के पुत्र थे। इस तरह वो एक राज परिवार से संबद्ध थे। उनकी माताजी भी त्रावणकोर के पूर्व दीवान रमन मेनन की पौत्री थीं। वीके कृष्ण मेनन के पिता ने वकालत का पेशा अपनाया था। वो एक अत्यंत संपन्न तथा प्रभावशाली वकील थे। इस तरह ये एक राजसी वंश परंपरा से संबद्ध एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार था। वीके कृष्ण मेनन की आरंभिक शिक्षा थालासेरी में हुई तथा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। बचपन से वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और उनका विद्रोही स्वभाव किशोरावस्था से ही मुखर होने लगा था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। वो डॉक्टर एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सानिध्य में आए। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया। एनी बेसेंट ने उनकी वाक्पटुता और तीक्ष्ण बुद्धि को पहचाना और उन्हें ब्रदर ऑफ सर्विस समूह से जोड़ लिया। यहीं ब्रिटिश राज के प्रति उनके मन में एक आक्रोश ने जन्म लिया। कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी पोशाक के स्थान पर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अस्वीकार्यता और भारत माता के प्रति गहरे प्रेम का स्वर बुलंद किया।

रेनी बेसेंट वीके कृष्ण मेनन की प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थीं। यही कारण है कि उन्होंने सन 1924 में वीके कृष्ण मेनन को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजने का प्रबंध किया। वीके कृष्ण मेनन सन 1924 में इंग्लैंड पहुंचे और लगभग 27 वर्षों तक वो वहीं रहे। लंदन में उनके प्रवास ने उन्हें एक छात्र से एक वैश्विक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था। वहां वो हेराल्ड लास्की के प्रिय शिष्य बन गए। लास्की ने उन्हें अपना अब तक का सबसे मेधावी छात्र कहा था। लास्की के विचारों ने वीके कृष्ण मेनन के दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में उनके भीतर स्थायी रूप से रहा। यहां उन्होंने एमएससी और एमए के साथ ही कानून की शिक्षा भी पूर्ण की तथा एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की। वहां रहते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंडिया लीग की स्थापना की। उन्होंने मूल रूप से डॉ एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग को ही पुनर्गठित किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में रहते हुए भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए अभियान चलाना था। ये संगठन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीयों को एक मंच पर लाता था। इस तरह ये लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की मांग का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया। इंडिया लीग के माध्यम से वी के कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश जनता को भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, जैसे लाठीचार्ज, बिना मुकदमा चलाए कारावास और संपत्ति की जब्ती के बारे में जागरूक किया। इस तरह इंडिया लीग ने ब्रिटिश लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियनों और बुद्धिजीवियों के बीच भारत की पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। सन 1938 में उन्होंने लंदन में एक विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें अफ्रीका और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने प्रकाशन की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एलन लेन के साथ मिलकर पेंगुइन बुक्स और फिर बाद में पेलिकन बुक्स की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकाशन गृह के माध्यम से उन्होंने आम जनता के लिए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक सामग्री को सस्ते दामों में सुलभ कराया। सन 1934 में लेबर पार्टी के टिकट पर वो सेंट पैनक्रास से बरो काउंसलर नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने पुस्तकालयों के विस्तार और गरीबों के लिए कानूनी सहायता की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। उनके योगदान के लिए सेंट पैनक्रॉस ने उन्हें फ्रीडम ऑफ द बरो से सम्मानित किया। स्थानीय परिषद द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वी के कृष्ण मेनन से पहले ये सम्मान केवल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। सन 1935 में वी के कृष्ण मेनन की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी और भारत की आजादी के बाद भी ये संबंध अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बना रहा, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण जुगलबंदियों में से एक माना जाता है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को पश्चिम में प्रकाशित और लोकप्रिय करने में भी वी के कृष्ण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लेबर पार्टी ने भारत की भागीदारी पर अपना रुख बदला, तब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। भारत उनकी आत्मा में बसता था और राष्ट्र सेवा को वो सर्वोच्च मानते थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी के बाद वी के कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के पहले उच्चायुक्त नियुक्त हुए और भारत माता की सेवा को वो समर्पित हुए।

वी के कृष्ण मेनन एक स्वतंत्र सोच और अपनी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जब वो पदस्थ थे, तब वो उच्चायुक्त निवास में न रहकर उच्चायोग के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। सन 1952 में उच्चायुक्त का पद छोड़ने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभाला। यहां उन्होंने अपनी कूटनीतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता से विश्व को चकित कर दिया। इस समय तक दुनिया उन्हें फॉर्मूला मेनन कहने लगी थी। विश्व समुदाय का मानना था कि किसी भी देश में अगर कोई समस्या है तो मेनन कोई न कोई सार्थक समाधान निकाल सकने में अवश्य सक्षम होंगे। सन 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। ये एक ऐतिहासिक भाषण था। पाकिस्तान के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने लगभग 8 घंटे तक भाषण दिया, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। इस तरह उन्होंने कश्मीर मुद्दे की एक सही तस्वीर दुनिया के समक्ष रखी। इसके बाद उन्हें भारत में कश्मीर का नायक कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने केवल भारतीय हितों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कोरियाई युद्ध हो, जिनेवा सम्मेलन हो, स्वेज संकट हो या हंगरी संकट, सभी जगह उन्होंने समाधान के सार्थक रास्ते सुझाए। सन 1957 में उत्तरी मुंबई से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वी के कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री नियुक्त हुए। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। यही कारण है कि उन्होंने भारत में रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए। उन्होंने डीआरडीओ को पुनर्गठित और मजबूत किया ताकि स्वदेशी तकनीक विकसित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण भी किया। सेना के लिए वाहनों और टैंक के स्वदेशी उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैन्य जीवन के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की तथा एनसीसी को पेशेवर रूप दिया। सन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। ये सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। ये वी के कृष्ण मेनन की बड़ी सामरिक और राजनीतिक जीत थी। उन्होंने सेना में पदोन्नति की वरिष्ठता आधारित प्रणाली को बदलकर योग्यता आधारित प्रणाली करने की भी वकालत की थी, जिसका अधिक स्वागत नहीं हुआ था। सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय का सारा दोष वी के कृष्ण मेनन पर मढ़ा गया और उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की पैरवी की। सन 1969 में उन्होंने राजनीति में वापसी की, संसद पहुंचे और सन 1971 में फिर से जीत दर्ज की। संसद में अंतिम वर्षों के दौरान वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, विशेष रूप से 1966 की वियतनाम शांति योजना और 1971 के बांग्लादेश संकट के समय। 6 अक्टूबर सन 1974 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत ने एक ऐसे मौलिक विचारक को खो दिया जिन्होंने भारत को एक दृष्टि दी कि वो स्वयं अपनी नजर से विश्व को देख सके। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह से आज हम ढूंढ कर लाए हैं कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का ये दुर्भाग्य ही था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे नशे का चस्का लग गया, जिसका फल ये हुआ कि मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में अब उसे आनंद नहीं आ रहा था। किसी वट वृक्ष के नीचे धुनी जल रही होती थी, एक जटाधारी महात्मा विराज जाते थे और भक्तजन उन्हें घेरे बैठे थे और तिल तिल चरस के दम लग रहे थे। बीच बीच में भजन भी हो जाते थे। मजूरी धूतरी में वो स्वर्ग सुख कहाँ था। चिलम भरना अब पयाग का काम हो गया था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी और पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलम पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विहल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति छाई रहती थी। वो सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए किसी दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बज जाने पर जब उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता था। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल दिखता। जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है तो वो गुस्से से भर जाता। वो जाति का भर था, गांव की चौकीदारी उसकी मिराज थी। 2 रुपए और कुछ आने उसको वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त में था। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना और लकड़ियां चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू तो वो ऐसे पोंछता था कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम नहीं थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो कमतर लोगों पर रोब था। वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। इसलिए

जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंता का कारण बनता जा रहा था। इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती थी। प्रयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता था और कभी पुर हाँकता था। जो काम सामने आ जाता जुट जाता था मेहनत से। हसमुख था, श्रमशील था, विनोदी था, निर्द्वंद आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूखो नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए वो कभी ना करता ही नहीं था। किसी ने कुछ कहा तो अच्छा भैया कहके दौड़ जाता था, इसलिए गांव में उसका बहुत मान सम्मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट नहीं हुआ था, जब महतो को ये रिद्धि न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधती थी। तो प्रयाग किस गिनती में था? हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह नहीं था। परंतु अब ये समस्या दिन बर दिन बढ़ रही थी। उस पर ये विपत्ति थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उतनी पतिपरायण, उतनी सेवाशील और उतनी तत्पर नहीं थी। उसकी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास हो गया था। प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत भजन करे और साधु सेवा में लगा रहे। एक दिन की बात है, रुक्मिन बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे, दम लगाकर आता हूँ। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने के लिए? ऐसी चाट बची है तुम्हें, तो काम क्यों नहीं कर लेते? क्यों आजकल कोई बाबा नहीं मिल रहा क्या? जाकर चिलम भरो, और क्या काम है तुम्हें? प्रयाग ने भी त्योरी चढ़ा ली, भला चाहती है तो पैसे दे दे, अगर इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, रहना अकेले और रोना। रुक्मिन ने भी अंगूठा दिखा दिया, रोए मेरी बला, जाना है तो जाओ, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो? अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी, रह लूंगी। अच्छा, तो अब यही फैसला है? प्रयाग ने कहा। रुक्मिन ने भी कह दिया, हाँ हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो ऐसे जवाब देती हो? रुक्मिन ने भी तिनक कर कहा, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारा क्या जाता है, तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया। प्रयाग उस दिन घर से निकल गया, रात के 9 बज गए थे। तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए, समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा कि मनाने आएगी, मैं क्यों जाऊं मेरी बला से। जब दूसरे दिन भी प्रयाग नहीं आया तो अब रुक्मिन को चिंता हो गई। गांव भर छान आई उसे, चिड़िया किसी अड्डे पर नहीं मिली। लेकिन उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई, रात को लेटी भी तो बहुत देर तक उसकी आंख नहीं लगी। शंका हो रही थी कि सचमुच प्रयाग विरक्त तो नहीं हो गया। फिर उसने सोचा, प्रातः काल जाकर पत्ता पत्ता छान डालूंगी, होगा किसी साधु संत के साथ, और नहीं मिला तो थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही हुआ था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि प्रयाग आता हुआ दिखा। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। छीट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा सा घूंघट और शर्मीली चाल। रुक्मिन का कलेजा तो धक से हो गया। वो एक क्षण हतप्रद होकर खड़ी होकर देखती रह गई। तब बढ़कर उसने अपनी नई सौतन को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने प्रयाग से पूछा, कहां से लाए हो जी इसे? प्रयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई, घर का काम धंधा करेगी और पड़ी रहेगी बस। क्या करते हो, मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है, प्रयाग ने तिरछी चेतावनी देकर कहा। तुम पगली, इसे तेरी सेवा टहल को लाया हूँ, नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है, रुक्मिन ने कहा। प्रयाग ने जवाब दिया, चल मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वो पुरानी, ला कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ रहे, हाँ देख तो 4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे।
भी काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ में रख दिया। दूसरी बार उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पयाग में चाहे कोई गुण हो या ना हो, ये तो मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। एक महीने तक तो किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, लकड़ियां तोड़ती, चारा काटती, उपले पाथती और बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो वो पयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वो सौत को कोई काम नहीं करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या हुआ, है तो अभी कल की बहुरिया, दो चार महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को ही हूँ। पूरे गांव में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था। पर सत्संगी घाग पयाग सब कुछ समझता था और वो अपनी नीति की सफलता पर खूब प्रसन्न था। एक दिन नई बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे ना जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो ना। रुक्मिन ने स्नेह से कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाओगी, भीतर का काम किए जाना, बाहर के लिए मैं हूँ। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़ कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़कियों की दशा अब उसके लिए असहनीय हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे और कोई पूछता नहीं। रुक्मिन बाहर से चार पैसे लाती तो घर की मालकिन थी। अब सिलिया भी मजूरी करेगी, मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, ये बात उससे अब छिपी नहीं थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की किवाड़ लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, तो किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इस काम को कर सकती है। वो यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर की रात ही चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज भी सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस तो रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा, किसका अनाज पीस रही है तू। सिलिया ने मिनी डर होके कह दिया, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं, मैं पीसती हूँ ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, चक्की की घूमर घूमर भी नहीं सही जाती, लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी, 2 महीने हो गए, बहुत हो गया। रुक्मिन ने प्यार से कहा, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। सिलिया ने बोला, तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती, आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं, किसके गेहूं है, मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली। पैसे क्यों नहीं देंगे, बिगाड़ करती हूँ क्या, तू नहीं मानेगी लगता है। सिलिया ने भी कह दिया, मैं बैठकर नहीं खाऊंगी। ये तकरार सुनकर पयाग भी आ गया और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने देना, अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी, हो गए 2 महीने बहुत है, तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी, रुक्मिन ने बोला। और सिलिया बीच में बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है, चौका बर्तन झाड़ू बुहारी रोटी पानी पीसना कूटना कौन नहीं करता, पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में खट पड़ गई है, मुझसे अब सारा काम नहीं होता। पयाग ने कहा, हाँ तो तू बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती, 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी, क्या कहेगा संसार, संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐप करने जाती हूँ। सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया, सिलिया की अमलदारी हो गई। खूबसूरत औरत थी और यौवन भी भरपूर। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए।
गट्ठा उठाए नहीं उठ रहा था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली थी। ये गट्ठा 12 आने में बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ खरीद लिया और 4 आने भी बच गए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से बाजार नहीं जाने दूंगी, इससे फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर ये सामान देखकर उसकी आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों बाद उसे स्वादिष्ट वस्तु मिली थी, बहुत प्रसन्न हुआ। पयाग भोजन करके बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। तो पयाग ने कहा, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले, कुछ बचे तो होंगे, देना मुझे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दिए। पयाग खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया रे। रुक्मिन तो 2-4 पैसे में ही टाल देती थी, मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही अच्छा लगता है। पैसे खाने पीने के लिए होते हैं कि गाड़ने के लिए? सिलिया ने भी हंसकर जवाब दिया। पयाग ने भी आज्ञा दे दी, अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में अब संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने जाती, जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह। वहां से लौटकर भी वो बिगार नहीं बैठती थी, कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती। पयाग के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया कि वो किसी तरह हिलाए नहीं हिल रही थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगिताओं में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना और तेज धूप, उसने सोचा नहाकर बाजार जाएगी। घास द्वार पर रखकर वो तालाब चली गई। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया जब नहाकर लौटी तो उसे घास कम लगी। उसने रुक्मिन से पूछा तो रुक्मिन ने कह दिया, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देना शुरू कर दी, जिसने मेरी घास छुई उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाए, आंखें फूट जाए। लगातार सिलिया गाली दे रही थी। रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्लाकर उठी और सिलिया को 2-3 तमाचे जड़ दिए। सिलिया भी वहां पर सिर धुनकर रोने लगी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सबको खटकती थी। वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ी क्यों लाती है, सवेरे क्यों उठती है, पैसे क्यों लाती है। पड़ोसियों की सहानुभूति से वो वंचित हो रही थी। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम हो गया, घास ना हुई सोना हो गया। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया था। शाम को जब थका हुआ लौटा तो उसने सिलिया से कहा कि ला कुछ पैसे दे, दम लगाऊंगा, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देख कर रोने लगी। पयाग तो घबरा गया, क्या हो गया, क्यों रोती है, कौन मर गया? अब इस घर में मेरा रहना नहीं होगा, मैं अपने घर जाऊंगी, सिलिया ने जवाब दे दिया। अरे कुछ तो बोल, गांव में किसी ने कुछ कहा? सिलिया ने रो रो कर सारी कहानी सुना दी। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, वो तो झल्लाया ही था, ये कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी, वो अभी घड़ा रख भी नहीं पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा, मारते मारते उसे बेदम कर दिया। वो मार का जवाब गालियों से देती, पयाग हर गाली पर उसे और मारता। रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती, वाह रे तेरा दीद, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत नहीं देखी, औरत का है को डायन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। रुक्मिन ने कुछ नहीं सुना, बस बोलती चली गई। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिन की जबान नहीं थकी, वो लगातार रट रही थी। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला रहा था और आ आकर 2-4 लात जमा देता था। पर रुक्मिन तो अब जैसे
पत्थर हो गई थी, अब उसे चोट ही नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ, रुक्मिणी उठकर निकल गई, आंखों से आंसू की धार निकल रही थी। सिलिया खाना बना रही थी, उसने जाते देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ नहीं बोला। जब फसल पकने लगती थी तो डेढ़ दो महीने पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसका किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मुढ़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग जला लेता था और उसी मुढ़ैया पे जाके रहता था। चैत के अंत तक यही नियम था और आजकल वही दिन तो चल रहे थे। फसल पकी हुई थी, दो चार दिन में कटाई हो गई। पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिन की राह देखी, समझा कि पड़ोसिन के घर चली गई होगी रुक्मिन, इसलिए खा पी कर उसने लाठी उठाई और सिलिया से बोला कि वाड़ बंद कर ले, रुक्मिन आए तो खोल देना, मना जुना कर थोड़ा खिला देना, तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। सिलिया बोली, न जाने वो कब आएगी, मैं अकेली कैसी रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा, सूना घर पाकर कोई लोटा थाली थोड़ी ले जाएगा, डर किस बात का, फिर रुक्मिन भी तो अभी आएगी, तू रह, आता हूँ। सिलिया ने अंदर से दरवाजा बंद किया, पयाग खेत में चला गया। अचानक सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जला ली है। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी, उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ, कौन है, कौन आग जला रहा है। ऊपर उठती ज्वालाओं ने अपनी जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मुढ़ैया में आग लगी है, उसकी छाती धड़कने लगी। इस मुढ़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था, हवा चल रही थी, मढ़ैया के चारों ओर एक हाथ पे हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी थी, रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे खेत को भस्म कर देगी, गांव तबाह हो जाएगा और इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वो भी जल जाएंगे। अरे ये क्या हो गया, लपटे तो बढ़ रही है, अब विलंब करने का समय नहीं था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया, कंधे पर लोहबंद लाठी रखकर वो बेतहाशा मुढ़ैया की ओर दौड़ा। मेढ़ों में जाने में चक्कर था, इसलिए वो खेत से होकर भागा जा रहा था। ज्वाला प्रचंड होती जा रही थी, वो ऐसे भाग रहा था जैसे तेज घोड़ा उड़ रहा हो। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य था, उसकी आंखें मढ़ैया पर लगी थी, दाहिने बाहिने कुछ नहीं सूझ रहा था, दम फूल रहा था, ना पांव थक रहे थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मुढ़ैया के पास पहुंच गया। मुढ़ैया के पास कोई नहीं था, किसने ये काम किया ये सोचने का मौका नहीं था, उसे खोजने की तो बात ही और थी। पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ, वो क्रोध का समय नहीं था, लेकिन ज्वाला कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती दाहिनी ओर लपकती और कभी बाई। पयाग गांव की ओर भाग गया, ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई अग्नि यज्ञ हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था। एक बार एक मूठ उठाकर अलग करके वो गिर गया, सारा हाथ जल गया उसका, हाथ पांव पल भर भी नहीं रुके, हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका नहीं थी, अगर भय था तो यही कि मढ़ैया का वो केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था वो ना चल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मुढ़ैया उसके ऊपर आ गिरती, अग्नि समाधि में मग्न कर दी थी उसको। पयाग ये जानता था और हवा की चाल से लड़ने में लगा था। पयाग ने बहुत कोशिश की लेकिन वो आग रोक नहीं पा रहा था। अग्नि की क्रूर लीला उसने ऐसी कभी नहीं देखी थी कि अचानक एक स्त्री सामने के वृक्ष से दौड़ती हुई आई और पयाग के पास पहुंच गई। ये रुक्मिन थी, उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मढ़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों में ले लिया और उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा, उसका सारा मुंह झुलस गया। रुक्मिन उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर पहुंच गई, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया, कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध नहीं थी कि मढ़ैया के बाहर निकल आए, वो मढ़ैया के लिए
वहीं गिर गई। उसके बाद कुछ देर तक मढ़ैया हिलती रही, रुक्मीन हाथ पांव फेंकती रही और फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मीन ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद पयाग को होश आया, सारी देह चल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा, पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मीन की अध जली लाश पड़ी थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांक लिया और खूब रोया। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर वो बचा नहीं। कुछ तो आग ने जला दिया और जो कुछ कसर थी वो शोक अग्नि ने पूरी कर दी और बन गई उनकी अग्नि समाधि।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अग्नि समाधि। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूँ। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से दो सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थी। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नृत्य की पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधियां में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द ट्रेडिशन।

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसी में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण, ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालिदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी साज पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा,
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: सुनकर सुन

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य डॉक्टर श्री राम परिहार जी का।
2: ये नर्मदा के पूरे संभार को, पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है।
1: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में राष्ट्रीय विमर्श के तहत, जिसमें नर्मदा अंचल की मूर्त और अमूर्त धरोहर पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं डॉक्टर श्री राम परिहार जी का वक्तव्य।
3: मैं श्री श्री राम परिहार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। लोक कथाएं, परिक्रमा, अनुष्ठान एवं मौखिक परंपराएं, श्री श्री राम परिहार जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाता है।

नर्मदे, सबको नर्मदे हर, नर्मदा नर्मदा हर्ष को देने वाली, संपत्ति को देने वाली, खुशी को देने वाली, समृद्धि को देने वाली, जीवन को देने वाली, जीवन की तरलता को भरने वाली, जीवन की चमक को भरने वाली, जीवन में आर्द्रता पैदा करने वाली, जीवन में निर्मलता देने वाली और जीवन को अविराम गति से बहते रहने की अटूट शक्ति देने वाली नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं। विषय इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना गहरा और इतना फैलाव वाला है कि वर्षों तक हम नर्मदा की इस पावन महिमा का यदि संग्रहण और आलेखन करेंगे तब भी हम उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपनी बात कहूँगा, मैंने देखा है ये केवल जल की बहती हुई धारा नहीं है। यदि पांच तत्व में से एक तत्व जल है और जल यदि सृष्टि की रचना का एक बहुत महत्वपूर्ण उपादान है तो उसी जल की जीवित शक्ति के रूप में नर्मदा धरती के ऊपर बह रही है। स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में यह तो सनातन नदी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि कह रहा है कि ये प्रलय काल में भी भगवान विष्णु के दाएं पांव में रेखा बन करके लिपटी हुई है। तो मुझे लगा कि जब हिमालय नहीं था तब विंध्याचल था और जब माँ गंगा नहीं रही होगी तब नर्मदा रही होगी। एक शाश्वत, एक अनादि नदी है ये, इसके किनारे हमने जन्म लिया, कितने बड़भागी हैं, कितने पुण्यभागी हैं, कितने पुण्यात्मा हैं हम, तो क्या इसके गोद में जन्म लेने का जैसे हम माँ के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार हमको माँ के साथ, नर्मदा के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा अटल विश्वास है हम पुराने लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन जो नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई, इनको कुछ भी बुरा भला कहो, इनको यदि बदल दिया, इनकी मानसिकता यदि बदल दी तो नर्मदा को शाश्वत धारा के रूप में, उसका चाहे हम किसी भी रूप में संग्रहण करें, उसका दस्तावेजीकरण करें, असंख्य संपदा फैली हुई है, कितने आयाम फैले हुए हैं। अभी जब मैं तीसरी बार, पहली बार नर्मदा परिक्रमा पर 2011 में गया था, दूसरी बार 2021 में गया था और तीसरी बार जब 15 मार्च से लेकर मैं अभी जब लौटा तो डिंडोरी और मंडला के बीच का जो परिदृश्य है, जो 15 साल पहले का परिदृश्य था वो अभी का परिदृश्य है, बहुत अंतर आ गया है, इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। ये अंतर प्रकृति में नहीं आया, मनुष्य की मानसिकता में आया है। मानसिकता ये तो बनी कि श्रीराम परिहार परिक्रमा पर जा रहा है, उसके देख

नदी नहीं, वह नदी के रूप में जो जीवित बह रही है, जल के रूप में जो बह रही है। जल केवल क्या नदी के रूप में बहता है कि जल हमारे भीतर भी बहता है? बिल्कुल सच मानिए, नर्मदा सामने खड़ी होकर के बात करती है। आप बात करने लायक बनी है तो सही, अब बेटा बनिए, माँ तो सब उपस्थित हो जाएगी। और ये सच बात है, सैकड़ों परिक्रमा वासियों के मुंह से मैंने सुना है कि जब जब आप परिक्रमा में अकेले संकट से घिरेंगे, कोई ना कोई किसी बहाने, वृद्धा के रूप में, पशु के रूप में, किसी आवाज के रूप में, किसी अनजानी पुकार के रूप में, किसी पक्षी की आवाज के रूप में, वह माँ जरूर बताएगी। तीनों परिक्रमा में मैंने ये प्रमाण पाए हैं, तीनों परिक्रमा में संकट के समय। आस्था होनी चाहिए, गहरी आस्था होनी चाहिए। परिक्रमा क्या हम दिखावे के लिए करते हैं? यदि करते हैं तो मत करिए, मेरा दोस्त गया तो हम भी चले जाएं, ये आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक नर्मदा को समझना, यानी जल की सतत प्रवाह को समझना। आप सोचिए साथियों, ऐसी भीषण गर्मी में पिछले 3-4 दिन से सारी नदियां सूख रही, महानदी भी बिल्कुल अजस्र नदी है, बड़ी नदी है महानदी भी। महानदी में भी आप राजिम के पास जाएंगे ना तो जरा सी जलधारा मिलेगी इस समय, लेकिन नर्मदा में तो कोई पानी कम नहीं होता, पानी सूखता नहीं, पानी विरल नहीं होता। पानी स्वच्छतम नदी देखना हो तो मेरे ओंकारेश्वर के ऊपर थोड़ा सा जोगा का किला है, जो नाभि कुंड से, नाभि स्थल से थोड़ा सा नीचे, वहां नर्मदा की पावनता देखिए। सहस्त्रधारा जो मंडला के पास है और सहस्त्रधारा जो महेश्वर के पास है, वहां से जब नर्मदा किलोल करती हुई, अटकेलिया बहती हुई निकलती है, वहां निर्मलता देखिए। तो एक बात तो जरूर है, ये मैंने भी महसूस की है, कि माँ कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती। कितने परिक्रमावासी कुछ नहीं ले जाते, 2 जोड़ी कपड़े, 1 कमंडल और 1 लकड़ी, और कभी पाँव में चप्पल, और कोई तो बिना चप्पल के उभाने ही पाँव जाते हैं। लेकिन वो मांग कर खाते हैं, पेड़ के नीचे सोते, स्कूल में सो जाते हैं, धर्मशाला में सो जाते हैं, किसी ओटले पर सो जाते, किसी मंदिर के चबूतरे पर सो जाते। और नहीं, आज आप सोचिए ये कैसी आस्था है नर्मदा के किनारे की। पूरे निमाड़ में तो मैंने प्रमाण पाया है, और पूरे बुंदेलखंड में, और पूरे डिंडोरी से लेकर मंडला तक तो प्रमाण पाया है। सैकड़ों लोक कथाएं हैं, सैकड़ों आस्थाएं हैं, सैकड़ों मान्यताएं हैं, मन्नते नहीं, मान्यता, मान है। और सैकड़ों हमारी धारणाएं हैं जो मौखिक रूप से रात में कही जाती है। मेरे को नर्मदा जी मिली। एक बात मैं कहूँ कि हमने सबने पढ़ा है, हमको सबको पढ़ाया है कि नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। डिंडोरी और मंडला के बीच में मैंने देखा नर्मदा पश्चिम से पूरब की ओर भी बहती है। लगभग 10 किलोमीटर की जगह ऐसी है जहां पर, वहां पर बुड़नेर नदी आकर के नर्मदा में मिलती है, और बुड़नेर के संगम पर ही अब ये शोधार्थियों का, ये पुरातत्व विभाग का काम है कि वहीं जमनग्नि ऋषि का आश्रम भी है और वहीं परशुराम की जन्मस्थली है। और हम कहते हैं कि यहाँ इंदौर के पास जाना पाओ, जहाँ से चंबल निकलती है, वहाँ भी जमनग्नि ऋषि का आश्रम है और वहाँ भी परशुराम की जन्मस्थली है। वहाँ पर अखंड कीर्तन हो रहा है और बुड़नेर नदी आकर के मिलती है, और नर्मदा जी ऐसी पूरब पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, बिल्कुल पूरब की, और फिर जैसे ही मंडला आता है ऐसे मोड़ लेती है, और नर्मदा यहाँ मंडला सीधे बंजर नदी आकर के मिलती है, यहाँ बुड़नेर नदी आकर के मिलती है। डिंडोरी से लेकर मंडला के बीच में जो वनखंड है, जो वन प्रदेश है, वही नर्मदा को अजस्र रूप से जल की स्रोतस्वनी नदी बनाते हैं। लेकिन जब 15 साल पहले जब गया था तो वहां जंगल थे, अब छोटे छोटे खेत हैं, उसमें मसूर हो रही है और उसमें अलसी पैदा हो रही है। इतने छोटे छोटे खेत उसमें पैदा हो, अभी मसूर को उखाड़ा जाता, मसूर काटी नहीं जाती, मसूर को उखाड़ा जाता। तो जल जीवन, समाज, मान्यताएं, आस्थाएं, पुरातत्व, लोक देवता, वृक्ष, अब क्या कैसा कहेंगे कि जैसे ही मंडला जिला समाप्त होता है और पहाड़ियां समाप्त होती है,
सागुन के पेड़ समाप्त हो जाते।

0: और जैसे डिंडोरी जिला लगता है और सरई और साजा के पेड़ हरे भरे, इस गर्मी में सरई तो जैसे अवतार ले लिया हो। ये वनस्पति का जो भूमि के आधार पर की, जलवायु के आधार पर की, वातावरण के आधार पर की, हम जमीन के आधार पर की, हम वहां की मिट्टी के आधार पर किस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर इस नदी के इस पार तो सागौन लगा हुआ है और सरई बिल्कुल नहीं है, अब नदी के उस पार जो है सरई शुरू हो जाती है। लेकिन उन सब में जो वनवासी रह रहे हैं, उन सब में जो नर्मदा पुत्र रह रहे हैं, वो नर्मदा के सहारे ही रहते हैं। वो नर्मदा के सहारे इसलिए रहते, उनके जीवन का अभिन्न अंग नर्मदा है, नर्मदा माँ है, वो ठीक कह रहे है। एक आश्रम है डिंडोरी से बिल्कुल नीचे, वहां नर्मदा जी बस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और एक अखंड साधु जो है पता नहीं कितने साल का, और इतनी ऊंचाई होगी उस साधु महात्मा की, और कोई गाय नहीं, कोई भैंस नहीं, लेकिन जितने लोग जाते हैं सब सबको चाय पिलाता है, नाराज हो गए कि चाय पी जाओ, और कुछ नहीं है तन पर, केवल अधो वस्त्र है छोटा सा, और कब से है बोले हमको नहीं मालूम। ये ऐसे आश्रमों में बड़े हुए सन्यासी जो नर्मदा के किनारे ऐसे मोड़ खा करके आती, इधर भी चट्टान इधर भी चट्टान, मैंने बहुत पैदल उनके किनारे किनारे यात्रा की, जितनी जगह जाओगे नर्मदा का रूप अलग मिलेगा, दूसरा रूप उस तरह का नहीं मिलेगा। जितने घाट पर जाओगे नर्मदा का सौंदर्य यहाँ अलग है तो वहां अलग है, सूलपाणेश्वर में अलग है तो मीठी तलाई में अलग है, सागर संगम में अलग है और कोटेश्वर में अलग है, सब जगह अलग है, धर्मपुरी में अलग है, धर्मपुरी में तो दीप बनाती है और बीच में शिवलिंग है, मेरे ओंकारेश्वर में भी वैडूरमणि पर्वत पर ओम आकार की आकृति में शिव बैठे हुए हैं और इधर से कावेरी इधर से नर्मदा, कैसा अद्भुत, कितनी संरचना, भू संरचना का सौंदर्य जैसे अवतार ले लिया, भूमि का सौंदर्य तो अपने पास है लेकिन नर्मदा ने भूमि के सौंदर्य में टीकी लगाई है, कुमकुम का टीका लगाया है, अक्षत लगाया है, आरती उतारी है। ये नर्मदा जितनी जगह, यदि अमृतलाल बेगड़ कहते हो तो प्रपातों की नदी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन प्रपात खत्म हो गए हैं, नर्मदा सागर बांध में प्रपात खत्म हो गए, सरदार सरोवर में कम से कम 15 प्रपात समाप्त हुए हैं। लेकिन दूसरी समृद्धि आई है, नर्मदा का पानी बेटा बनकर के खेती में सिंचाई कर रहा है और नर्मदा के पानी से बिजली बनकर के बेटी बनकर के घर घर में प्रकाश कर रही है, तो एक बेटा सिंचाई कर रहा है और दूसरा उसी जल से पैदा हुई बेटी, तुलसी कहते हैं कि पुत्री पवित्र करे कुल दो, तो बिजली पैदा हो रही है नर्मदा के जल से तो प्रकाशित हो रही, घर प्रकाशित होगा तो पीढ़ियां प्रकाशित होगी, घर प्रकाशित होगा तो संस्कार समृद्ध होंगे, घर प्रकाशित होगा तो स्वच्छता होगी, घर प्रकाशित होगा तो गाय को रोटी मिलेगी, घर प्रकाशित होगा तो तुलसी के किनारे शाम को दीपक जलेगा, घर प्रकाशित होगी तो माँ की ममता लहराएगी, घर प्रकाशित होगा तो पिता का आंचल हमारे ऊपर होगा, घर पिता होगी तो माँ के दूध से हम राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रभक्त बनकर के योग्य नागरिक बनेंगे। इतना घर पवित्र यदि हमारी माँ नर्मदा करती है, और ये नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करने का जो आनंद है वो अखंड आनंद है, वो अनिर्वचनीय है, वो शताब्दियों के पुण्य, जब 100 जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के वो बड़भागी हैं जो नर्मदा के किनारे किनारे पैदल यात्रा करते हैं। कितनी बूढ़ी माएँ हैं, देखिए कैसे पीढ़ियां जुड़ रही है, एक ने त्याग दिया अगली पीढ़ी, तो मैं कहता हूँ कि ये जो सामने पीढ़ी बैठी हुई है इसकी, इसको थोड़ा सा सही दिशा देने की जरूरत है, ये परिवर्तन लाएगी, ये नर्मदा के पूरे संभार को, पूरे के पूरे संपदा को संग्रहित करके हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी। हमको अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम तो पता नहीं नदी किनारे के कैसे सूखे पेड़ है जो एक दिन बहाव में बह जाएंगे, अगले 90 वर्ष का भारत तो ये बनाएंगे, अगले 80 वर्ष का भारत ये बनाएंगे, इनकी आंखों में लाल डोरे बना दीजिए, लाल रेखाएं पतली रेखाएं बना दीजिए उनमें रंग काम के भरने के, तो ये हमारे बच्चे करेंगे। एक क्रम से कितना अपार है, मठ है, मंदिर है, आश्रम है, साधु है, सन्यासी है, आस्था है, जीवन है, जमीन है, पशु पक्षी है, पक्षियों के कितने पेड़, कितने प्रकार के फलदार, कितने प्रकार के औषधियां, कितने प्रकार की, आप माई की बगिया से लेकर के और कपिलधारा तक जाएंगे तो 10 बेटियां हमारे नर्मदा की औषधि लेकर के बेचती हुई मिलेंगी। हाँ बोले मैं तो यही काम कर रही हूँ, मुझे पिताजी ने बताया था, औषधि का ज्ञान पारंपरिक रूप से, और वो ठीक हो जाती है। मैं तो 2-3 औषधि लेकर के आया भी, उनको लगाए भी, बोले आप लगा दीजिए, गमले पे लगा दीजिए और उसको ऐसा ऐसा कर दीजिए। वैसे शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन उनको बोध ज्यादा है। वो किनारे पर बैठी हुई, औषधियों का ज्ञान, पक्षियों का ज्ञान। बोले ये पक्षी बोल रहा है तो 7वें दिन बारिश होगी ही, ये पेड़ में हरी पत्ती आ गई है तो अब बोनी शुरू होने वाली होगी ही। किसी विज्ञान के पास है क्या ऐसा? अमरकंटक के डिंडोरी में घूमिए आप, ये सब ज्ञान उसके पास है। ये सब ज्ञान हमारे दादाओं के पास भी था, लेकिन इस ज्ञान को संग्रहित करेंगे और ये जो संस्थाएं जुड़ी हुई है, ये इस ज्ञान को यदि अभिलेखीकरण करेंगे तो फिर हम उसको पाठ्यक्रम में लाएंगे। कल से नया पाठ पढ़ेंगे, नया पाठ का मतलब नर्मदा के नए स्वरूप से हम परिचित होंगे। बहुत काम है, क्योंकि एक सनातन नदी को जानने के लिए सनातन परंपराओं से गुजरते हुए शाश्वत शब्दों में अभिलेखन करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को जोड़ना है, भारतवर्ष को जोड़ना है। और सच मानिए कि पूरे नर्मदा खंड में, अमरकंटक से लेकर के नर्मदा कुंड से लेकर के रत्नाकर सागर में, पुराणों में देखिए, ग्रंथों में देखिए, रत्नाकर सागर में मिलती है जाकर के नर्मदा जी, रत्नाकर सागर में मिलती है। और वो जो जहां मिलती है वहां 70 किलोमीटर का चौड़ाई है। वहां पर नर्मदा जी जहां समुद्र में मिलती है वहां कितनी विराट हो जाती है, 70 किलोमीटर। गंगा तो डेल्टा बनाती है सागर संगम में, वहां पर कपिल ऋषि के आश्रम में, लेकिन नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा समग्र रूप में जाकर के समुद्र में समाहित होती है। और वो जहाज वाला बताता है, नाव वाला बताता है कि बोले भैया ये 70 किलोमीटर की, उसी पर तो हम बैठ करके पार करते हैं ना, परिक्रमा में जाते हैं तो उसी पर बैठ करके पार करते हैं। वही कहते हैं कि भाई यही नर्मदा मिलती तो हाथ जोड़ लेते, मस्तक जोड़ लेते और आंखें तो अश्रु की बूंदे अभिषेक कर देती है नर्मदा को। इससे जुड़िए, ये नदी जीवन देने वाली नदी, ये नदी मध्य प्रदेश का उद्धार करने वाली नदी, ये जीवन, ये नर्मदा भीतर से हमको पवित्र करने वाली नदी। और यदि भीतर से पवित्र हो गया मनुष्य तो पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व पवित्र हो जाएगा। एक नदी पवित्रता का संकल्प लेकर के अपने तटों पे बह रही है, निरंतर आवाज दे रही है, आओ मेरे पुत्रों, मैं तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी रीति, तुम्हारी नीति, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा मान, तुम्हारा बड़प्पन, तुम्हारे जीवन की सार्थकता और तुम्हारी जीवन लेने का धर्म बताने के लिए तो बह रही हूँ। मेरे नदी के, मेरे जल में पांव डुबो करके आचमन तो करो, पूरा संसार, पूरा तुम्हारा समग्र जीवन पवित्र हो जाएगा। ऐसी पवित्र नदी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये मेरी माँ है, ये जगत दात्री है, ये पतित पावनी है, ये मेकल सुता है और ये शिव कन्या है। शिव और नर्मदा का अटूट रिश्ता है। शिव है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो शिव है। ऐसे शिव की पुत्री शांकरी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सब से विदा लेता हूं। मुझे अवसर दिया, वंदे मातरम।
1: ये था आज का खास कार्यक्रम, जिसमें आपने वक्तव्य सुना डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अमा गजबी काका, जरा सिरके वाले प्याज तो पकड़ाइए और दो रोटी भी लेते आइए।
1: आया महमूद भाई, आ रहा हूँ।
2: ये लो, ये रही तुम्हारी दो रोटियाँ और ये सिरके वाले प्याज।
0: अमा इतने सारे?
2: ठीक है, खा लो, और कुछ लाऊं?
0: नहीं, हाँ एक काम करिए, अपने टेप रिकॉर्डर पर कोई भड़कता भड़कता गीत लगाओ ना। अमा ये क्या देशभक्ति के गीत लगा रखे, बदल दो इसे।
2: माफ करना भाई, मैं तो सिर्फ यही गाने चलाता हूँ, और गीत मेरे पास हैं ही नहीं।
3: नाया।
2: मुझे और मेरे तोते को सिर्फ आजादी और देश प्रेम के गीत और कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं। ये बात यहाँ आने वाले सभी जानते हैं। जब से मैंने इसे पिंजरे से आजाद किया है, इसे आजादी और प्रेम का सच्चा अर्थ पता चल गया है। इसीलिए मिट्टू मिया, मेरी बात सुनो। आज मैं तुम्हें देश के दीवाने शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की कहानी सुनाता हूँ। सुनोगे?
3: सुनूंगा। हाँ।
2: तो मिट्टू, कहानी शुरू होती है। शाही शहदा नूरे इस्लामुद्दीन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमी से, मैसूर की पुरानी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के बाहर लाल बाग में। यहां फतेह अली, टीपू सुल्तान, उनके वालिद सुल्तान हैदर अली और उनकी दादी जान फातिमा बेगम की रूहें कब्रों की सूरत में आज भी मौजूद हैं। वो टीपू सुल्तान जो

0: मामूली सा ही सिपाही था जो मैसूर की सेना में नौकरी करता था, लेकिन अपनी सूझबूझ और शूरवीरता के कारण वो मैसूर का सुल्तान बन गया। उसे केवल मैसूर का सुल्तान नहीं, एक बहुत बड़ी सल्तनत का शासक बनना था। उसने मैसूर के आसपास के इलाकों पर विजय हासिल कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। सुल्तान हैदर अली को केवल एक ही बात का गम था कि उसके कोई औलाद नहीं थी।
1: हैदर, हैदर अली।
2: अरे अम्मी जान, आप हमारी आरामगाह में? अम्मी, हमें बुलवा लिया होता।
3: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
1: खुश रहो बेगम, अल्लाह तुम्हारी झोली में चांद सा बेटा दे।
2: अम्मी, क्यों आप हमारी दुखती रग पर हाथ रख रही हैं? इसी गम में तो हमारी बेगम दिन रात खुली जा रही है।
1: फिक्र मत करो बेटी, तुम लोग फकीर टीपू मस्ताना औलिया के पास माथा टेक आओ। सुना है उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। हैरान मत हो मेरे बच्चे, शायद अल्लाह यही चाहता है।
2: जी अम्मी जान, मैसूर का सुल्तान हर फकीर के आगे सर झुकाने को राजी है।
1: अल्लाह तुम्हें मुबारक दिन जल्दी ही नसीब करेगा बेटा।
2: अम्मी जान।
4: तो गजबिये काका, क्या सुल्तान हैदर अली ने अपने बेटे का नाम फकीर टीपू मस्ताना औलिया के नाम पर फतेह अली टीपू रखा था?
0: हाँ महमूद, उन्हीं दिनों अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा पाकर हैदर अली दिल से और भी मजबूत बन गया था। हैदर अली एक नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे कर चुका था। हैदर अली की बहादुरी और बढ़ती हुई विरासत मराठे, निजाम और अंग्रेज सभी की आंखों का कांटा बन रही थी। हैदर ने टीपू को समयानुसार युद्ध और बुद्धि दोनों में गजब का माहिर कर दिया था, और टीपू बहादुरी में अपने वालिद सुल्तान हैदर अली से 21 ही था।
2: अच्छा?
0: हाँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार जंग जीती थी। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए टीपू के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया।
5: सुल्तान हैदर के बेटे टीपू की सेना इधर ही आ रही है।
6: इधर मद्रास में? हुकआउट, उसे कैसे पता चला कि हम इधर पार्टी कर रहे हैं?
5: I don't know.
6: Oh, शेख, सारा मजा खराब कर दिए। Hey, listen, listen all of you. जल्दी इस शिप पर चढ़ जाओ। सुल्तान हैदर अली का बेटा टीपू सेना के साथ इधर आ रहे हैं। जल्दी हो।
7: कहाँ गए नामकूल फिरंगी? खाने पीने का सामान बिखरा हुआ है, लगता है अभी अभी भागे हैं कायर।
8: छोटे सुल्तान, छोटे सुल्तान, वो देखिए, उधर देखिए, फिरंगी डर कर समुद्री जहाज में भाग रहे हैं।
7: इसका मतलब किसी ने उन्हें हमारे आने की खबर कर दी थी। कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी है जिस पर सेंट थॉमस ने अपना कब्जा किया हुआ है, वहां चलते हैं, वही अंग्रेजों की छटनी और कटनी करेंगे। चलो
8: चलो चलो
7: चलो, चलो! चलो!

हैदर अली की ताकत अंग्रेजों के लिए जितनी चिंता का विषय थी उतनी ही निजामों और मराठों के लिए भी। इन तीनों ने हाथ मिला लिया, लेकिन इसका पता चलते ही हैदर अली ने मराठों को लालच देकर उन्हें अपनी ओर कर लिया। निजामों को भी लालच दिया गया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। लेकिन युद्ध के बीच ही अंग्रेजों का विरोध कर उनसे अलग होकर वो हैदर अली से मिल गए। लेकिन ढुलमुल निजाम हैदर अली को भी युद्ध में अकेला छोड़कर भाग गए। मजबूरन हैदर अली को अपनी फौज को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। ये देख अंग्रेजों ने हैदर अली के हारने की अफवाह उड़ा दी। ये सुनकर उनकी वालिदा फातिमा, जो युद्ध के मैदान से 200 मील दूर हैदर नगर में थी, परेशान हो गईं। और फातिमा बेगम अपने बेटे हैदर अली की हौसला अफजाई के लिए बरसाती भयानक रात में ही 1000 घुड़सवार सेना और बुरखा पहने 200 औरत घुड़सवारों के साथ चल पड़ी। 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वो युद्ध के मैदान में जा पहुंची।

0: सुल्तान का मर्तबा बुलंद हो, वालिदा साहिबा तशरीफ लाई है।
1: अम्मी जान, इतनी सुबह यहाँ जंग के मैदान में?
2: हैदर, हैदर मेरे बच्चे।
1: अम्मी जान आप यहाँ?
2: हमने सुना कि आप जंग से।
1: अम्मी जान,
2: नहीं नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता था। हमारा हैदर सीने पर तलवार खा सकता है, पीठ पर नहीं। हमें यकीन था कि आप हमारे दूध को शर्मिंदा नहीं करेंगे।
1: हमारे पीठ दिखाने की खबर अंग्रेजों की एक चाल थी अम्मी जान।
2: इसीलिए हम चले आए। हम चाहते हैं कि आप फिरंगियों को इस वतन से भगा दें।
1: अम्मी जान,
2: हैदर अली के नाम का जलवा हर तरफ दिखाई दे। हम दुआ करते हैं कि जब तक आपकी सांस में सांस है, आप कभी हार का मुंह ना देखें। आपकी हमेशा फतेह हो।
3: आमीन।
4: उस युद्ध के बाद हैदर अली ने मंगलौर में टीपू को अंग्रेजों का सामना करने के लिए भेजा। बहुत ही भयानक युद्ध था। फिरंगियों के पांव बुरी तरह उखड़ गए। इस फतह के बाद टीपू के नाम से भी अंग्रेज खौफ खाने लगे। इस बात का जश्न मनाया गया और मद्रास के किले पर एक चित्र टांगा गया।
5: अरे वो देखो, किले की दीवार पर तस्वीर। तक पर हमारे सुल्तान हैदर अली बैठे हैं।
6: कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अरे इस तस्वीर में अंग्रेज लोग सिर झुकाए कागज दे रहे हैं हमारे सुल्तान को।
7: जैसे कोई संधि पत्र हो, हमसे समझौता कर लो वरना हम मर जाएंगे।
5: अरे अरे, ये सूंड वाला आदमी कौन है जो अंग्रेजों के साथ खड़ा है?
6: सूंड वाला?
5: हाँ।
8: अरे ये तो अंग्रेज का सेनापति स्मिथ लग रहा है।
5: स्मिथ? अरे उसकी सूंड तो देखो।
6: सूंड से पैसे भी गिरा रहा है हमारे सुल्तान के साथ।
4: वॉरेन हेस्टिंग्स इस लड़ाई में अंग्रेजों की दुर्दशा से बुरी तरह घबरा गया। उसने सर आयर कूट की कमान में सेना और पैसा भेजा, पर वो भी तीन बार टीपू से हार कर वापस लौट आया। इसी दौरान सुल्तान हैदर अली की पीठ में फोड़ा हो गया, जिसके कारण उसे अर्काट के किले में लौटना पड़ा। हैदर अली की तबीयत बिगड़ने लगी।
1: टीपू,
9: अब्बा जान,
1: हम नहीं जानते कि हम और कितने दिन के मेहमान हैं।
9: ऐसा ना कहें अब्बा जान।
1: लिहाजा हम चाहते हैं कि
9: अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आप हजारों साल जिए।
1: टीपू, तो लम्हे आजादी के साथ जीना भी जिंदगी भर का जीना है बेटा।
9: अब्बा जान,
1: हम जानते हैं इस वक्त अंग्रेज हमारे सर पर तलवार के मानित लटके हुए हैं।
9: आपको अपने टीपू की बहादुरी पर यकीन नहीं है?
1: इसीलिए तो बेटा, इसीलिए हम अपने शेर टीपू पर फख्र करते हैं। अंग्रेज अब सुल्तान हैदर अली से ज्यादा सुल्तान फतेह अली टीपू से डरते हैं।
9: सुल्तान फतेह अली टीपू? अब आप ये क्या कह रहे हैं?
1: टीपू बेटा, आपको दुख होगा कि सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और निजाम अंग्रेजों के आगे सर झुका चुके हैं।
9: जी,
1: नाना फड़नवीस के सामने भी सुलहनामा पेश हो चुका है। टीपू
9: जी,
1: ऐसे नासुक मोड़ पर हम अकेले आपके सहारे इतनी बड़ी सल्तनत का भार छोड़कर जा रहे हैं, मगर क्या करें, शायद अल्लाह ताला ने हमारा सुख यहीं तक लिखा था।
9: अब्बा जान,
1: हम जानते हैं कि आप हमसे भी ज्यादा बहादुर और नेक दिल हैं। हमें यकीन है टीपू कि आप हमसे बेहतर सुल्तान और जाबाज साबित होंगे। कल ही आपकी ताजपोशी की रस्म अदा की जाएगी। आप जाएं और तैयारी कर लें।
9: जी अब्बा जान, जरूर।

0: जनता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सात सितंबर सन 1782 को वीर सुल्तान हैदर अली संसार से विदा हो गया। अब मैसूर सल्तनत की बागडोर अकेले टीपू सुल्तान को ही संभालनी थी। टीपू बहादुर था पर चालबाज नहीं, इसीलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान को हराने के लिए चालें खेलने लगे। करीब 2 साल बाद ही उन्होंने टीपू सुल्तान को संधि पत्र भेजा कि वे लोग टीपू को हैदर अली का वारिस मानते हैं और मैसूर उनकी सल्तनत है, इसलिए वे मैसूर पर आक्रमण नहीं करेंगे, ताकि टीपू भी अंग्रेजों पर आक्रमण न करे। लेकिन इंग्लैंड से वॉरेन हेस्टिंग्स के स्थान पर कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जो चालें खेलने में माहिर था।
3: वेल निजाम साहब, आपकी कौम हमसे टीपू सुल्तान के खिलाफ कदम उठाने में मदद चाहती है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अभी अभी गवर्नर जनरल बनकर आए हैं, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त आने पर हम खुद आपकी मदद करेंगे।
4: ओके सर, जैसा आप कहें, हम चलते हैं। खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज। हम भी टीपू सुल्तान को हराना चाहते हैं, लेकिन किसी ऐरे गैरे के साथ मिलकर नहीं। हमें टॉप पर रहना है। जेरी।
5: यस सर।
3: हमने सुना है कि फ्रांसीसी टीपू सुल्तान के अच्छे दोस्त बन गए हैं। अभी अभी अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से फिसल कर आजाद हुए हैं। कहीं फ्रांसीसी हमें कमजोर समझ कर भारत पर अपना कब्जा ना जमा लें। अगर टीपू सुल्तान उनके साथ मिल गया तो जेरी बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे उसे हराने। फ्रांसीसी लोगों और टीपू सुल्तान पर नजर रखो।
5: ओके सर, ओके।
3: मुझे मराठों और निजाम को एक दूसरे के खिलाफ रखना होगा। दोनों को लालच दूंगा कि टीपू सुल्तान से जीती गई जमीन दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। हम तीनों एक साथ ही लड़ाई करेंगे। Long live our queen.
6: Tipu Sultan, Zindabad.
7: Tipu Sultan, Zindabad.
8: Tipu Sultan, Zindabad.
9: Tipu Sultan, Zindabad.
10: Tipu Sultan, Zindabad.
11: Tipu Sultan, Zindabad.
2: मद्रास और बंगाल में लड़ा गया ये युद्ध कॉर्नवालिस की एक बहुत बुरी हार साबित हुआ। लेकिन कॉर्नवालिस ने अपना शैतानी दिमाग लड़ाया और टीपू सुल्तान के बड़े बड़े अमीरों और सरदारों को मोटी मोटी रकमें अदा कर अपनी ओर कर लिया। कुछ खुराफाती लोगों को फौज में भर्ती कर दिया। दूसरी तरफ मराठों और निजामों को भी एक साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार किया। टीपू सुल्तान गैरों के हत्थे तो नहीं चढ़ा, लेकिन अपनों की बेवफाई और नमक हरामी से बुरी तरह घिर गया। सुमरपीठ के बुर्ज की यह हार इतिहास में उसकी बहुत बड़ी हार थी। उसे अपने लोगों की जान बचाने और अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से सुलह करनी पड़ी। उसका आधा राज्य तो मराठों और निजामों के बीच बांट दिया गया था। बाकी के राज्य के बदले उसे एक बहुत ही दर्दनाक फैसला करना पड़ा।
0: सुल्तान, क्या हुआ? क्या फैसला किया अंग्रेजों ने? वो हमारा आधा राज्य छोड़ रहे हैं ना?
12: बेगम, आपको हम पर यकीन है?
0: जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है? हम आपकी शरीके हयात हैं, क्या हमसे अपना दुख नहीं बांटिएगा?
12: हमने जो फैसला अपनी आवाम और अपनी कौम को बचाने के लिए किया है, उसमें आप हमारा साथ देंगे ना?
0: जी,
12: हम जानते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर हमें ये शर्तें माननी पड़ी, लेकिन खुदा गवाह है बेगम, हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है।
0: ऐसा क्या फैसला हुआ है? हमें बताइए ना, दर्द को अकेले जज्ब ना कीजिए, बताइए।
12: फिरंगी हमारी सल्तनत के हर जाने की शक्ल में 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ तो हम दे चुके हैं, बाकी के 2 करोड़ के लिए हमने उनसे 2 साल का वक्त मांगा है।
0: तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
12: लेकिन फिरंगी वक्त के अवज में अपने पास कुछ जमानत रखना चाहते हैं।
0: तो
12: हमें उनकी शर्त माननी पड़ी बेगम, और उस शर्त के मुताबिक हमें अपने दोनों बेटों को उनके पास जमानत के तौर पर रखना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं, वो तो नन्हे नन्हे 8-10 साल के बच्चे हैं।
12: आप हम पर भरोसा रखिए बेगम, हम वक्त से पहले ही अपने बच्चों को उन दरिंदों के कब्जे से छुड़ा लेंगे। हमारे बच्चों को वो हिफाजत से रखेंगे। उन्हें सिर्फ हमारी सल्तनत का लालच है, और वो हमारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। बस
13: अम्मी जान, अब्बास सुल्तान ने जो फैसला किया है उसमें हम उनका पूरा साथ देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें।
14: बिल्कुल,
13: हम बहादुर शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की औलाद हैं।
12: मेरे बच्चे,
0: मेरे बच्चे,
2: समय की ऐसी लाचारी टीपू सुल्तान की जिंदगी में पहली बार आई थी, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। इन 2 सालों में उसने अपनी बिखरी ताकत को जमा किया, नए सैनिक, नए हथियार जमा किए, अपने बचे हुए उजड़े राज्य को फिर से लहलहा दिया, और समय से पहले ही अपने बच्चों को छुड़ा लाया। अंग्रेज हैरान थे, वो तो इस ताक में थे कि टीपू अपना वादा तोड़े तो उसकी बाकी की जमीन वो हड़प जाएं, लेकिन एक बार फिर वो मात खा गए। अंग्रेजों ने मराठों और निजामों को भी आपस में उलझाकर उनकी लड़ाई करवा दी, और इधर टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाया कि वो फ्रांसीसियों से मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और फिर फरवरी सन 1799 में अंग्रेजों के सैनिक टीपू के राज्य की ओर फिर से कूच कर गए। उन्होंने टीपू के बार बार सुलह के पैगाम को नजरअंदाज कर लड़ाई शुरू कर दी। इस बार टीपू सुल्तान मेहताब बाग, जो राजधानी और किले का मुख्य द्वार था, वहां अपने ही विश्वास पात्र मीर सादिक के विश्वासघात का शिकार हो गया।
15: अरे उधर देखो, मीर सादिक रास्ता दिखा रहा है। चलो किले की उस टूटी दीवार के बीच से निकल जाओ, जल्दी जल्दी, क्विक, जल्दी किले के अंदर सैनिकों पर टूट पड़ो। चलो,
12: क्या फिरंगी सेना किले के अंदर? ये कैसे आई?
16: सुल्तान, मैंने मीर सादिक को किले की टूटी दीवार के पास चुपके से जाते देखा था, उसी ने ताकाबाजी की है सुल्तान।
12: हैं?
15: मीर सादिक,
17: मारो, मारो, मारो, मारो,
15: हमला।
16: सुल्तान को गोली लगी है।
15: टाइगर टीपू इज डेड।
2: और इस तरह शेरे मैसूर नूरे इस्लामुद्दीन टीपू सुल्तान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया।
4: गजबीये काका, वो ऊंचे दर्जे का सेनापति, वीर योद्धा, बहादुर, नेक दिल, जनता का प्रिय सुल्तान था। जब तक वो जिया उसने अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा, है ना?
2: हाँ महमूद, और जब तक टीपू सुल्तान जिया, स्वतंत्र जिया, टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया।
14: जय
18: हिंद,
14: जय हिंद।
19: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आप सभी को गौसिया खान का नमस्कार। और स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं
2: संदीप शर्मा। श्रोताओं, शब्दों के शिल्पकार वो व्यक्ति जो शब्दों को कला की तरह गढ़ता है, उन्हें इस तरह सजाता और संवारता है कि वे सीधे दिल और मन पर प्रभाव डालें। जब दुनिया शब्दों में खुद को ढूंढती है, जब कहानी इंसान की आत्मा को छूती है, तब कहीं जन्म लेता है एक ऐसा रचनाकार जो शब्दों को केवल लिखता नहीं, जो शब्दों को जीवंत कर देता है, जो एक युग गढ़ता है। वही सच्चा शब्दों का शिल्पकार होता है।
1: कभी शब्दों से चित्र बनाए जाते हैं, कभी चित्रों में शब्दों की आत्मा बसती है, और जब ये दोनों मिल जाएं तब जन्म होता है एक ऐसे कलाकार का जो समय से परे युगों तक अमर हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां शब्द चित्र बनते हैं और चित्र बोल उठते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महान रचनाकार की जिसने शब्दों और सिनेमा दोनों में अपनी अद्भुत छाप छोड़ी, और वह है सत्यजीत रे। एक नाम, एक युग और एक प्रेरणा।
2: सत्यजीत रे एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका नाम केवल भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े सेट, चमक दमक और मनोरंजन की कल्पना करते हैं, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसने सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समय का दर्पण बना दिया।
1: उन्होंने आम आदमी की जिंदगी, उसके संघर्षों, उसकी भावनाओं और उसके सपनों को इतनी सच्चाई से पर्दे पर उतारा कि पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करने लगी। सत्यजीत रे वास्तव में एक रचनाकार थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्ची कला वही होती है दोस्तों जो दिल को छू जाए, जो सोचने पर मजबूर कर दे और समाज को एक नई दिशा दे।
2: 2 मई 1921 को कलकत्ता की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी कल्पना में भविष्य की कहानियां सांस ले रही थी, जिसके हाथों में शायद कलम और कैमरा पहले से ही लिखे थे, और वो बालक था सत्यजीत रे। ये कोई साधारण परिवार नहीं था,
1: ये वो घर था जहां शब्दों की खुशबू बसती थी। दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी एक लेखक, प्रकाशक और कलाकार, पिता जिनकी कविताएं और हास्य आज भी बच्चों के दिलों में बसते हैं। शायद यही कारण था कि शब्द, चित्र और संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए।
2: लेकिन किस्मत ने जल्द ही उनके पिता सुकुमार रे को उनसे छीन लिया। रे को अपने पिता को जानने का अवसर ही नहीं मिला। छोटे सत्यजीत ने बचपन में ही जीवन की कठोर सच्चाइयों को महसूस किया। सत्यजीत रे को अपने पिता की बहुत कम यादें थी। हालांकि एक घटना जो रे को अपने पिता के बारे में स्पष्ट रूप से याद थी, वो तब की थी जब वे अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए कलकत्ता के उत्तरी उपनगर में स्थित एक छोटे से शहर सोदेपुर गए थे। जिस घर में वे ठहरे थे वो गंगा नदी के किनारे था और उसमें एक छोटा सा आंगन था। एक दिन उनके पिता खिड़की के पास बैठकर चित्र बना रहे थे। सत्यजीत ने उन्हें जोर से कहते सुना, देखो एक जहाज। जब सत्यजीत दौड़कर आंगन में आए तो उन्होंने एक स्टीमर को गुजरते देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने कोई जहाज देखा था।
1: आपको बताते हैं सत्यजीत रे के बचपन से जुड़ा एक रोचक किस्सा। रे का कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन इससे उन्हें संगति की कमी महसूस नहीं हुई। उनके पहले मित्रों में से एक उनकी घरेलू नौकरानी श्यामा का बेटा छेदी था। छेदी उनसे 5 साल बड़ा था और हमेशा उन्हें रे चौधरी कहकर पुकारता था, और वह पतंग उड़ाने में भी माहिर था।
2: श्रोता, विश्वकर्मा पूजा का त्योहार, जब मशीनों की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए पूजा की जाती है, और कलकत्ता में लगभग हर कोई पतंगबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, सत्यजीत के लिए वो विशेष रूप से रोमांचक था। पूजा वाले दिन सुबह सुबह छेदी सत्यजीत को साथ लेकर छत पर चढ़ गया और पतंगबाजी की प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया। सत्यजीत ने रील पकड़ी हुई थी और छेदी की पतंग आसमान में उड़ रही थी। हर बार जब छेदी प्रतिद्वंदी की पतंग काटकर उसे पकड़ लेता तो आस पड़ोस के घरों से खुशी की चीखें गूंज उठती, भोगता तुम्हारी पतंग छूट गई।
1: क्या बात है। उनके बचपन का एक और किस्सा आपको बताते हैं। आपको आइसक्रीम कैसी पसंद है, गर्म या ठंडी? आप सोचेंगे कैसा प्रश्न है, आप शायद तुरंत पूछेंगे, आइसक्रीम तो ठंडी होनी चाहिए। लेकिन युवा सत्यजीत रे के अनुसार ऐसा नहीं था दोस्तों। बचपन में सत्यजीत रे को आइसक्रीम का बहुत शौक था। एक दिन बुला काका और उनकी पत्नी उन्हें कलकत्ता बंदरगाह दिखाने ले गए। शिपयार्ड में अलग अलग रंगों और आकारों की नाव और जहाजों को लंगर डाले देखकर बच्चा बहुत उत्साहित हो गया।
2: और लौटते समय वे एक रेस्तरां में रुके। जब आइसक्रीम परोसी गई तो सत्यजीत उसे चखने के लिए बेताब हो गए। लेकिन आइसक्रीम का पहला चम्मच खाते ही उनके दांत में दर्द होने लगा। बच्चा अचानक अपनी सीट से उठा, आइसक्रीम परोसने वाले वेटर के पास दौड़ा और उससे कुछ फुसफुसाया। उसने जो कुछ भी कहा उससे वेटर को हंसी आ गई। फिर वो मेज पर आया और बताया कि बच्चे ने उससे आइसक्रीम गर्म करने का अनुरोध किया था।
1: क्या बात है, आधुनिक भारतीय कला के अग्रणी व्यक्तित्वों में से एक और कला भवन में रे के शिक्षक नंदलाल बोस ने एक बार रे से कहा था, एक पेड़ बनाओ लेकिन पश्चिमी शैली में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर नहीं बढ़ता। रेखाएं आधार से ऊपर की ओर होनी चाहिए। इससे रे को ये एहसास हुआ होगा कि कला भी जीवन की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होनी चाहिए।
2: अपने तीन मित्रों के साथ उन्होंने भारत के कलात्मक स्थलों का दौरा भी किया। इस दौरे ने उनका ध्यान भारतीय कला में प्रतीकात्मकता की ओर आकर्षित किया, उन छोटे छोटे विवरणों की ओर जो गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। एक ऐसा गुण जो उनकी फिल्मों में बखूबी प्रदर्शित हुआ।
1: सत्यजीत रे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी दृष्टि। बचपन से ही उन्हें कला के प्रति गहरी रुचि थी। वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। जहां दूसरों की भीड़ दिखती थी, वहीं उन्हें कहानी नजर आती थी।
2: और फिर आया वो समय जब उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, जहां कला, संगीत और साहित्य एक साथ सांस लेते हैं। यहीं से उनके भीतर का कलाकार पूरी तरह जाग उठा और यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो उन्हें ले गया सिनेमा की दुनिया में।
1: ४९४३ में रे ने शांति निकेतन छोड़ दिया और कलकत्ता वापस आ गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश विज्ञापन अभिकरण डीजे केमर में नौकरी शुरू कर दी। इनके पद का नाम लघु दृष्टा जूनियर विजुअलाइजर था और महीने के केवल ₹80 का वेतन मिलता था। हालांकि दृष्टि रचना राय को बहुत पसंद थी और उनके साथ अधिकतर अच्छा ही व्यवहार किया जाता था, लेकिन एजेंसी के ब्रिटिश और भारतीय कर्मियों के बीच कुछ खिंचाव रहता था, क्योंकि ब्रिटिश कर्मियों को ज्यादा वेतन मिलता था।
2: 1943 के लगभग ही ये डीके गुप्ता द्वारा स्थापित सिग्नेट प्रेस के साथ भी काम करने लगे। गुप्ता ने रे को प्रेस में छपने वाली नई किताबों के मुखपृष्ठ रचने को कहा और पूरी कलात्मक मुक्ति दी। रे ने बहुत सी किताबों के मुखपृष्ठ बनाए, जिनमें जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, यानी कुमाऊं के नरभक्षी, और जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। इन्होंने बांग्ला के जाने माने उपन्यास पाथेर पांचाली के बाल संस्करण पर भी काम किया, जिसका नाम था आम की गुठली की सीटी। रे इस रचना से बहुत प्रभावित हुए और अपनी पहली फिल्म इसी उपन्यास पर बनाई। मुखपृष्ठ की रचना करने के साथ ही उन्होंने इस किताब के अंदर के चित्र भी बनाए। इनमें से बहुत से चित्र उनकी फिल्म के दृश्यों में दृष्टिगोचर होते हैं।
1: रे ने दो नए फॉन्ट भी बनाए, रे रोमन और रे बिजार। रे रोमन को 1970 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिला। कलकत्ता में रे एक कुशल चित्रकार माने जाते थे। रे अपनी पुस्तकों के चित्र और मुखपृष्ठ खुद ही बनाते थे और फिल्मों के लिए प्रचार सामग्री की रचना भी खुद ही इकट्ठा करते थे। भारत में सत्यजीत रे पर कई वृत्तचित्र फिल्में बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख हैं भगवान दास गर्गा द्वारा निर्देशित क्रिएटिव आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे 1964 और श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित सत्यजीत रे 1982, उत्पलेंदु चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित द म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे 1984 और गौतम घोष द्वारा निर्देशित रे लाइफ एंड वर्क ऑफ सत्यजीत रे 1999, 2016 में फिल्म डबल फेलुदा की शूटिंग के दौरान सत्यजीत के बेटे संदीप ने अपने पिता के पुस्तकालय का वीडियो भी बनाया था।
2: लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का संगम था ये। आर्थिक चुनौतियां सामने थी, उन्होंने विज्ञापन कंपनी में काम किया, डिजाइन बनाए, लेकिन उनका मन कहीं और ही था, उनका मन था सिनेमा में। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों का अध्ययन किया, किताबें पढ़ी और सिनेमा की बारीकियों को समझा। इसी दौरान उन्होंने एक उपन्यास पाथेर पांचाली पढ़ा, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।
1: सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाई। ये फिल्म बनाना आसान नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन सीमित थे और कोई बड़ा स्टार भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी दोस्तों, उनका जुनून और उनका विश्वास। इस फिल्म में साधारण गांव के गरीब परिवार की कहानी असाधारण संवेदनाओं के साथ दिखाई गई है। इस फिल्म में समाज की वास्तविकता को दर्शाया गया है।
2: और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और पूरी दुनिया ने भारतीय सिनेमा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। इस फिल्म की सादगी और यथार्थता ने हर किसी का दिल जीत लिया और ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म केवल फिल्म नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा का पुनर्जन्म थी।
1: इसके बाद आई अपराजितो और अपूर्व पुरुषसंगसार। इन तीनों फिल्मों को मिलाकर अपूर्व त्रयी कहा जाता है, जो आज भी विश्व सिनेमा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। ये त्रयी एक बच्चे के बचपन को लेकर उसके युवा अवस्था तक की कहानी को दर्शाती है। इसमें जीवन के हर पहलू, खुशी, दुख, संघर्ष और सपनों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई और अपनी रचनात्मकता से नई दिशा प्रदान की।
2: श्रोताओं, फिल्मों के अलावा सत्यजीत रे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। वे शब्दों के जादूगर थे। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए कई लोकप्रिय कहानी भी लिखी। सत्यजीत रे ने फेलुदा नाम के एक जासूस की कहानियों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें बादशाही, अंगती, गोलोक धाम रहस्य जैसी प्रसिद्ध रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शोंकू श्रृंखला में एक वैज्ञानिक प्रोफेसर शोंकू और एलियन जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनकी पुस्तकों का अंग्रेजी, जर्मन, पोलिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
1: फेलुदा नामक जासूसी पात्र और प्रोफेसर शोंकू जैसे वैज्ञानिक चरित्र आज पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके लिखने में रोमांच, ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कहानी हर दिल को छू जाती थी। हर शब्द में एक गहराई और एक कहानी में संदेश छिपा होता था।
2: रे ने कभी भी इस गाथा शैली को नहीं अपनाया। उनकी बाद की फिल्में समय के साथ अधिक केंद्रित होती गईं, जिनमें पारंपरिक कथा के बजाय मनोविज्ञान पर जोर दिया गया। उन्होंने जानबूझकर खुद को दोहराने से भी परहेज किया। परिणाम स्वरूप उनकी फिल्में परिवेश, काल और शैली की एक असाधारण रूप से विस्तृत श्रृंखला को समेटे हुए हैं, जिनमें हास्य, त्रासदी, प्रेम कहानियां, संगीत और जासूसी कहानियां शामिल हैं, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक बंगाली समाज के सभी वर्गों को दर्शाती हैं। हालांकि रे के अधिकांश पात्र औसत दर्जे की क्षमता और प्रतिभा वाले हैं, उनकी वृत्तचित्र फिल्मों के विषयों के विपरीत, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर 1961 और दी रनर आई 1972 शामिल हैं। रे को अंतरात्मा से ग्रस्त व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और भ्रष्टाचार ने आकर्षित किया। उनकी फिल्में मुख्य रूप से क्रिया और कथानक के बजाय विचार और भावना से संबंधित हैं। रे की कुछ बेहतरीन फिल्में उपन्यासों या अन्य रचनाओं पर आधारित थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो निर्देशक पर प्रमुख रचनात्मक प्रभाव थे, उनकी रचनाओं में चारुलता 1964 शामिल है। द लोनली वाइफ, जो 1879 में एक धनी पश्चिमी प्रभाव वाले बंगाली परिवार में घटित एक दुखद प्रेम त्रिकोण की कहानी है, शायद रे की सबसे उत्कृष्ट फिल्म है। तीन कन्या, महिलाओं के बारे में लघु फिल्मों की एक विविधतापूर्ण त्रयी है। जबकि घरे बाइरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1907-08 में स्थापित बंगाल के पहले क्रांतिकारी आंदोलन का एक गंभीर अध्ययन है।
1: रे की हिंदू रूढ़िवादिता और सामंती मूल्यों पर आधारित प्रमुख फिल्मों में जलसाघर 1958 शामिल है, जो संगीत के प्रति एक व्यक्ति के जुनून का भावपूर्ण चित्रण है। देवी 1960, जिसमें जुनून एक लड़की के दिव्य अवतार के प्रति है। सदगति 1981, जो जाति व्यवस्था पर एक सशक्त प्रहार। और कंचनजंगा 1962 रे की पहली मौलिक पटकथा और पहली रंगीन फिल्म जो धनी पश्चिमीकृत बंगाली लोगों के बीच निर्धारित विवाह का सूक्ष्म अन्वेषण है। शतरंज के खिलाड़ी 1977 रे की हिंदी भाषा में बनी पहली फिल्म जो अपेक्षाकृत बड़े बजट से बनाई गई थी, भारत पर पश्चिम के प्रभाव की और भी सूक्ष्म पड़ताल करती है। सन 1856 में भारतीय विद्रोह से ठीक पहले लखनऊ में घटित ये कहानी शासक वाजिद अली के अंग्रेजों के हाथों पतन को उत्कृष्ट व्यंग और करुणा के साथ दर्शाती है।
2: श्रोताओं, रे की बाकी प्रमुख रचनाएं 1943 से 44 के बंगाल अकाल की उनकी मार्मिक कहानी एहसानी संकेत, 1973 दूर की गड़गड़ाहट को छोड़कर मुख्य रूप से कलकत्ता और आधुनिक कलकत्ता वासियों से संबंधित हैं, अरण्येर दिन रात्रि जो कि 1970 में प्रदर्शित हुई थी, इसमें चार युवकों के शहरी रीति रिवाजों से बचने के प्रयास में ग्रामीण यात्रा पर जाने और असफल होने का वर्णन है, 1963 में आई महानगर और 1970 के दशक में बनी फिल्मों की त्रयी प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जन अरण्य, क्रांतिकारी माओवादी हिंसा, सरकारी दमन और कपटपूर्ण भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि में मध्यम वर्ग के रोजगार के संघर्ष की पड़ताल करती हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद जिसमें रे ने पी को 1980 में बनाई और फिर हृदय रोग से बीमार पड़ गए, वे समाज में भ्रष्टाचार के विषय पर लौट आए। हेनरिक इब्सन के नाटक का भारतीय रूपांतरण गणशत्रु 1989, शाखा प्रशाखा 1990 और उत्कृष्ट आगंतुक 1991 अपने सशक्त पुरुष केंद्रीय पात्रों के साथ रे के स्वयं के व्यक्तित्व के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनके प्रिय बंगाल के बौद्धिक और नैतिक पतन के खिलाफ दृढ़ता से विरोध करते हैं।
1: रे ने 1982 में आत्मकथा लिखी जखन छोटो छिलम, जब मैं छोटा था, उनके बचपन की यादों, अनुभवों और शुरुआती जीवन का एक संस्मरण। ये पुस्तक उनके शुरुआती जीवन, पारिवारिक माहौल और उन घटनाओं का वर्णन करती है जिन्होंने उन्हें एक महान फिल्म निर्माता के रूप में ढाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों के विषय पर कई पुस्तकें लिखी जिनमें से प्रमुख हैं आर फिल्म्स, देयर फिल्म्स। 1976 में प्रकाशित इस पुस्तक में रे की लिखी आलोचनाओं का संकलन है। इसके पहले भाग में भारतीय सिनेमा का विवरण और दूसरा भाग हॉलीवुड पर केंद्रित है।
2: श्रोताओं, सत्यजीत रे ने बांग्ला भाषा में लिखा जो उनकी मातृभाषा थी। सत्यजीत रे को बांग्ला साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाएं न केवल बांग्ला पाठकों में बल्कि देश विदेश में भी बहुत लोकप्रिय है। उनकी शैली सरल, स्पष्ट और आकर्षित थी जो पाठकों को आसानी से अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी रचनाओं में विज्ञान, रहस्य और रोमांच का अद्भुत मिश्रण था।
1: दोस्तों, सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ वे एक लेखक, संगीतकार और चित्रकार भी थे। फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही किया करते थे, जैसे पटकथा लिखना, अभिनेता ढूंढना, पार्श्व संगीत लिखना, चलचित्रण, कला निर्देशन, संपादन और प्रचार सामग्री की रचना करना। फिल्में बनाने के अतिरिक्त वे कहानीकार, प्रकाशक, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे।
2: उन्होंने अपनी फिल्मों का संगीत भी स्वयं तैयार किया। ये बहुत दुर्लभ बात है कि एक व्यक्ति इतनी सारी विधाओं में निपुण हो। उनकी फिल्मों में आम आदमी के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी भावनाओं को बहुत ही सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे को पहेलियों और बहुअर्थी शब्दों के खेल से बहुत प्रेम था। इसे इनकी कहानियों में भी देखा जा सकता है।
1: सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी। उनकी फिल्मों में शोर नहीं था लेकिन गहराई थी। उनकी कहानियों में दिखावा नहीं था लेकिन सच्चाई ये थी कि वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी फिल्मों में आम आदमी की जिंदगी को इतनी सादगी और गहराई से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक खुद को उसमें देख पाता है।
2: दोस्तों, सत्यजीत रे ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। उन्होंने ये साबित किया कि सिनेमा मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनकी फिल्मों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया।
1: सत्यजीत रे केवल एक फिल्म निर्देशक नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक युग और एक प्रेरणा थे। उनकी कला आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची रचनात्मकता सीमाओं से परे होती है।
2: श्रोताओं, उनकी पहली ही फिल्म को तकरीबन एक दर्जन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे चार्ली चैपलिन के बाद सिनेमा से जुड़े अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1987 में फ्रांस के लेंजो द ओनू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने उनकी विरासत को मान्यता देते हुए 2021 में अपने वार्षिक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया।
1: सन 1992 में एकेडमी ऑनररी अवार्ड ऑस्कर भी प्रदान किया गया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। ये सम्मान उनके अद्वितीय योगदान का प्रमाण है, लेकिन असली सम्मान तो वह है दोस्तों जो लोगों के दिलों में बसता है, और सत्यजीत रे आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है।
2: अपने पूरे करियर में बनाई गई कुल 3 दर्जन फिल्मों के लिए उन्हें 32 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। ये मुख्तसर सा बायोडेटा दुनिया के चलचित्र पर भारतीय फिल्मों को स्थापित करने वाले उस फिल्मकार का है जिन्हें करीब से जानने वाले माणिकदा के नाम से और दुनिया सत्यजीत रे के नाम से पहचानती है।
1: आखिर ऐसा क्या था सत्यजीत रे के काम में जिसे पूरी दुनिया ने जाना और सराहा, जिसके लिए महान जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा यहाँ तक कह बैठे कि रे की फिल्मों को देखे बिना रहना चांद और सूरज को देखे बिना रहने जैसा है।
2: वाह दोस्तों, सत्यजीत रे के जीवन से जुड़ी खास बात यह भी है कि वे सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके काम करते थे। जब वे किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते तो वो अपने साहित्य कार्यों, चित्रकला, पटकथा लेखन और संगीत में व्यस्त रहते थे। वे जानते थे कि खुद को कैसे व्यस्त रखना है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए रचनात्मक कार्यों का एक विशाल भंडार छोड़ा है जिसका वे भरपूर आनंद उठा सकेंगे। शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्देशक हो जिसने इतने विविध विषयों पर इतनी उच्च कोटि की रचनाएं की हों। रे का लेखन समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। रे को समझने के लिए उनकी लेखन क्षमता, उनके संगीत और चित्रकार रे को समझना आवश्यक है।
1: उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं जिन्हें हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक किस्सा हम आपको बताते हैं। ये उनकी मृत्यु से महज 3-4 साल पहले की बात है। एक बार एक इंडोर सेट पर वे दो मशहूर अभिनेताओं को निर्देशित कर रहे थे। कमरे में मची अफरा तफरी के बीच भी वे पूरी तरह शांत थे, चुपचाप कैमरे वालों को ध्यान से देख रहे थे और सेट में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए कह रहे थे।
2: उनके आसपास के लोग उनसे काफी छोटे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने बीच मौजूद उस महान व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शायद ही कभी बोलते या दखल देते थे, लेकिन जैसे ही शूटिंग का समय नजदीक आता वे कमान संभाल लेते और सटीक निर्देश देते। अचानक पूरा मंच जीवंत हो उठता, सब लोग सजग हो जाते। वे धीरे धीरे अभिनेताओं की गतिविधियों को निर्देशित करते, संवाद बोले जाते, शॉट लिए जाते और बस कोई दोहराव नहीं। अभिनेताओं को रे के निर्देश इतने कोमल, इतने सच्चे थे कि आप दंग रह जाते हैं।
1: उन्हें सेट पर निर्देशन करते देखना रे के बारे में कई निबंधों से कहीं अधिक जानकारी देता है। वे सेट पर किसी भी तरह की लापरवाही के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एक बार उत्तम कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे सबसे शांत और गंभीर अभिनेताओं में से एक थे जो उनकी ही तरह अभिनय से पहले पूरी तरह मौन रहते थे।
2: सत्यजीत रे का जीवन हमें यहाँ सिखाता है कि यदि हमारे अंदर जुनून, मेहनत और सच्चाई है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने काम के माध्यम से यह दिखाया कि सच्ची कला वही है जो दिल को छू जाए और समाज को एक नई दिशा दे। आज भी जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो हमें केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन भी दिखाई देता है। वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी कला हमेशा अमर रहेगी।
1: सिनेमा केवल चित्रों का खेल नहीं है, भावनाओं की भाषा है, और इस भाषा के महान शिल्पकार थे सत्यजीत रे। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे का निधन हो गया, लेकिन उनका काम आज भी जीवित है।
2: सत्यजीत रे का अध्ययन बेहद ज्ञानवर्धक हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन अगले ही पल इस कठोर वास्तविकता का दुखद एहसास हो जाता है।
1: उनकी फिल्में, उनकी कहानी, उनका संगीत आज भी हमें प्रेरित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। सत्यजीत रे का जीवन हमें यह सिखाता है दोस्तों कि सच्ची सफलता वही है जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज में कुछ नया और बेहतर दे सके।
2: उन्होंने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। हमें सत्यजीत रे जैसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में मेहनत, लगन और रचनात्मकता को अपनाना चाहिए। वे केवल लेखक नहीं थे, वे केवल निर्देशक नहीं थे, वो थे शब्दों के शिल्पकार। तो श्रोताओं, आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में बात यहीं तक। अगली बार किसी और शब्द शिल्पी की जिंदगी के डायरी के पन्ने पलटेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन वनीता जैन। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
1: और मैंने यानी खौसिया खान ने।
2: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद मन ही मन विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन दिनों वे हैदराबाद में थे। वहां कई उल्लेखनीय घटनाएं घटी थी जिनकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। एक और अद्भुत घटना का विवरण प्रस्तुत है।
1: हैदराबाद में उन्हें एक योगी का दर्शन हुआ था जो अद्भुत यौगिक शक्ति से संपन्न थे। संसार का त्याग कर गहन योगाभ्यास करने के फलस्वरूप अनेक योगिक ज्ञान से संपन्न हो गए थे। स्वामी जी ने मित्रों के साथ योगी के निकट आकर देखा कि वे प्रबल ज्वर से शय्याग्रस्त थे। सन्यासी को आते देखकर श्रद्धावान योगी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बैठाया तथा सन्यासी के शारीरिक लक्षणों को देखकर योगी समझ गए कि वे उच्च आध्यात्मिक शक्ति के धनी हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि वे उनके मस्तक पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दें जिससे ज्वर उतर जाएगा। स्वामी जी का उस समय का मनोभाव चाहे जो भी रहा हो, किंतु मामला क्या है इसे देखने के लिए कौतूहलवश उन्होंने योगी के माथे पर हाथ फिरा दिया और योगी भी तत्काल उठ बैठे। तब स्वामी जी ने उन्हें कहा, आपको मुझे अपनी सिद्धियां दिखानी होंगी। योगी के सहमत होने पर उन्हीं की इच्छा के अनुसार स्वामी जी और उनके साथियों ने योगी के शरीर से वस्त्र आदि हटा दिए और अपने ही एक कंबल से उन्हें ढक दिया। योगी कमरे के कोने में बैठ गए और 25 जोड़ी आंखें उन पर टिक गईं। योगी ने कहा,
2: तुम लोगों को जो भी चाहिए एक कागज पर लिख दो।
1: उस इलाके में उन दिनों जो फल नहीं फलते थे, ऐसे सारे फलों के नाम उन लोगों ने कागज पर लिख डाले, यानी अंगूर, संतरा आदि। लिखने के बाद कागज के वे टुकड़े योगी को दे दिए गए। तब वे कंबल के भीतर से हरेक की फरमाइश के मुताबिक फल बाहर निकालने लगे। इतने फल इकट्ठे हो गए कि वे योगी के शरीर के वजन से दुगने होंगे। उन फलों को उन्होंने लोगों को खाने को कहा, किंतु मेहमानों को खाने में संकोच करता देख उन्होंने स्वयं खाना शुरू किया। तब दूसरे लोगों ने उन फलों को मुख में डालकर देखा कि वे बड़े स्वादिष्ट और असली फल थे। अंत में उन्होंने गुलाब के फूलों को कंबल से बाहर निकाला। वे निर्मल और ताजे थे तथा उनकी पंखुड़ियों पर उसके बिंदु पड़े थे। स्वामी जी ने पूछा,
3: ये सब कैसे संभव हुआ योगी जी?
2: सब हाथ की सफाई है।
1: कैलिफोर्निया

और खोलने को कहने पर यथा समय उसे खोले। वहां उपस्थित अन्य लोगों को भी उसने वैसा ही कागज दिया और उसी प्रकार रख लेने को कहा। अंत में उसने कहा, आप लोग किसी भी भाषा में सोचे। स्वामी जी ने संस्कृत में सोचा। वो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता था। सोचने के बाद उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, जेब से कागज निकाल कर देखिए। स्वामी जी ने देखा, उन्होंने अभी अभी जो बात सोची थी उस व्यक्ति ने उसे पहले से ही जानकर संस्कृत में लिख रखा था। दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अनेक लोगों ने ऐसी भाषा में सोचा था जिसे वो व्यक्ति नहीं जानता था, किंतु उस व्यक्ति ने पहले से ही सब जानकर उन्हीं भाषाओं में लिख रखा था।

0: हैदराबाद पर्व समाप्त कर स्वामी जी मद्रास लौट गए। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, अमेरिका जाने का विचार त्यों त्यों बढ़ने लगा। उनकी आशा और उत्साह ने भक्तों को भी उत्साहित कर दिया एवं वे लोग फिर से धन संग्रह में जुट गए। मार्च और अप्रैल महीने में धन संग्रह करने के लिए भक्तगण ज्यादा परिश्रम करने लगे। यहाँ तक कि इसी उद्देश्य से कई लोग मैसूर, रामानंद और हैदराबाद भी गए।
1: धन संग्रह करने वालों में प्रमुख थे आला सिंगा पेरुमाल। उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगी। वे लोग साधारण जनता से ही पैसे मांग रहे थे, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया था कि
2: यदि माँ की इच्छा होगी कि मुझे जाना होगा तो मेरे लिए आवश्यक धन गरीबों से आवे, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता और दरिद्रों के लिए ही विदेश जा रहा हूं।
1: किंतु यात्रा के बारे में वे उस समय तक अपने अंतर्द्वंद से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे, पर लोगों का उत्साह देखकर उन्हें लगा शायद यही मां की सम्मति है। इसी मानसिक दुविधा की स्थिति से वे गुजर रहे थे कि एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव समुद्र के ऊपर से पैदल उस पार चले जा रहे हैं और उन्हें इशारा कर उनके पीछे आने का संकेत दे रहे हैं। निद्रा भंग होने पर उनका मन एक निर्मल प्रशांति से भर उठा। उनके कानों में तब भी गूंज रहा था गुरुदेव के शब्द, जाओ। इस अलौकिक अनुभव को उन्होंने ईश्वर निर्देश के रूप में ग्रहण किया। उनके संदेह और अनिश्चितता दूर हो गई और फालतू के डर से भी उन्हें मुक्ति मिल गई।
0: यात्रा के आयोजन पूरे होते जा रहे थे तभी अचानक खेत्री नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल मद्रास में उपस्थित हुए। उन्होंने संवाद दिया कि जब पिछली बार स्वामी जी खेत्री गए थे, उन्होंने महाराजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप महाराजा को पुत्र प्राप्ति हुई है। उसी आनंद उत्सव में उपस्थित होकर उन्हें शिशु को आशीर्वाद देना है, इसीलिए वे स्वामी जी को लिवाने आए हैं।
2: देखो जगमोहन, एक महीने बाद 31 मई को मुझे अमेरिका जाना है। इस वक्त मैं खेतड़ी कैसे जा सकता हूँ?
3: स्वामी जी, कम से कम एक दिन के लिए भी आपको खेतड़ी तो जरूर चलना होगा, अन्यथा राजा जी निराश और दुखी हो जाएंगे। और फिर अमेरिका जाने के लिए आप चिंता ना करिए, महाराजा स्वयं सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु आपको चलना ही होगा।
0: हार मानकर स्वामी जी ने सहमति दे दी और जगमोहन के साथ रवाना हो गए। वे दोनों रेवाड़ी के रास्ते 21 अप्रैल को खेतड़ी पहुंचे। वे वहां 9 मई तक थे और 10 मई को जगमोहन जी के साथ बंबई चले गए।
1: खेतड़ी में उत्सव का माहौल था। राजकुमार जयसिंह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तालाब के किनारे नाच गाना नौका विहार चल रहा था। राजा ने स्वामी को प्रणाम कर स्वागत किया। राजा के साथ स्वामी जी हाथी पर सवार होकर महल में पहुंचे और भोज में सम्मिलित हुए। बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उन्हें ड्योढ़िया रनिवास में ले जाया गया, जहां उन्होंने राजकुमार को देखकर आशीर्वाद दिया।
0: खेतड़ी में एक मर्मस्पर्शी घटना घटी थी। एक शाम एक नर्तकी गाने गाकर राजा का मनोविनोद कर रही थी। स्वामी जी अपने कमरे में थे। राजा ने उन्हें बुलवाया, पर वे ये कहकर नहीं गए कि सन्यासियों को इस प्रकार की सभा में जाना उचित नहीं। ये सुनकर गायिका अत्यंत दुखी हो गई और अपना दर्द व्यक्त करने के लिए उसने गाना शुरू किया। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अब मोहि पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवई, कंचन करत खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। गाने को स्वामी जी ने अपने कमरे में बैठकर सुना। उन्हें लगा जैसे गायिका गाने के द्वारा उन्हें याद दिला रही है कि संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। सभी वस्तुओं के पीछे एक अभिन्न ब्रह्म सत्ता विराजित है। यहाँ तक कि एक घृणित गणिका में भी वे ही विद्यमान हैं। स्वामी जी जैसे होश में आए और तुरंत उठकर सभा में जा बैठे। इस घटना का उल्लेख कर उन्होंने स्वयं कहा था,
2: गीत सुनकर मेरे मन में आया कि क्या यही मेरा सन्यास है। मैं सन्यासी हूँ, तथापि मुझ में और इस नारी के बीच मेरा भेद ज्ञान बचा रह गया है। उस घटना से मेरी आंखें खुल गई। समस्त वस्तुएं उस एक ही सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। ये जानकर मैं फिर किसी की निंदा करने से तो रहा।
1: दस मई को स्वामी जी राजकीय रथ पर सवार होकर खेतड़ी से रवाना हुए। जगमोहन जी साथ थे। दोनों आबू रोड होकर बंबई जा रहे थे। स्वामी जी का मन तब भी उदास था। उनके मन में उस गायिका का गीत गूंज रहा था। आबू रोड में उनकी मुलाकात स्वामी तुरियानंद से हुई। स्वामी जी ने उनको सारी घटना सुनाई। तुरियानंद ने अपने संस्मरण में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है।
4: मैंने स्वामी जी से मिलने आकर देखा कि वे इतने गंभीर होकर बरामदे में एकाकी टहल रहे हैं कि मेरे आगमन का उन्हें भान ही नहीं हुआ। उनके चिंतन में कहीं बाधा न पड़े, इस भय से मैं चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन गुनगुनाने लगे। फिर ठहर कर उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रेलिंग का सहारा लेकर झुक गए। फिर विषाद भरे स्वरों में उन्होंने गाया,
2: मेरू

घायल की गति घायल जाने, घायल की गति

0: इस वेदनापूर्ण गीत से मानो आकाश पाताल कांप रहे थे। उनकी स्वर लहरी मेरे मन में तीर की भांति चुभ गई और मेरी आंखें भी सजल हो उठी थी। स्वामी जी के दुख का कारण नहीं जान पाने से मैं बड़ा व्याकुल हो रहा था, किंतु थोड़ी देर बाद मैं समझ गया कि संसार में दुखियों और पीड़ितों के दुख को महसूस करने के कारण ही उनकी ये तीव्र व्यथा है।
1: आबू रोड स्टेशन से रेल पर सवार होते समय एक अप्रिय घटना घटी। गाड़ी में एक रेल कर्मचारी स्वामी जी से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक अंग्रेज टिकट परीक्षक आए और उन सज्जन को उतर जाने को कहा, पर वे रेल के कर्मचारी थे अतः बहस करने लगे। स्वामी जी ने जब बहस बंद कराने की कोशिश की तो वो अंग्रेज साहब चिढ़ गए और कठोर भाव से स्वामी जी को कहा,
2: ए, तुम क्यों बात करता आए?
1: उन्होंने स्वामी जी को साधारण साधु समझकर उन्हें डांट कर चुप कराना चाहा, परंतु स्वामी जी अंग्रेजी में गरज उठे,
3: तुम कैसे कह रहे हो? उच्च श्रेणी के यात्री से कैसे बोलना चाहिए नहीं जानते? आप नहीं कह सकते?
2: सॉरी, गलती हो गई। मैं इंदे अच्छी तरह नहीं जानता। मैं तो सिर्फ उसका आदमी।
3: तुम सिर्फ हिंदी भाषा नहीं जानते ऐसा नहीं, तुम तो अपनी भाषा भी नहीं जानते। ये आदमी क्या होता है सज्जन नहीं कह सकते? अपना नाम और नंबर बताओ, मैं शिकायत करूंगा।
1: अंग्रेज साहब माहौल खराब होते देख चुपचाप उतर गए। स्वामी जी बोले,
3: इन यूरोपियनों के साथ व्यवहार करते समय आत्म मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारे सर पर सवार हो जाते हैं, अपमान करते हैं। शिक्षा और सभ्यता में हम किसी भी जाति से हीन नहीं हैं, पर हम अपने को हीन मानते हैं। तभी तो एक साधारण सा विदेशी हमें डंडा और चांटा मारता है और हम उसे चुपचाप सह लेते हैं।
4: आबू रोड से स्वामी जी और मुंशी जगमोहन लाल बंबई पहुंचे। स्टेशन पर आला सिंगा उपस्थित थे। वे स्वामी जी को जहाज पर चढ़ा देने के लिए मद्रास से आए थे। खेतड़ी के राजा ने भी मुंशी जी को स्वामी जी के लिए हर तरह की व्यवस्था कर देने को कह दिया था, ताकि वे राजगुरु की मर्यादा के साथ यात्रा कर सके। अतएव स्वामी जी की आपत्ति के बावजूद मुंशी जी ने स्वामी जी के लिए रेशमी कपड़े की पोशाक, अलखल्ला और पगड़ी बनवा दी, साथ ही कुछ अर्थराशि भी दी तथा पेनिनसुलर एंड ओरिएंट कंपनी की एक प्रथम श्रेणी की टिकट खरीद दी और उस कंपनी के पेनिनसुलर नामक जहाज पर बिठा दिया।
1: वो 1893 ईस्वी की 31 मई का दिन था। स्वामी जी उस समय आशा और भयपूर्ण हृदय से जहाज के डेक पर खड़े होकर मित्रों से विदा ले रहे थे। आशा ये कि इतने दिनों बाद उनका स्वप्न वास्तविकता में बदलने जा रहा है। वे सचमुच भारत के संदेश का प्रचार कर स्वदेश और विदेश का कल्याण साधन करेंगे और भय ये कि अनजाने देश में अपरिचित परिवेश के बीच पता नहीं उन्हें कितनी आपदाओं विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। एक लंबी अवधि के लिए इतने बंधु बांधवों को छोड़कर जाने में दुख भी कम नहीं होता। मित्रों का हृदय भी उस समय सुख दुख से फूल रहा था। उन लोगों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप आज स्वामी जी सचमुच देश का मुख उज्जवल करने विदेश चले। रेशम का अलखल्ला और पगड़ी धारण किए हुए स्वामी जी किसी राजा या महाराजा की भांति प्रतीत हो रहे थे तथा लग रहा था कि ऐसे निर्भीक हृदय वीर अवश्य ही विश्व विजयी होंगे। लोग ये भी जानते थे कि स्वामी जी का बाहरी स्वरूप चाहे जैसा भी क्यों न हो, वे एक चिर सन्यासी, चिर वैरागी हैं। पश्चिमी जगत के ऐश्वर्य आदि के बीच भी उनके वचन और जीवन से भारत का आध्यात्मिक संदेश ही ध्वनित और घोषित होगा। तथापि ठीक विदा के क्षण सबकी आंखें नम हो गईं। अब दीर्घ काल तक उनका दर्शन जो न हो सकेगा। भक्तों ने अंत में समुद्र के तट पर साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्हें विदा दी। स्वामी जी भी रेलिंग के किनारे खड़े होकर जब तक देखा जा सकता था तब तक उन लोगों की ओर एकटक देखते रहे। जहाज धीरे धीरे दूर समुद्र में तैरने लगा। मित्रगण धीरे धीरे आंखों से ओझल होने लगे। परिचित लोगों में से साथ में रह गए एकमात्र बैरिस्टर छबिलदास, जिनके घर में स्वामी जी पहले एक बार ठहरे थे। छबिलदास अपने निजी काम से जा रहे थे, वो रास्ते में उतर गए।
4: विदेश यात्रा से पहले स्वामी जी के मन में अपनी माँ की और परिवार की चिंता थी, उनका गुजारा कैसे होगा। अपनी ये चिंता उन्होंने खेतड़ी महाराज को कही भी थी। खेतड़ी नरेश ने उनकी चिंता दूर करने की जिम्मेदारी भी ली थी। वे आजीवन स्वामी जी की माँ को प्रतिमाह 100 रुपये भेजते थे। राजा के देहांत के बाद भी वे रुपये भेजे जाते थे।
1: कुछ लोगों की धारणा है कि उनके अमेरिका जाने का खर्चा खेतड़ी के महाराजा ने दिया था, पर यह बात नहीं थी। उन्होंने केवल खेतड़ी से बंबई जाने का रेल भाड़ा दिया था। अमेरिका जाने का खर्च मद्रास के लोगों ने चंदा करके इकट्ठा किया था, वो लगभग 4,000 रुपये था। कुछ लोगों ने अपनी जायदाद बेचकर रुपए दिए थे। रामनाथ के राजा ने भी मदद की थी। खेतड़ी जाने से पहले ही जहाज में उनकी बर्थ रिजर्व हो चुकी थी। धन एकत्र करने के पहले तो स्वामी जी ने यह भी कहा था कि वे अफगानिस्तान के रास्ते पैदल अमेरिका जाने को तैयार हैं।
4: आपको याद होगा कि स्वामी जी का नाम विवेकानंद खेतड़ी के महाराज ने रखा था। इस नाम से उनके सहयोगी रामकृष्णानंद और स्वामी शिवानंद भी परिचित थे। स्वामी जी के मद्रास के मित्रगण भी जानते थे। यहाँ तक कि कलकत्ते में भी श्री शारदा माँ को और उनके गुरु भाइयों को ये नाम पता था। हाँ, बम्बई में कुछ लोग जरूर उन्हें सचिदानंद के नाम से जानते थे।
1: स्वामी जी के विदेश यात्रा के संबंध में उनके एक शिष्य ने उनकी यात्रा की तैयारी के बारे में लिखा है।
5: परिव्राजक के रूप में उन्होंने एक एक कर बौद्ध और जैन धर्म का सार एवं रामानंद और दयानंद के विचारों के गूढ़ अर्थ को समझ लिया था। उन्होंने निश्चल दास और तुलसीदास के ग्रंथों का पूरे मनोयोग से अध्ययन किया था। महाराष्ट्र के महापुरुषों और दक्षिण भारत के अलवारों एवं नायनारों के संबंध में उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। परमहंस परिव्राजक से लेकर लाल गुरु के शिष्यों तक सबकी आशा आकांक्षा और आदर्श से तो वे परिचित थे ही, साथ ही उन लोगों के संप्रदायगत इतिहास आदि भी जानते थे। उनकी पारदर्शी दृष्टि में मुगलों की प्रधानता भारत के इतिहास में एक अस्थाई छुटपुट घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विचारों की उदारता, एकता और साहसिकता की दृष्टि से अकबर हिंदू थे। उनकी दृष्टि में ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना शकुंतला काव्य के अतिरिक्त क्या और कुछ था। उनके कंठ से मीराबाई और तानसेन के गीतों के बीच बीच में गुरु नानक के भजन भी गूंजते सुनाई पड़ते थे। चित्तौर, राणा प्रताप, शिव और उमा, राधा और कृष्ण, सीता और राम तथा बुद्ध की कथा का वर्णन करने के साथ साथ पृथ्वीराज और दिल्ली का इतिहास भी उनके भाषणों में मानो स्वतः ही आ जाता था।
4: स्वामी जी की तैयारी के बारे में एक दूसरे शिष्य लिखते हैं कि भारत का नाम सुनते ही जैसे उनका हृदय और आत्मा एक रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति से उछल पड़ती थी। जीवन के गुप्त स्रोत का उन्हें ज्ञान था। उनके हृदय में एक ऐसी आग जलती थी जिसने उनके मौलिक तत्वों की अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वहां अपना स्थान बना लिया था। दूसरे लोग जहां अलग अलग घटनाओं को देखते, वहां भी उनका विराट मन संपर्क का सूत्र ढूंढ ही लेता था। उनकी बुद्धि प्रत्येक वस्तु के अंदर प्रवेश कर घटनाओं को अपने सहज क्रम में सजा देती। उनका मन सार्वभौम था, फिर भी पूरी तरह भारतीय संस्कृति से पूर्ण था, जो हर तरह से वैदिक, वैदांतिक, बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, यहाँ तक कि इस्लाम की ओर से भी धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने को उद्यत थे।
1: अंत में भगिनी निवेदिता के कुछ वाक्य उद्धृत कर हम इस प्रसंग की समाप्ति करेंगे।
6: सिर्फ धर्म के दूत के रूप में उनकी पहचान कुछ होती तो स्वामी विवेकानंद जो कुछ थे उससे कम महान सिद्ध हुए होते। गीत के कृष्ण की भांति, बुद्ध की भांति, शंकराचार्य की भांति, भारतीय चिंतन के अन्य महान विचारकों की भांति, उनके वाक्य भी वेदों और उपनिषदों के उद्धरणों से परिपूर्ण हैं। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस में स्वामी विवेकानंद को प्राचीन धर्म ग्रंथों का वो प्रमाण प्राप्त हुआ जिसकी मांग उनका हृदय और बुद्धि करती रही थी। उनके मन में वो सत्य उपलब्ध था जिसका टूटा फूटा वर्णन ही धर्म ग्रंथ कर पाते हैं। अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस में विवेकानंद को जीवन की कुंजी मिल गई थी, परंतु इसके बाद भी कन्याकुमारी से हिमालय तक समग्र भारत का भ्रमण करना, साधु संत विद्वानों और जनसाधारण से समभाव से मिलना, सबसे शिक्षा ग्रहण करना और सबको शिक्षा देना और भारत के अतीत एवं वर्तमान का यथार्थ परिचय प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक था। इस प्रकार विवेकानंद की रचनाओं का संगीत, शास्त्र, गुरु और मातृभूमि, इन तीन स्वर लहरियों से निर्मित हुआ है। उनके पास देने योग्य यही निधि है। इन्हीं से उनको वे तत्व मिले जिनसे उन्होंने विश्व के विकार को दूर करने वाले आध्यात्म की विश्लय करण

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी की रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।